ألف لام ميم أحسب

روز و شب سوزان درودا روز تو بر ذات اقدس، روز و شب سوزان روز و شب

قطمي برزل جت إشارة كل ستارة يوم قدر قطمي برزل

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 85% से अधिक मतदान हुआ।
1: तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में फैले 234 निर्वाचन क्षेत्रों में ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, क्योंकि बिना किसी गड़बड़ी के 85.10% मतदान दर्ज किया गया था। भूटान, मिस्र, मॉरिशस, मोल्डोवा, इंडोनेशिया, बेनिन, श्रीलंका, पेरू, घाना और नामीबिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के 20 प्रतिनिधियों और राजनयिक अधिकारियों ने मतदान केंद्रों का दौरा किया। आज सुबह 8:30 बजे के बाद 4,87,98,833 मतदाताओं के फैसले और 4,023 उम्मीदवारों के भाग्य का पता चलना शुरू हो जाएगा। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम

0: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
0: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
0: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
0: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: नागालैंड में मोकोकचुंग जिले के कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी आज मतगणना होगी। मतगणना उपायुक्त कार्यालय में 3 चरणों में की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन तक चलने वाली उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग रहा है। इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के दावों के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई थी। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हो रहे हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सआई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। All arrangements are in place for counting of votes today for the assembly elections in Assam, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry. The counting will begin at 8 this morning. Counting of postal ballots will be taken up first and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Counting of votes will be taken up for 126 assembly seats in Assam, 140 in Kerala, 234 in Tamil Nadu and 30 seats in Puducherry. In West Bengal, counting of votes will be taken up for 293 seats today. The re-poll for the Falta Assembly will be held on 21st of May and the counting will be held on 24th May. We have a report.
3: All arrangements have been made for today's counting and personnel have already entered the centres. Out of 294 seats, the counting of votes for 293 assembly constituencies will be held today. A 3-layer security arrangement has been established at each counting centre with the deployment of district police, state police and central forces. And the commission has warned of strict action against any dereliction of duty during the process. Kollan Laha, reporting from Kolkata.

0: ये लोगों की जिनके साथ सेम चीजें होंगी, और वो खुद सिगरेट पीते भी नहीं है और ये सिगरेट का धुआं उनको झेलना पड़ता है हमारी गलती की वजह से, किसी ऐसे शख्स की वजह से जो स्मोकर है, जो खुद तो इस चीज को एंजॉय करता है लेकिन वो दूसरों को सफर करवाता है। और दूसरी चीज ये कि वो एंजॉय करता है, ये उसकी गलत फहमी है, ये सारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसके जहन में बैठा है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी
1: है। जिस चीज को सप्रेस करना चाह रहा होता है, जिस चीज को दबाना चाह रहा होता, असल में वो दब नहीं रही होती।
0: और दूसरी बात ये कि अगर ये चीज खुशी दिमाग या ये चीज जो ऐसे दुख दिमाग, ये सारा माइंड गेम है, ये सारा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आप अपने दिमाग को ट्यून कर लीजिए, आप देखिए जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको खुशी वहीं पे मिलेगी जहां पर आप उसको ले जाना चाहेंगे। अगर आप बुरी चीजों में भी खुशियां तलाश करने लगे तो यकीनन आपका दिमाग जो है सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होता रहेगा और वो आपकी बॉडी को बताता रहेगा, इंस्ट्रक्ट करता रहेगा कि नहीं भाई आपकी खुशी इन चीजों में, जो कि असल में ऐसा होता नहीं है।
1: बिल्कुल सही आपने दुरुस्त बात की, और ये एक गलत फहमी हम पाल रहे हैं या कोई भी स्मोकर जो है वो पाल रहा है कि जो मैं स्मोकिंग करता हूँ, सिगरेट नोशी करता हूँ, इससे वक्ती तौर पे कुछ चीजें जो हैं शायद सप्रेस हो रही हो, लेकिन ज़हनी सुकून मिल रहा है। और लास्ट में जब उन्हीं चीजों की वजह से बहुत, जैसे कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज में जब मुबतला कोई शख्स होता है तो फिर उस वक्त वो ये जरूर सोचता होगा, कहता होगा, बल्कि हमने सुना भी है ऐसे दोस्तों को, ऐसे अहबाब को जो कहते हैं कि काश मैंने सिगरेट नोशी ना की होती। तो हम अपने सामने को यही कहेंगे कि देखिए आदत बहुत बुरी है,
0: बिल्कुल,
1: और अच्छी भी नहीं लगती,
0: बिल्कुल,
1: और तब अच्छी नहीं लगती जब एक स्मोकर किसी भी पब्लिक प्लेस पर खास तौर पर इस चीज का इस्तेमाल करता है, और फिर न सिर्फ माहौल को गंदा करता है, अपनी सेहत को भी, उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस सब चीज में हम सबको, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको फूल पसंद नहीं होगा।
0: फूल तो सबको पसंद है, फूलों की बात मत कीजिए, मुझे जाना पड़ेगा, वो हमारे इस प्रीमिसेस में भी एक खूबसूरत बाग बना हुआ, मैं छोड़ के चली जाऊंगी और वो फूलों को समेटना
1: जबरदस्त। और ये बात मैंने इसलिए छेड़ी, एक तो सिगरेट का धुआं है जो किसी को पसंद नहीं, और एक फूल है जिसे हर कोई पसंद करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक प्यारा सा कश्मीरी नगमा तैयार है अपने समीन के लिए, समीन आइए मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: में, और चूंकि वो रिटायर्ड साइंटिफिक ऑफिसर हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेएन के, बहुत सारी बातें इनसे इस हवाले से होंगी। और हम सुबह सुबह बात कर रहे थे तस्लीमा पोल्यूशन के बारे में, जैसे सिगरेट की हमने बात की और किस
1: माहौल की बात कर रहे
0: माहौल की बात कर रहे थे।
1: एक अंधेरी भरी रात जो होती है ना, उसके खत्म होने के बाद एक नई रोशनी हमें महसूस करनी होती है, इनायत होती है अल्लाह की तरफ से, और नया आगाज होता है, नई सुबह हमें मिलती है। लेकिन आज की जो सुबह है ना, सिर्फ वक्त का बदलना नहीं है, सुबह का जो हम लेते हैं यही कहते हैं कि ये वक्त बदलता है, रात से दिन, रात का जो अंधेरा है दिन के नूर में तब्दील हो जाता है। तो ये एक जिंदगी का वो एक हिस्सा है, वो एक पहलू है जो नुमाया है हर एक रंग में।
0: बिल्कुल सही, देखिए
1: चेंजेस जो है वो आती रहती है।
0: बिल्कुल सही, माहौल जो है हर तरह का माहौल, जैसे कि बात करने का माहौल, ठीक, एक दूसरे के साथ तालमेल, अगर हम देखेंगे कि नेचर जो है, इस नेचर में जो तालमेल आपसी चीज़ों में है, उस तवाजुन को बरकरार रखने के लिए इंसान ने जो कोशिशें करनी हैं उसका रोल कितना अहम रहता है। हम सब इस माहौल में जीते हैं और हर कोई चाहता है कि उसको अच्छा माहौल मयसर हो, चाहे आप साइकोलॉजी की बात करें, यानी अगर हम किसी बात करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बात करनी है, लेकिन बात करने के लिए माहौल अच्छा होना चाहिए,
1: लेकिन
0: लफ्ज कितना अच्छा है।
1: आपको पता है जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करने के लिए हमारा दिल जब चाहता है तो हम पहले उसका मूड देखते हैं, उसके चेहरे के तासुरात देखते हैं, तो उन तासुरात के हिसाब से कभी कभी हमारा मन करता है कि उससे बात करें, लेकिन अगर वो तासुरात सही नहीं मिलते तो हमारा मन नहीं करता।
0: इसे अखज़ किया जा सकता है कि जो माहौल है ये सिर्फ वो माहौल नहीं है जिसकी हम रोजमर्रा जिंदगी में बात करते हैं। अगर हम इतना देखते हैं कि बात करने के लिए भी कोई अच्छा सा माहौल होना चाहिए तब हम बात करते हैं, या पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए भी अच्छा माहौल होना चाहिए हमने बात करनी है। अब देखिए यही माहौल, इसी माहौल को, इसी इन्वायरमेंट को जब हम फिर अपने आसपास देखते हैं, देखिए एक साइंटिस्ट है एजी टेनिसली, उन्होंने 1935 में इसकी एक डेफिनेशन दी थी कि माहौल, एनवायरमेंट हम कैसे कहेंगे, इकोसिस्टम हम किस चीज़ को कहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और फिर जब हम देखते हैं वो क्या इस बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि आसपास की हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें जो रब्त होता है, उनमें जो आप यूं कह सकते हैं कि एक
1: तवाज़ुन
0: कनेक्टिविटी जो होती है, तो उस उन सब चीज़ों का एक मदार में रहना, एक बैलेंस में रहना, उसी को हम माहौल कहते हैं। जी
1: इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये जो सुबह है सिर्फ वक्त का बदलना नहीं है, बल्कि हवाओं में फैली इस ताजगी का नाम है जो रूह को छू कर गुजरती है, क्योंकि जब रूह को टच करती है ना कोई चीज तो फिर इंसान को वो महसूस होती है। फरखान, ये फिजा के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, कितनी मेहरबान है, कितनी खूबसूरत है, माहौल बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर माहौल की खूबसूरती की बात करें तो ये माहौल खूबसूरत तब नहीं होता जब सूरज निकलता है, या फिर ये सूरज की किरणें, फूल, या जो भी माहौल हमें अभी मुहैया हो रहा है, जो चीज़ें मुहैया हो रही हैं वो माहौल को बेसिकली खूबसूरत नहीं बनाते हैं। माहौल तब खूबसूरत बनता है जब हम सब मिलकर माहौल को खूबसूरत बनाए रखने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपने फ़राइज अंजाम देते हैं। और माहौल को खूबसूरत रखने के लिए सबसे पहले इसको महसूस करने की ज़रूरत है। जब इंसान महसूस करता है किसी चीज़ को, तभी उसको पता चलता है कि उसको ज़िंदा कैसे रखा जा सकता है या खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही।
1: जब हमने कुछ चीज़ों को महसूस ही नहीं करना है, जैसे मैंने सुबह सुबह आपको बात की, आपसे बात की कि किसी ने सिगरेट जलाकर अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ किया, और उन खूबसूरत चीज़ों को भी महसूस करने की जरूरत नहीं समझी जो उसके आसपास कायनात ने अवेलेबल रखी है।
0: ये जो बातें हैं भवन कशिर पढ़िए जे इस पन्नस बचपनस मज क्या वुछान कि सानन गरन अंद पक इस तिमन चरन हुन सु इस वनो सु बोल उस यम साथ तिम बोल इस सानन कनन ताम वातान इस कुदा खुश उस करान के सुबह सुबह से इस वतान इस पते इस विछान की में जारी कित पर छपान वन बोल बोश करान या तो ऐसो अक्सर ऐसो तो ही बोझमुत के लोग छ मना तिम कज अल छन वन गरन मज आसान के यम आसान इस तिम के एज इस आसान तिम कज अल इस तले आसान ये सु माहौल ऐसे डंज थोमो तो आसान सु माहौल उस तुत आसान तिम चर ऐसे सु बोल बोश करान और तिम बोल बोश से इस لکن ہند ٹینشن دور گسان تم بول بوش سیت او سون ماحول تیود فبان اس اس ہکان تو اس اکثر وچمت کی اکثر گمتے اس یتے کیونکہ کشیر چھ اللہ تعالی تس خوبصورت بنمز یت من چھ ہر

समीन रात के 9:30 पर प्रोग्राम समाप्त करें, बल्कि कश्मीरी ड्रामा समाप्त करें। नाद तहरीर डॉक्टर सोहनलाल कौल। जब 10 बजे प्रोग्राम समाप्त करें गीतों भरी कहानी। मौजू है शायर की मोहब्बत। तहरीर मकबूल साहिम, मेज़बान रशीद निज़ामी।

0: سمین پیام صبح کی نشریات میں صبح 10:30 پر ایک خاص مہمان بھی جڑتا ہے, اور آج بھی پروگرام میں ایک خاص مہمان آپ کے ساتھ جڑیں گے. یہ ہیں ریٹائرڈ سائنٹیفک آفیسر پولوشن کنٹرول بورڈ متحرہ. ان کے ساتھ بات کریں گے تسلیمہ اختر اور فہمیدہ خان. سمین بشیر ہمیں بندو اور ان کے ساتھ ہی چھکری اور سماعت کریں گے, پیش کریں گے صبح 11:30 پر, دوپہر 2:30 اور سپہر 4:30 پر. ان سے آپ بالترتیب کلام شمس فقیر, کلام عبد الکریم اور کلام نعم صاحب سماعت کریں گے. سمیر خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسواں میں دن میں 12:40 پر. آج کی بزم آپ ہی کی فون کال سے سجے گی. این سی آر ٹی کا سپانسر پروگرام سماعت کریں دن میں 1:10 پر. سپہ 3:00 پروگرام پیش ہوتا ہے فوجی بھائیوں کے لیے. سمین پہاڑی پروگرام 4:00 اور گوجری پروگرام روز کی طرح شام کی 5:00 نشر ہوتا ہے. سمین دیہاتی بھائیوں کا پروگرام 6:05 پر, شہر بین 7:00 اور پروگرام وادی کی آواز رات کے 8:00 نشر ہوتا ہے. سمین یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی کے اسٹوڈیوز ہندی خبروں کے لیے.
1: نمسکار, آکاش وانی سے سماچار پربھات کے ساتھ میں
2: مکیش کمار.
1: असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू. 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी. भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया. मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया. अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा. और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 से हराया. असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है. सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी. शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है. पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं.
3: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी. 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8:00 राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा. राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है. संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता.
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास. सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
4: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है. 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है. बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है. लेकिन

0: कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो तीन, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र हैं, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
0: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है वहां से लड़ रहे हैं, तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो कि तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है, उनके नेता 2 सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट, त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो 2 जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन, वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदर राजन का है, जो कि मैलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वो भाजपा नेता है, वो इस बार चुनाव लड़ रही है मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी, सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का 1-1 निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर 1-1 केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।

0: पांच राज्यों की सात विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये सात सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों, 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमरीका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमरीकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी

0: काल नाव को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई, फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं। ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को दो टूक। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख सकेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
3: माहिरीन की आरा, तजुर्बात और रहनुमाई,
4: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
2: सेहत के मशवरे,
5: ऑर्थोपेडिक कुंत तकलीफस मंज छे ब्रॉडली कलंग क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
2: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा की मुफीद नुक्कात
3: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
2: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह।
3: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयाम ए सुबह।
2: मीडियम वेव 268.81 और एफएम 103.5 MHz पर पयाम ए सुबह।
6: जैसमीन पैन सुब की बराह रास्त नशरियात अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के स्टूडियो से मीडियम वे 268.81 और एफएम 103.5 MHz पर। मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद और आज की नशरियात में मेरा साथ दे रही हैं
7: तस्लीम।
6: तस्लीमा, आज का जो दिन है, आज बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं तारीख में
7: जी,
6: तो एक मशवरा है कि समीन तक ऐसी इन्फॉर्मेशन मालूमात पहुंचाई जाए आज के दिन के हवाले से कि आज का जो दिन है वो खास क्यों है और आज कल के दिन, बिल्कुल सही, और आज के दिन में तारीख में क्या कुछ हुआ। जैसे कि आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 1799 में आज ही के रोज रियासत मैसूर का हुक्मरान टीपू सुल्तान का इंतकाल हो गया था।
7: और आज ही के दिन 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी थी।
6: जी हां समीर, और फ्रांस के पेरिस बाजार में आग लगने से तकरीबन 200 अफराद की मौत आज ही के दिन हुई थी।
7: और आज की बात करें 1924 की बात करें तो पेरिस में 8वें ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ था।
6: اسما آج کے دن اور ایک چیز بھی ہوئی تھی

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, समीन पैम सुख की नशियात जारी है। पहले आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं उर्दू खबरों के लिए।
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाज़ों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई है, जिसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू हो गई है। दोपहर तक इब्तदाई रुझान आ जाने का इम्कान है। चुनाव कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए चारों रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। आसाम में 126 असेंबली सीटों, केरलम में 140, तमिलनाडु में 234 और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है। मगरबी बंगाल में आज 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है, जबकि फालता असेंबली के लिए 21 मई को दोबारा पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। केरलम में 140 असेंबली हलकों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तफसील हमारे नामानिकार से।
2: केरलम में 140 असेंबली हलकों में पोस्टल वोटों की गिनती 43 मकामात पर अभी शुरू हुई है। शुरुआती रुझान सुबह 9:30 बजे तक मिलने का इम्कान है। हुक्मरान एलडीएफ इत्तेहाद अपना इख्तदार जारी रहने की उम्मीद कर रहा है, जबकि यूडीएफ इत्तेहाद के इस मरतबा वाजा अक्सरियत हासिल करने का इम्कान है। दूसरी जानिब एनडीए पुर उम्मीद है कि वो केरलम में एक फैसला कुन ताकत के तौर पर उभरेगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
1: और अब तमिलनाडु में वोटों की गिनती के बारे में हमारे नामानिकार की एक रिपोर्ट।

0: उसने एक गेंद पहले ही 6 विकेट खोकर 167 रन बनाकर हासिल कर लिया। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया असलम। मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों में वोटों की गिनती आज होने को आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अपनी पहली खबर के तौर पर पेश किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के मुताबिक मगरबी बंगाल पर सबकी निगाहें मरकूज, इलेक्शन कमीशन ने वोट शुमारी के लिए किए पुख्ता और गैर मामूली इकदाम। रोजनामा इनकलाब ने खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में एक अहम कामयाबी के तौर पर दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च किए जाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने को बड़ी खबर बनाया है। अखबार के मुताबिक भारत अब हर मौसम में जमीन के हर कोने पर नजर रख सकेगा। रोजनामा प्रताप ने पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को बड़ी खबर बनाया कि अपोजिशन पार्टियां जमहूरी इदारों को कमजोर कर रही हैं और ये कि मुल्क के अवाम वक्त आने पर उनकी ऐसी कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आसाम, मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी असम्बली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती भी जारी है। भारत ने लिपू लेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल के एतराज को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर मुनसिफाना करार दिया है। भारत के महकमे मौसमियात ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत शिमाली भारत में आज गरज चमक के साथ छींटे और ज्वालाबारी की पेशगोई की है। अमरीका आबनाए हुरमुज में फंसे हुए जहाज़ों को बहिफाजत निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये छे आकाशवाणी श्रीनगर समीर मोहतरम 8:05:30 सफेद पेश खदमत शो सुपान सर प्रोग्राम सेहत बदन।

0: Your sponsored program
1: Sehti Badan.
0: Sehti Badan.
1: Sehti Badan.
0: Ye program is Toitam Batnavan, Haya Wellness and Research Center, Nazdik Police Station, Batamalo, Srinagar. Yeti Baki Tamam Dajo Alav, this pilots the prostate Bamarium, Bagher Operation Eli Saptan Chu. Phone 7051 545788.
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं. समीन प्रोग्राम पयाम सुबह जारी है. सुबह के 9 बज चुके हैं. ये वक्त है मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियों का.
3: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां. सुर्खियां सुर्खियां
4: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर.
2: आदाब समीन, मकामी अखबारात की सुर्खियां लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर. मैं हूं आपका मेजबान फरकान मजीद और मेरे साथ हैं
5: तस्लीम अख्तर.
2: समीन, आज 16 ज़िलक़ादा 1447 हिजरी बरोज सोमवार है, यानी 4 मई सन 2026 ईस्वी है. मकामी अखबारात से ली गई सुर्खियां हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और देखते हैं कि आज के अखबारात की जीनत कौन सी बड़ी सुर्खियां बनी हैं. मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसकी सुर्खी है 21 दिनों में 481 एफआईआर, 515 स्मगलर गिरफ्तार, करोड़ों की जायदाद जब्त. श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुनशियात और नार्को टेररिज्म के खिलाफ बड़ी मुहिम का आगाज किया. ये जंग सिर्फ इंतजामिया की नहीं बल्कि हर माँ, हर बाप और हर उस्ताद की है. मुनशियात के खिलाफ जंग के 3 अहदाफ, सप्लाई चेन को तोड़ना, अवामी सतह पर आगाही फैलाना और मुतासर अफराद की बहाली इज्जत व वकार के साथ. ये बयान है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का.
5: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से श्रीनगर का एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान और दीगर गैर मुल्की जराए से 18 करोड़ रुपए हासिल करने का इल्जाम.
2: समय एक अखबार की सुर्खी है नशा मुक्त अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस मुतहरिक, पहले 15 दिनों के दौरान स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अंजाम.
5: जी, आज में हज के लिए भी एक न्यूज है, एक हेडलाइन है मेरे हाथ में, ये उर्दू रोजनामा है. आजमीन हज को 10,000 रुपए मजीद अदा करना होंगे. वजारत हज आजमीन के लिए आसानियां फराहम करने के लिए कार बंद.
2: समीर, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसके खबर मनशियात से जुड़ी है. अखबार लिखता है कि मनशियात की तिजारत छोड़ दो या बेरहम कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ. मनशियात स्मगलरों के नाम SSP श्रीनगर का वाजा पैगाम, कहा मनशियात के खिलाफ जंग अकेले पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, अवामी तआवुन और मालूमात का तबादला जरूरी.
5: जी, मनशियात के हवाले से आज के अखबार पर अगर अखबारात पर अगर नजर दौड़ाए तो हर जगह यही खबर आज देखने को मिल रही है. जैसे आपने कहा था 15 दिनों में कितने गिरफ्तारियां हुई है, 15 दिनों में 431 मनशियात फरोश गिरफ्तार और 478 किलोग्राम मनशियात और 13,004

0: 127 गोलियां, कैप्सूल्स और दीगर नशावर अद्वियात बरामद।
1: समय मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिसकी खबर है कि डियर पेरेंट्स कीप देम बिजी, कश्मीर्स यूथ ऑफर अ सिंपल फिक्स टू ड्रग क्राइसिस।
0: अंग्रेजी रोजनामे से एक और खबर है, एलजी सिन्हा लीड्स फ्रॉम फ्रंट इन बैटल अगेंस्ट ड्रग्स, एलजी चेयर्स हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑन नशा मुक्त जीवन के अभियान।
1: समीन, एक और अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में है जिसकी सुर्खी है कि लैंडस्लाइड्स नियर उरी डिस्ट्रप्ट बारामूला उरी हाईवे ट्रैफिक हिट फॉर आवर्स।
0: एक और अंग्रेजी रोजनामे से सुर्खी है, जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रिकॉर्ड्स सिग्निफिकेंट जंप इन ऑक्यूपेंसी रेट, ओवर 5,000 पैसेंजर्स ट्रैवल बिटवीन टू कैपिटल सिटीज ऑफ जेएंडके ऑन सेकेंड डे।
1: समय एक उर्दू रोजनामे में खबर छपी है कि सोपोर में अदबी कॉन्फ्रेंस, कश्मीरी जुबान और अदब को फरोग देने पर जोर दिया गया।
0: एक और अंग्रेजी रोजनामे जिससे मैंने अभी एक शेषुर्खी आपको सुनाई, एक और शेषुर्खी इसी रोजनामे में छपी है, IMD forecasts wetter, cooler May in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is set to experience a wetter and cooler than usual May, the India Meteorological Department IMD said, as erratic weather conditions have already begun across the region.
1: Samir, mere paas ek Urdu roznama hai. Mausmi bahar aur barishon se mutalliq ek khabar chhapi hai. अखबार लिखता है कि मौसम बहार में बारिश की कमी 24% बरकरार, खुश्क साली के असरात जारी, सर्दियों में 68% शदीद खसारा, कश्मीर में 31% और जम्मू में 18% तनजली।
0: एक उर्दू रोजनामे की जो शेसुर्खी है वो इस तरह से है, शुपयां के इलाके में दुकानदार एक दरख्त के साथ लटकते हुए पाया गया।
1: समय इन सुर्खियां अभी और भी हैं, पहले ये वक्फा
2: देखो।

0: या मनसूबा। इसी रोजनामे से एक और सुर्खी है, काम छोड़े सो जाएं। दोपहर की नींद का आलमी मुकाबला तवज्जो का मरकज बन गया।
1: समय मेरे हाथ में एक रोजनामा है जिसकी खबर है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, 13 मकामात पर छापे, 5.39 करोड़ जब्त।
0: एक और खबर इस तरह से छपी है, ईरान का 14 नकाती अमन मनसूबा, ट्रंप जायजा लेंगे, मुस्तरद करने का इशारा।
1: चार मंजिला इमारत में खौफनाक आतिशजदगी, 9 अफराद जिंदा जल गए, मुतअद्दिद जख्मी।
0: ज़ेलेंस्की का बेलारूस को इंतबाह, यूक्रेन जंग में शामिल होने से गुरेज करे।
1: समय मेरे पास एक रोजनामा है जिसकी खबर है कि शोपियान और बड़गाम में 2 मुरशद फरोश गिरफ्तार।
0: बीजिंग की तंदो तेज लफ्जी जंग, ताइवानी सदर का दौरा अफ्रीका, चीन ने दौड़ता चूहा करार दिया।
1: समय मेरे हाथ में एक उर्दू माफ कीजिएगा अंग्रेजी रोजनामा है जिसकी खबर है कि गवर्नमेंट इश्यूज न्यू गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स।
0: एक और शेसुर्की है उर्दू रोजनामे की, नोबल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी दिल के आरजे के बाइस जेल से अस्पताल मुंतकिल।
1: समय एक अंग्रेजी रोजनामे से यह खबर की रशियन स्ट्राइक्स किल 10 इन यूक्रेन, हिट्स ऑन रशियन ऑयल एसेट्स।
0: ईरान का आबनाए हामस के लिए नया कानून बनाने का ऐलान, इसराइली जहाजों पर मुकम्मल पाबंदी।
1: समीन एक अंग्रेजी रोजनामे की खबर है कि रंगे कश्मीर रिटर्न्स विद 4th एडिशन इन श्रीनगर। समीन ये थी मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
1: जी समी आप समाप्त कर रहे थे मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां। तस्लीमा, खबरें जो है इंसान की जिंदगी में कितनी जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है, इससे अपडेटेड रहता है इंसान और पता चल जाता है जो भी बुराइयां समाज में है, जब वो पकड़ी जाती है तो इंसान को किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है। और किसी भी बुरी चीज का साथ देना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जब वो चीजें लौटकर अपने घर तक आती है ना, तब इंसान को पता चल जाता है कि इनका इफेक्ट कितना नेगेटिव दूसरे लोगों की जिंदगी पर पड़ा।
1: देखिये तस्लीमा, पयाम यूसुफ की नशरियात में एक खास बात यह भी है कि हम मौजूदा हालात पर बात करते हैं और उन मौजूदात की तरफ सामीन की तवज्जो हम मबजूल कराना चाहते हैं जो हो रहा हो। जैसे अभी नशा मुक्त अभियान चल रहा है और हर तरफ से आज देखते हैं कि चाहे हुकूमत हो या अवामी इदारे हो, किस तरह से इस नशा मुक्त अभियान में वो लगे हुए हैं ताकि जो हमारी जो यूथ है वो इस नशे से छुटकारा पाए,
0: पाक हो जाए। क्योंकि जब यूथ को ये नशा सुंघा दिया जाता है, खिला दिया जाता है, फिर उनको सुध नहीं रहती है। और ये फिर हमारे नौजवानों की बात नहीं है, अगर हम ये कहें कि हम नौजवानों को जब हम मरते हुए देखते हैं, ये पूरा मुआशरा मर रहा है, हमारा आने वाला मुस्तकबिल मरता है। और चंद पैसों के लालच में हम इंसानी जान गंवा बैठते हैं, इंसानी जान के साथ कितना हम खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पर इंसानियत का पता चल जाता है कि अगर इंसान में इंसानियत ख़त्म हो जाए तो कहाँ से कहाँ तक वो एक मुआशरे को लेके जा सकता है, मुआशरे की जो जड़ें हैं उन्हें कितनी आसानी से वो खोखला कर सकता है।
1: तस्लीमा, आपने बहुत दिलचस्प बात बताई और आपको बताता चलूँ कि मौसिकी भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है।
0: और आपको पता है रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है उससे ये पता चला है कि अगर मौसिकी एक ऐसे इंसान को सुना दी जाए जो डिप्रेशन में हो, जो बहुत परेशान हाल हो, तो ये रेमेडी धीरे धीरे उसके जहन को बहाल करती है और उसका डिप्रेशन भी खत्म कर देती है।
1: चलिए इसी के साथ पेश करते हैं एक खूबसूरत सी गजल।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बज पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश सब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।
2: रसूल अल्लाह अहल कश्मीर गश्त जारो खराब अस्तंगार या रसूल अल्लाह अस्तंगार या रसूल अल्लाह अहल कश्मीर गश्त जारो खराब

0: हुआ था। तो उस वजह से हमको बचपन से ही बड़ा पढ़ा लिखा माहौल मिला। और सेकेंडली, फिर बचपन में एवरी संडे, हर एक संडे को, हर एक इतवार को वो हमको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते थे, कहीं ना कहीं सेहत अफजा मकाम पे घुमाने ले जाते थे। तो इट वॉज ए ट्रीट। उस बचपन से ही ये लगा कि कितना खूबसूरत हमारा माहौल है, कश्मीर कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, कितना साफ माहौल है। तो विद द रिजल्ट ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में घर करता गया। तो विद द रिजल्ट एज आई प्रोसीडेड विद माय स्टडीज, फिर बीएससी के बाद एमएससी की बात आ गई, तो मैंने सोचा, देन माई फादर प्लेड अ पार्ट। उन्होंने बोला कि उनको ये इंटरेस्ट था कि मैं केमिस्ट्री में चली जाऊं। मैंने कहा फिर बॉटनी में मैं जाऊंगी। तो बॉटनी में जाने से यही रहा था मेरा कार फर्मा, यही बैकग्राउंड में था कि ये एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज उसमें एड्रेस हो जाएंगे। तो ये स्पेसिफिकली मुझे उस माहौल की तरफ, उस पाथ की तरफ बचपन से
1: एक कशिश थी।
0: जी जी,
1: दबियो तो एक इशूस में बचपन से मज़े बिल्कुल तो है तो हम ज़मीन में तो हैं। उस पर आप बोर्ड कॉल बनोते हैं तो आप ये रीते वारिया असल पड़ करो।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: अगर हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। चूंकि हमारे पास सिर्फ एक घंटा होता है बात करने के लिए, तो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे इसमें कवर। तो आज हम पानी के बारे में बात करेंगे। पानी के बारे में अगर हम बात करेंगे, जमीन का 70% हिस्सा फहमीदा पानी से बना है। इंसानी जिस्म का बड़ा हिस्सा पानी है और हमारी जिंदगी की पहली पुकार भी इसी पानी की है, घूमती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस पानी को हम जिंदगी कहते हैं वही जिंदगी आज हमसे रूठती जा रही है? हमारे दरिया सूखते जा रहे हैं, झीलें सिकुड़ रही हैं और हमारी जमीन प्यासी होती जा रही है।
0: जी तस्लीम सुनिए ना, देखिए पहले मुसलमान होने के नाते, इस मजहब के पैरोकार होने के नाते, एक एक इम्पोर्टेंट हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी जाया मत करो। अगर आपके सामने दरिया भी हो, फिर अगर कुरान पे हम जाए, कुरान शरीफ पे चले जाए, तो पहला ही कि वजअलना मिनल माई कुल्ल शयइन हाई, कि ये बेसिस है, जो जो वाटर है, जो पानी है, ये बेसिस है
2: जिंदगी होनी
0: चाहिए, बेसिस ऑफ लाइफ है, बेसिस ऑफ लाइफ है, जिस पे सारी जिंदगी ये है। आप सूरह नूर को, सूरह नूर में जाइए, तखलीक कैसे होती है एक इंसान की, किससे होती है एक इंसान की, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पानी से मैंने ये जिंदगी स्टार्ट की। तो विद द रिजल्ट हमको ये पहले ही होना चाहिए एज मुस्लिम्स कि हमको पानी जाया नहीं करना चाहिए। अब रही बात, आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारे पानी की बात का, अगर कश्मीर की आप मखसूस तरीके से बात करें तो अल्लाह ताला ने हमको लेक भी दे दिए थे, वेटलैंड्स भी दे दिए थे, ग्लेशियर्स भी दे दिए थे, पानी का बहुत बड़ा ज़खायर दे दिया था अल्लाह ताला ने, मगर हमने उसको सही तरीके से, जिसको हम टेक्निकली
1: कर सके,
0: टेक्निकली हम इसको सस्टेनेबल यूज बोलते हैं, कैसे हम इसको ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। विद द रिजल्ट आप देखिए, आज अगर जहलम की आप बात करें, इट स्टार्ट्स एट वेथवथुर, वेथवथुर गांव इन वेरिनाग,
1: ओके,
0: तो वहां से ये निकल के उसका सोर्स वो है, वहां से निकल के इट रन्स थ्रू द एंटायर वैली ऑफ कश्मीर, जो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसके राइट एंड लेफ्ट आप अनंतनाग से स्टार्ट कर लीजिए, राइट लेफ्ट में सारे हमारे हैबिटेशन है, राइट में लेफ्ट में आप जहां तक जाइए, आप बारामूला जाइए तो आप जब पीओके तक चला जाता है ये, तो सारे हमारी जो आबादी है वो सारी राइट एंड लेफ्ट पे है। अब ये है कि मसला इस वक्त हो गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई और जो हमारे पानी का है उसका हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है कि अब हम हमारे अगर हम एक घर की बात करें वेरिनाग में, उसका पानी भी निकलता है किचन से, बाथरूम से भी पानी निकलता है,
1: हमारे
0: वेस्ट जिसको हम डोमेस्टिक वेस्ट सीधे ही नाली वो बना के सीधे ही रुख करते हैं, इसको दरिया की तरफ करते हैं रुख, तो फिर हमारा सॉलिड वेस्ट भी है,

0: बिल्कुल, अगर आपके पास
1: एडिबल एडिबल
0: अगर आपके पास छोटा भी टुकड़ा जमीन का है, 3x3 feet जो बनाएंगे आप, एक खड बनाना है 3x3 feet, उसमें आप पहले दिन सब्जी छोटी चुनेरा कीप इट एट द बॉटम, उसमें ऊपर छोटा सा लेयर ऑफ सॉइल लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट डे और लगा दीजिए, नेक्स्ट डे और लगा दीजिए, जब भर जाएगा, भर के उसको बंद करना है, यू कीप इट फॉर 3 months और 4 months एंड देन आफ्टर दैट यू ओपन इट एंड
1: प्लास्टिक
0: घर में आना ही नहीं चाहिए. आपको पता है हम जब मैं तभी माओ की बात कर रही हूँ कि बच्चों को जो चिप्स देते हैं ना प्लास्टिक में, सुचासन हाई टेम्परेचर्स पे, आपको पता है वहाँ पे कितना प्रॉब्लम, बच्चों की जो ओबेसिटी है, यहाँ पे कल ही अखबार में एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ परसेंट 70 और कुछ परसेंट ऑफ पीपल आर बच्चे आर ओबेस
1: सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी.
2: बिल्कुल,
1: और ओबेसिटी का ये भी है कि लक्टन पचन मजगूस नहीं है उनकी,
0: लक्टन पचन मजगूस कुछ ऐसे
1: पछड़ी
0: चिप्स देके देके देके फोन सामने है, आपका मोबाइल सामने है, बस वो बैठता है दिन
2: भर,
0: चवान क्या छे, कुछ नहीं होता
2: है
0: ना खुद,
2: मतलब
0: वही तो है वो रेस्पॉन्सिबल पेरेंट, जो हमारे रेस्पॉन्सिबल पेरेंट थे. मुझे याद है बाय द वे, मुझे एक मिसाल याद आई, बचपन में ऑल इंडिया रेडियो से 9 बजे की न्यूज आती थी, अंग्रेजी न्यूज आती थी. आई वॉज ए 4-5 ईयर ओल्ड, तीसरी चौथी में मैं होती. माई फादर यूज टू टेल मी कि यहाँ आ जाओ 9 बजे की अंग्रेजी न्यूज सुनो. अंग्रेजी उस वक्त मुझे समझ ही, मुझे क्या समझती, वो इतना तेज तेज बोलता था ना, मुझे वाकई समझ नहीं आती, मगर एक एयर डेवलप हो गया, एक एयर डेवलप हो गया, विद द रिजल्ट आई कैन अंडरस्टैंड इमीडिएटली, और उसका बड़ा असर रहा मुझे आज तक. और इसी के साथ वो बोलते थे, अल्लाह इनको मगफरत करे, वो बोलते थे कि ये पोइट्री सुनो, मुशायरे सुनो, इससे एयर डेवलप हो जाता है. मतलब दीज आर छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इट पेज इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड, इन द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बींग.
1: करस यमन आई वेस्ट प्रोडक्ट का यूजन सानो गरमज नेरान छ, व्हाट अबाउट जो हमारा टॉयलेटरी वेस्ट है, हमारे बाथरूम से निकलता है, हमारे टॉयलेट से निकलता है, सुच गसान अपनी आबी जखीरन मज, तात प्रॉपर्ली डंप करनो क्या उस वे यूस न सनिम आबी जखीर त शिकार है खान गसे.
0: देखिए एक तो सुकेश पिट सेप्टिक टैंक का है जो नाइट सॉइल होती है.
1: ओके,
0: जो पानी निकलता है बाथरूम से, जो आपका पानी, उसमें आपका डिटर्जेंट है, सोप है, शैम्पू, डिटर्जेंट है, वो जाके फिर से अगेन दैट क्रिएट्स ट्रबल विद द सॉइल एंड वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडी में चला जाता है. अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ श्रीनगर में डेटा की बड़ी कमी है हमारे पास. डेटा हमारे पास नहीं है. डेटा जब आपके पास नहीं होगा कि कितने लोग हैं, तो आप कैसे एक घर बनाएंगी? आप घर बनाएंगे तभी, आप 4 बंदे हैं, आप 5 बंदे हैं, तभी तो घर बनाएंगे ना. अगर आपके पास 10 बंदे हैं तो आपको 10 बेडरूम्स बनाने हैं, है ना, 10 टॉयलेट्स बनाते, 10 बाथरूम बनाते, 10 वॉशरूम्स बनाते, नेचुरली बनाएंगे ना. वैसे ही छोटी फैमिली है तो वो बोलेगा चलो त्रै कमरे बनाओ, हेरी त्रै कमरे बनाओ, बनो, वो चलेगा.
2: सिस्टम अगर त्रै चोर कमरे बनावान छ या 5 कमरे बनावान छ, हर कुन कमरे छ आसान अटैच
0: अटैच बाथरूम,
2: ओतामो छ आसान अख बाथरूम اکھ لیٹرین اس آسان یس برونہ کال زن اس آسان اس بیس آسان نبر کن مگر ون بنان ہر کن کمرہ ست اٹیچ
0: اٹیچ
2: کہ یوتا اس اکہ مز اس نیران ون میں باسان تم ترگن
0: کت مز کت نیران یو نو تک چھ بیاکھ ایشو تم آپ سیزمک زون 6 پہ ہے آپ وی ہیو بن ڈیفائنڈ آن سیزمک زون 6 اللہ رحم کرے اللہ نجات دے اگر کوئی زلزلہ آ جائے گا اگر کوئی بھونچال آ جائے گا تو ہم کو बिल्डिंग मारन ऐसे नॉट जलजला क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ बिल्डिंग्स. ये मॉन्स्ट्रस स्ट्रक्चर हमने बनाया ये है ही नहीं. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स रेजिलियंट بلڈنگ سٹرکچر جو ہمارے پرانے زمانے میں یہاں ایک سپیسیفک دجی

0: तिवारी था, आपको आपको पता, मतलब आई हैव रेड इट बट काम ही देखा है कि दजी दीवारी होता था. दजी दीवारी क्या हुआ शासन के, दजी दीवारी उस आसान के 9 इंच का दीवार जो होता था ना सीर, उसमें लगाते थे और बीच में लकड़ी का फ्रेम होता था. तो विश्व आज भी अगर डाउनटाउन में आप चले जाएंगे, कुछ मकान मुड़े हुए हैं मगर गिरे नहीं है.
1: बिल्कुल, वो
0: मुड़ा है, थोड़ा सा मुड़ा है मगर गिरा नहीं.
1: दैट वाज
0: द रेजिलियंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर. अब आज अगर आप देखिए जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग्स. श्रीनगर कश्मीर इज नॉट मेंट फॉर 6 स्टोरी बिल्डिंग, इट इज नॉट मेंट फॉर दैट. तो यहाँ जलजले, उसमें भी हमने
2: मौसमी एतबार के हवाले से तो बिल्कुल भी ये जो हमारा सिस्टम है ये बिल्कुल सूट नहीं करता, नॉट सूटेबल फॉर वी पीपल, क्योंकि मौसमी हालात बिल्कुल डिफरेंट. ये जन कोरोना जमानस में अपनी जिक्र करो तुम सही तमन वक्त मज तुम चीजन हूं ख्याल थाना बेमार तम नुकसान तम ग मगर वनकस क्या सफर कर वेटलैंडन कत करो जो हमारे वेटलैंड्स है कश्मीर के आबी जखैर
0: जी.
2: तो इवन वनान नंबल, नंबल के नाम से भी जाना जाता है और वादी के माहौलियात जो निज़ाम इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है ये. तो ये ना सिर्फ खूबसूरती का मरकज है बल्कि सैलाब से बचाव और लाखों परिंदों की पनाहगाह भी है. देखिए कितने खूबसूरत परिंदों को देखने का मौका हमें सीजनली मिलता है.
0: जी, जी,
2: और अगर हम होकरसर की बात करें, इसे परिंदों की मलिका कहा जाता है, या मैं यूं कहूँ कि कहा जाता था, क्या कहेंगे आप?
0: कहा जाता था,
2: ये श्रीनगर के करीब ही है.
0: बिल्कुल करीब है, तो बिल्कुल करीब है. देखिए ना
2: मौसम सरमा में साइबेरिया, वस्ती एशिया और चीन से आने वाले लाखों मुहाजर परिंदों का ये मस्कन बनता था.
0: बिल्कुल,
2: मैं था ही बोलूंगी क्योंकि आजकल मुझे बहुत खतरा नजर आ रहा है.
0: खतरा तो है,
2: अच्छी तरह से रोशनी आप ही डाल सकते हैं इस पे क्योंकि आपने इस पे बहुत
1: काम.
0: आप देखिए सीएजी की रिपोर्ट आई, मेरा आर्टिकल कल ही आया
2: मैंने पढ़ा
0: कश्मीर में.
2: That was wonderful.
0: ग्रेटर कश्मीर में मैंने वो लिखा है क्योंकि ये देखिए ना कि हमको 10 डिपार्टमेंट है. 10 डिपार्टमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी किसी को है ही नहीं. 10 डिपार्टमेंट है, वो बोलता है मैंने ये काम करना है, रेवेन्यू बोलता है मैंने लैंड का काम करना है, पोल्यूशन कंट्रोल बोलता है मैंने मैंने सीवेज को देखना है, और वाइल्ड लाइफ बोलता है मैंने वेटलैंड को देखना है. तो ये जो अथॉरिटी है ये स्केटर्ड है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. वो बोलता है मैनू की, वो ना पंजाब छवाना मैनू की,
1: मैं क्या इंसान अलग गर स्टेक होल्डर्स.
0: तुम अपने आप को अलग नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल, रोजन
0: जुड़ित रिजल्ट क्या गो. तभी मैंने इसमें भी ये बोला है कि एक अथॉरिटी जिसमें ये सारे एक्सपर्ट एक जगह हों और उसमें काम करे ये लोग, उस पर काम करे ये लोग और एक अथॉरिटी बने. इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें सारे एक्सपर्ट.
2: पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूंगी, उसको तो काफी दस्तरस है इस सब.
0: बिल्कुल है, बिल्कुल.
2: तो वो क्यों, अगर उनके रूल्स भी है, उनको मुकम्मल इसका इख्तियार भी है, तो फिर भी हम सफर क्यों कर रहे हैं? कहां पे उनको, उनके उनके रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रुकावटें आ रही है, वो बेसिकली वो रुकावटें क्या है, क्यों नहीं कर पाते हैं?
0: मुझे बताइए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में चूंकि मेरा महकमा रहा है और मैंने उस पर काम भी बहुत किया है, और मैं फर्स्ट मेंबर थी, आपको पता है 1988 में आई ज्वाइन एज इट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. बहरहाल उस वक्त जो काम किया, अकेली थी जम्मू कश्मीर के लिए, तो बहरहाल जो काम किया उस वक्त, जो आज स्ट्रक्चर देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक पहुंचाया, मगर उसके बाद इसमें टेक्निकल लोगों का इनपुट नहीं है, इसमें साइंटिस्ट नहीं है, टेक्निकल लोग नहीं है, इसमें इसमें टेक्निकल लोग है ही नहीं. आपको साइंटिस्ट और टेक्निकल लोग चाहिए, आपको एक्सपर्ट्स चाहिए. ये फॉरेस्ट के अंदर है. मैंने विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे अपने जानने वाले हैं, दोस्त हैं सारे, बट एक चीज़ है कि इट इज़ नॉट फॉरेस्ट, इट इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट. मैं तो इस फेवर में हूँ कि अंदर जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, जो अगर चीफ मिनिस्टर साहब ये सुन रहे हैं, इनको मुअद्दिबाना ये गुजारिश है कि एक सेपरेट एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री बनाए और उसका सेक्रेटरी अलग करे और उसमें काम स्टार्ट करे. جب ڈیٹا بنے گا ہمارا اس میں ہم کام کر پائیں

0: ये उसको उसके बगैर कोई चारा नहीं है।
1: मोतारा जी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस जितनी बात करें कम है, और आपकी बातों में हम इतना खो गए कि आज हमें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि हमारे इस प्रोग्राम का एक हिस्सा म्यूजिक भी रहता है,
2: थोड़ा हम अपने मेहमान को एंटरटेन भी करते
1: जैसे रेडियो पर सुबह सही स्टेशन सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी का दुरुस्त होना जरूरी है, वैसे ही साफ पानी हासिल करने के लिए हमारी सोच की ट्यूनिंग का दुरुस्त होना जरूरी है कि ये ट्यूनिंग हम बरकरार रखें, इसके लिए म्यूजिक सुनना जरूरी है। एक खूबसूरत सा नगमा फहमीदा ने क्यों करके रखा है, मुझे लगता है पहले एक नगमा हो जाए।
2: बिल्कुल।

0: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी पयामे सुबह।
1: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जानिया लाइव शो।

0: बहुत खूबसूरत नगमा, और हम उम्मीद करते हैं सामीन आपको नगमा पसंद आया होगा, और हमारी जो आज की मेहमान खसूसी है उनको भी ये नगमा बहुत पसंद आया होगा। चलते हैं अपने मेहमान की ओर और रुख करते हैं, फिर नए सवाल पूछते हैं। पानी की बात करें तो पानी जो है हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हमारी ज़िंदगियों को नूर बख्शता है, और पानी की फितरत है रवानी और इसकी खामोश गहराई को ये जो पानी की फितरत है बयान करती है। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में कहाँ अब के भी पानी होगा, कहीं ऐसा ना कहना पड़े क्योंकि पानी जो है वो बहुत कम हो रहा है। हमारे आज के मेहमान के साथ हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से कि पानी का जो ज़खीरा है उसको कैसे बचाया जाएगा और कौन से इकदाम किए जाएँ जो बेहतर रहेंगे। हाँ फहमीदा, आप कुछ पूछना चाहती थी?
1: जी बिल्कुल। तो मुतहर जी हमें बताएं कि यूसस अवमी शिरकत या मुस्तकबिलियत इस वनों के लोगों की शमूलियत इन कवानीन में आम लोगों या वहाँ रहने वाले मकामी बरादरों को तहफ़ के अमल में कितना शामिल किया गया है?
2: अभी तक तो कुछ नहीं किया गया है शामिल। हम तो जो प्रोजेक्ट करते हैं तो लोगों को फिक्र के बगैर, लोगों को टेकिंग देयर ओपिनियन इनटू अकाउंट हम कर जाते हैं आगे। अभी मॉडर्न जो है ना, जो हमारे और वेस्ट में क्या फ़र्क है, वेस्ट में अमेरिका में आप जाइए, व्हेन आई वाज देयर मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे एक सड़क बनानी है, सड़क के डिटेल्स लिखे हैं, ये कंस्ट्रक्शन हमने करना है, इसमें ये मटेरियल लगाना है, अगर किसी को कोई ग्रीवेंस हो, अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो इस नंबर पे इस बंदे से कांटेक्ट करके अपना बोल सकता है कि क्या चाहिए, क्योंकि जैसे एस्फाल्ट लगाना है, जैसे रोड किसी चीज का लगाना है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसे एनवायरमेंटल इश्यूज कैसे फर्क पड़ेंगे, उसको उस बंदे को, उस हमसाया को, उस रहने वाले को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हम कुछ नहीं करते हैं ना, वो हमारा जो प्रोजेक्ट्स का तरीका है, हमारा जो प्लानिंग का तरीका है, उसको लोगों को एज स्टेक होल्डर मानते ही नहीं हम, उनको हम साथ लेके नहीं चलते। देखिए ऐसे हालात अब एनवायरमेंट में, एनवायरमेंटल इश्यूज में, क्लाइमेट चेंज में स्टेक होल्डर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एनर्जी की बात कर लीजिए, आप ये जो पेरिस एग्रीमेंट में टोटो प्रोटोकॉल की बात कर लीजिए, आप कर लीजिए जो गोल्स है, जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स है, वो देखिए 17 में लोगों का कितना असर है, लोगों को कितना उसमें लाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों से रिलेटेड है ना, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज लोगों से रिलेटेड है, ये आप डायरेक्टली इफेक्ट हो जाते हैं। आपको पानी गंदा मिले, आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आपको हवा गंदा मिले, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होते हैं, अल्लाह रहम करे सबको, लंग इश्यूज हो जाते हैं। आप देखिए हमारे विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में लोगों को लंग के इश्यू जो है, ब्रीदिंग इश्यू जो है, वो कितने ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। अब चूंकि हम इस वक्त एयर की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर पे मरकूज है हमारा तवज्जो इस वक्त, तो वाटर पे हमको पूछना चाहिए, अगर हम ये है कोई प्रोजेक्ट हो रहा है हमारे मोहल्ले में, हमारी कम्युनिटी में, उसमें पूछना चाहिए, जाके पूछना चाहिए, अपने आप को इसका हिस्सा मानना चाहिए सारे को। हमारी भी जिम्मेदारी है ना, सरकार ही सारा नहीं कर सकती ना, हमारी भी जिम्मेदारी है सिटीजन, जरूरी उनको पूछना चाहिए, जाके पूछना चाहिए, ये करते हैं आप, ये इससे ये असर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम वी बिलोंग टू दिस प्लेस, वी नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस वजह से हमारा डायरेक्ट ताल्लुक जरूरी है,
0: और डायरेक्ट ताल्लुक जब तक रहेगा तभी तक इस चीज की जो नवीयत आज की है उसको हम बदल सकते हैं। तो अगर हम घरों की बात करें, زنان خواتین سان گھر من تم تب کے استعمال کر مرد حضرات پن گاڑ چھلنے خطر اگر اہس گھر

0: पानी कम से कम इस्तेमाल करें, पानी
1: एग्जैक्टली किचन्स में जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए,
0: आपको सिस्टर्न
1: ऑफ टाइम इस्तेमाल,
0: सिस्टर्न में हमारे पास 25 लीटर का पानी होता था, सिस्टर्न टैंक होता था 25 लीटर का पानी, अब तो कम हो गया है, बट स्टिल जो हम वी गो फॉर यूरिनेशन, इतना 10 लीटर पानी क्यों इसमें डालना है, चार लोटे पानी भी डाल सकते हैं।
1: आखिर में बिल्कुल फहमिदा, आपको मैं बात करती हूँ, आप अपना काम संभालें क्योंकि टेक्निकली भी सारा कुछ संभालना बहुत जरूरी है। चलते चलते हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, मुतारा जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?

0: ٲسِو چھکٕر تہٕ روٗ بوزان. پیش ٲسۍ کران بشیر احمد بِندو تہٕ یِہِنٛدۍ سٲتھی. یہِ منِش بوٗزِو تۄہہِ کلامِ شمس فقیٖر. یہِ چھِ آکاشوانی سرینگر سٲنِس دٔیمِس سلانس پرٛ ریو. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. سمعین دن کے 12 بجنے والے ہیں, لیے چلتے ہیں آپ کو آکاشوانی دلی خبروں کے لیے.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں کنک لتا. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है. तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं. वामदल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है. राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है. यहां 21 मई को मतदान होगा. असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं. सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है. कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं. केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है. ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है. एलडीएफ 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है. तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं. अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके 109 सीटों पर आगे है. AIADMK गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. DMK गठबंधन 52 सीटों पर आगे है. अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास. सुशील, कहा जा रहा था कि TVK के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है. जीत के प्रति आश्वस्त TVK ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय MG रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
2: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है. जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है. जो आपने तुलना की MGR से, MGR के बारे में कहा जाता है, वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे. लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है. लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं. तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है. हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं. लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं. जी कनक,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील. पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं. AINRC 15 सीट पर आगे है. कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं. चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है.
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं. ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है.
1: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा. उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम DMK पार्टी के पक्ष में रहेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा. 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है. ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं. इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए

हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बीमार में उसे
1: मुबतला।
0: मुबतला
1: जी डॉक्टर।
0: जी। सो तिम हेकन इपनी इब्तदात मजबून अस नमो जूठ शाह तिंद खतर से ख्वाब तो यूत आसानी सान बिल्कुल अस बसान वाले मामूली सी बात लेकिन उनके लिए एज तुम एक जैसे पतली स्ट्रॉ के जरिए इंसान अंदर हवा खींचता है तिंद खतर से तूत मुश्किल आसान एट टाइम्स तुम अक्यूट अटैक ऑफ एजमा से तो आज के दिन इन करोड़ों बच्चों और बड़ों के नाम जो इस दायमी मर्ज के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं हर साल आख तंजीम छ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एजमा यह आख अकवामी तंजीम इस आलमी योम दमा किस मौकस पर आख मौजू से इंतखाब करा तो यम वरी मौजू से इंतखाब कोरमुत सू एक्सेस टू एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरी वन विद एजमा मतलब पता यम एजमिक मरीज अक्सर वुचान तम इनहेलर्स यूज करान या तम कुबलाइज तरें तो इनहेलर्स तम यूज करान कह इनहेलर्स अक्यूट अटैकस मन लगान मगर कह इनहेलर्स दमा दमा की जो सोजिश होती है मतलब अंदर किन वरम लंग्स के का जो होता है टाइमिंग जो होती है वो इसको कंट्रोल करने में तो हर एक मरीज को इस जो दमा के मर्ज में मुबतला है इसको इन इनहेलर्स की रसाई हो ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एजमा तुंद वर्क मौजू
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब अस मन तो ये दोष इस मनावान तो ये दो मनान मकसद क्या है तो कत कत कत पे ज्यादा जोर दिन कि क्या क्या पजे अस दोहस पे क्या पजे कर या अम सा कम कम इनिशिएटिव न
0: वैसे थ्रू आउट द ईयर काउंसलिंग पे ट्रीटमेंट मुख्तलिफ जायन मगर ये ग्लोबली चीज रिकग्नाइज कर अम सबान मतलब पेशेंट को लगता है कि ना हमें भी लोग इस मर्ज में ये हमारे हमारे शरीक है हमारे इस ये मर्ज अत मे अंडरस्टैंड लोग कर क्या मुश्किल मतलब कमन दरपेश मुश्किल तो यह अवेयरनेस जनरेट करने खातर यूज लूख हेकन अंडरस्टैंड कर एमरजेंसी अत मुबतला तम खातर कूता पे प्रोएक्टिव अप्रोच तो मतलब ताकि जब एक अक्यूट अटैक आता है तो उस टाइम पे अगर जो बाकी लोग होंगे अगर तुम प्रोएक्टिव आसन यह तेस मरीज सिंह खातर लाइफ सेविंग इवेंट ऐसी तो यह अवेयरनेस जनरेट करने मैं वो तो गोने ऑल ओवर द वर्ल्ड हर वरी कह मौजू थो थोमुत यह एजमा एंटी इंफ्लेमेटरी इनहेलर हर कंस ग रसई आमची जनरेशन करान मतलब अतलिक अवेयरनेस जनरेट कर ऑल ओवर द वर्ल्ड ताकि सबको पता चले कि कूता जरूरी
1: तुज कैसेज सान बोजन वाले खतर अमे दो के हवाले अमे यह डिजीज अमी डिजीज के हवाले कह मैसेज सान बोजन वाले तक वो तुम वात अहन मे
0: वन कि दमा सिर्फ अबी मसल कल्कि ये एक समाजी मसला भी है जो बच्चों की तालीम तम सफेक्टेड तम तालीम असर गम सम की सलाहियत मजूर पेश पेशस मान तुंद असर अंदाज ग सान जिंदगी मयारस पे अम असर पे अस पे ये अमिक अलामत तम प्रजन अस ग पता आम अलामत अर्ली अलामत हकन एजमे कित पा सांस बाहर निकालते वक्त सीटी जैसी आवाज ये पे टर्मनोलॉजी मे वीजिंग वन अगर कम कस्म या कह मतलब दायमी क्रॉनिक कफ दायमी खांस

0: سامعین توسی وزن پروگرام بزمنی سوا پیشکس سمینا شاہ اچھا آکاشوانی سرینگر سون دوی ملن بوزیو. یہ آکاشوانی کا سرینگر سٹیشن ہے. سامعین دن کے ایک بجنے والے ہیں, لیے چلتے ہیں آپ کو آکاشوانی دلی خبروں کے لیے.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है. सबसे पहले सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन सुश्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों में तय नजर आ रहा है. विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 191 सीटों पर आगे है. तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं. तमिलनाडु में कोलातूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन चेपक तिरुवल्लिकेणी सीट पर आगे हो गए हैं. अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय पेरुम्बूर और

0: तिरुचिरापल्ली पूर्व दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। केरल में धर्माधम सीट से मुख्यमंत्री और सीपीएम उम्मीदवार पिनराई विजयन ने बढ़त बना ली है। नेमोम सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। एक सीट AINRC, एक सीट भाजपा और एक सीट DMK ने जीती है। AINRC 8 सीट, भाजपा 1, कांग्रेस गठबंधन 1, ऑल इंडिया अन्ना DMK 1 और अन्य 3 सीटों पर आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य उम्मीदवार 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने NDA के लिए 100 से करीब सीटें जीतने का भरोसा व्यक्त किया था पहले ही, जो सही साबित हो रहा है, क्या कहना है आपका?
1: जी जी, आप सही बोल रहे हैं कि NDA जो है लगभग 100 की सीटें जो है ना वहाँ पर आगे चल रही है यहाँ पर। और मेजर सीट्स की बात करें जहाँ पे कॉन्टेस्ट होना, जो कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट थे जैसे गौरव गोगोई जोरहाट से, वो खुद ट्रेलिंग है, वो खुद पीछे चल रहे हैं 16,000 वोटों से,
0: जबकि उन्होंने कहा था कि वो 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस।
1: हाँ, लेकिन वो खुद यहाँ पे आफ्टर 10 राउंड के बाद, जो 14 राउंड होंगे, 10 राउंड के बाद वो खुद 16,000 वोट से पीछे है। जो हितेंद्र नाथ वहाँ के जो बीजेपी के सिटिंग MLA है, उनका घर माना जाता है, वहाँ पे गया गौरव गोगोई, वहां से लड़े, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि बातें भी चल रही थी गौरव गोगोई विल विन द सीट, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़े अलग ही जा रहे हैं।
0: राकेश जी, ये बताइए,
1: अखिल गोगोई की भी बात करें, अखिल गोगोई जो है, अखिल गोगोई जो एक लीडर जो है ऑपोजिशन के मेन वन ऑफ द लीडर, जो अखिल गोगोई वो मार्जिनली भी आगे हैं, जो बट इट इज इन द फिफ्थ राउंड में है। यहाँ पे 20 राउंड होंगे शिवसागर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो मार्जिनली आगे हैं 900 वोट्स में, और वहाँ आगे जाना बाकी है। और जो बहुत डिस्कशन का जो था एक टॉपिक, दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ प्रद्युत बोर्दोलोई जो कांग्रेस के नेता थे, जस्ट इलेक्शन से पहले उन्होंने दिसपुर ज्वाइन, बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी ज्वाइन करने में उनको टिकट दिए गए, बातें चल रही थी कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बात यहाँ पर देखा जाए तो ओवर 35,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं। मेरा बहुत
0: धन्यवाद धन्यवाद राकेश
1: जी।
0: चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव डॉ. गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में 2 के परिणाम मिल गए हैं। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोरिडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली हैं और 2 पर बढ़त बनाए हुए है। धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रवर्ती विजयी रहे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 394 अंक बढ़कर 77,308 पर, जबकि निफ्टी 121 अंक की वृद्धि के साथ 24,118 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Initial trends that emerged in counting of votes for all 4 states and Puducherry Union Territory have sustained as counting rounds progress into the day. As per latest counting, BJP has taken a surprise lead in West Bengal, while in Tamil Nadu, new entrant Tamaraga Vetrikaragam TVK, led by actor C. Joseph Vijay, has surged ahead. Opposition AIADMK is in second position and the state's ruling DMK is trailing on the third spot. In Keralam, Congress-led UDF has secured a comfortable lead, while the ruling BJP has secured a big lead in Assam. In West Bengal, BJP has taken a lead in 190 seats out of all the 293 constituencies for which

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत, नमस्कार। जी हाँ श्रोताओ, आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम।
2: जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी शिक्षाप्रद और मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो आइए सुनते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह खूबसूरत विचार, जिसे हमें भेजा है कच्छ भुज गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने। लिखते हैं,
2: समय पर न समझ आने वाली बातें आगे चलकर जिंदगी का एक सबसे बड़ा सबक बन जाती हैं, क्योंकि इनसे हम या तो सीखते हैं या फिर जीवन भर पछताते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, सच है बिल्कुल। किसी बात को समय रहते यदि हम समझ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत देर हो जाती है और तब अक्सर कुछ भी नहीं किया जा सकता।
2: जी
1: तो आइए समय को हल्के में ना लें, इससे सबक लें। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता और परिवारजन लिखते हैं,
1: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल वाले सप्ताह में आपने भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और इससे जुड़े सर्वाधिक मशहूर चिकित्सकों और

0: उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथों पर व्यापक जानकारी दी और उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प वाक्यात को नाट्य प्रस्तुतिकरण के मार्फत हमें सुनाया। सुनकर हम धन्य हो गए। हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हम उमंग कार्यक्रम के श्रोता हैं।
1: छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा, कुमारी डब्ल्यू थापा।
0: और केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास, पद्मलोचन मोहंती, शुभम नायक, अभिराम साहू, अविनाश दास और गीतांजलि दास।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आपने अंतरिक्ष से संबंधित आज बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। उमंग कार्यक्रम सुनकर हम देश विदेश की जानकारियां प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत बढ़िया जानकारी हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम को।
1: आप सभी श्रोताओं को भी हमारा धन्यवाद अच्छी और प्रोत्साहन देने वाली प्रतिक्रियाओं के लिए। और अब बारी है प्रश्नों के उत्तरों की। जिन्होंने भाग लिया उनका धन्यवाद और जिन्होंने नहीं लिया उन्हें हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अवश्य भाग लें। तो हमारा पहला प्रश्न था,
0: भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद सबसे पहले किसे दिया गया?
1: जी, इसका उत्तर है, पहले भारतीय सेना में सबसे ऊंचा मानद पद था फील्ड मार्शल। ये सबसे पहले जनरल सैम मानेकशॉ को दिया गया था। उनका पूरा नाम था सैम हॉर्मुजी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। इन दिनों भारत की सशस्त्र सेनाओं के प्रधान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है। ये पद सबसे पहले जनरल बिपिन रावत को दिया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, भारत के प्रसिद्ध गुरुकुलों में वशिष्ठ गुरुकुल, द्रोणाचार्य गुरुकुल, वाल्मीकि गुरुकुल और कर्ण गुरुकुल माने जाते हैं। इनमें से किन्हीं दो की विशेषता बताइए।
1: जी, हम आज वशिष्ठ और द्रोणाचार्य गुरुकुल की विशेषता आपको बता देते हैं। वशिष्ठ गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता थी समान भाव। यहाँ राजा और सामान्य परिवार के बच्चे भी एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। कुछ मायनों में यहाँ समावेशी शिक्षा थी। द्रोणाचार्य गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी युद्ध कला की विशेष शिक्षा। धनुर्विद्या में पारंगत अर्जुन ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न था, श्रोताओं, जनसंख्या के आधार पर भारत की प्रमुख चार जनजातियों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है, जनसंख्या के आधार पर भारत की चार प्रमुख जनजातियाँ हैं, गोंड, भील, संथाल और उरांव। इन्हें ओराव भी कहते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का विस्तृत वर्णन किया है?
1: इसका उत्तर है, नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का वर्णन चीनी यात्री हुइन संग ने अपने संस्मरणों में किया। इनका संस्मरण चीनी भाषा में लिखा गया था। इसका अनुवाद है, द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन वेस्टर्न रीजन्स।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के तीन प्रसिद्ध गुरुओं और एक प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम बताइए।
1: प्रसिद्ध गुरुओं या आचार्यों के नाम है कौटिल्य यानी चाणक्य, पाणिनी और वैद्यराज चरक। और सबसे प्रसिद्ध विद्यार्थी का नाम है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य।
0: तो श्रोताओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से किसी एक प्रसिद्ध गुरुकुल का नाम बताइए।
0: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है
1: सींग विदाउट सींग।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा समावेशी शिक्षा के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का खास ख्याल रखें।
2: लिटिल लॉन्ग शांगला रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Unshangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम बंदर और बया।
0: ये एक रोचक लोक कथा पर आधारित कार्यक्रम है जिसमें बंदर और एक सुंदर बया पक्षी की मित्रता के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम का संदेश है मित्रता और आपसी सहयोग की भावना।

दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, किसी जंगल में एक बंदर रहता था। वो बंदर बड़ा शैतान था। हाँ, न काम न धाम, सारे दिन कूदता फिरता इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर।

0: उसी जंगल में एक बया भी रहती थी। जानते हो दोस्तों, बया बड़ी समझदार होती है। समझदार ही नहीं, बहुत मेहनती भी होती है। उसने सोचा कि बरसात आने वाली है, चौमासे में पानी खूब बरसता है, इसलिए उसने बरसात से बचने के लिए उपाय सोचा। जानते हो दोस्तों क्या? बताएगा तुम में से कोई? बताओ बताओ। पक्षी अपने रहने के लिए पेड़ पर क्या बनाते हैं? हाँ सोचो सोचो।
1: घोंसला।
0: हाँ, बारिश से बचने के लिए पक्षी घोंसला बना लेते हैं। तो दोस्तों, बया ने भी यही किया। दिन रात मेहनत की, तिनका तिनका जोड़कर उसने घोंसला बनाकर पेड़ पर लटका लिया।

0: एक बात तो हम भूल ही गए, बया का घोंसला बड़ा अजीब होता है। बया अपने घोंसले में एक खाना तो बनाती है बड़ा, और बाकी खाने वो बनाती है छोटे छोटे अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बंदर भाई भीगते हुए उसी पेड़ पर आ बैठे जहां बया का घोंसला था। पानी बहुत जोर से बरस रहा था। बया को बंदर पर दया आई और बोली,
1: क्यों बंदर जी, तुम इतने परेशान क्यों हो?
2: अरे बया, देखती नहीं चारों ओर पानी ही पानी है। मैं भीग रहा हूँ, उस पर ये ठंडी हवा चल रही है, मुझे जाड़ा लग रहा है।
1: बंदर जी, ये कैसी बात, ऊपर पड़ती है बरसात, सर्दी तुम्हें सताती है, फिर भी समझ न आती है, वर्षा से बिल्कुल बच जाते, साधन कोई अगर जुटाते, दिन भर उछला करते हो, मेहनत से तुम डरते हो।
2: ज्यादा बात बनाओ मत, सीखी मुझे दिखाओ मत, छोटा मुंह और बात बड़ी, जीभ चलाती खड़ी खड़ी, गुस्सा मुझे दिलाएगी तो पीछे तू पछताएगी। तू चिड़िया, मैं बंदर हूँ, तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ।
1: मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी बंदर जी, इतने भीग रहे हो, कुछ नहीं तो वो सामने माली के छप्पर पर दलिया पड़ी है, उसे उठाकर सिर पर रख लो, कुछ तो बचोगे ही।
2: अरे तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ, ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना,

0: तो इतनी देर से क्यों नहीं बताया तूने?
1: मैं क्या बताती, मैं तो तुम्हारे सामने बहुत छोटी सी हूँ। ये तो तुम्हें खुद ही सोच लेना चाहिए था। कल जब बरसात बंद हो जाए तो कहीं से कुछ घास पात लाकर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेना, ताकि पानी बरसे तो चैन से उसके नीचे बैठ सको।
0: अरे कल की कल देखी जाएगी, अब तू सीख बंद कर। मैं डलिया लाकर पहले आज का काम चलाता हूँ।
2: दोस्तों, वो रात बंदर ने सिर पर डलिया रखकर काट दी। सुबह हुई, बारिश बंद हो चुकी थी। बंदर फिर उछल कूद में मस्त हो गया। दो चार दिन बाद फिर पानी बरसा। पेड़ पर बैठा बंदर भीगने लगा। हाँ, बया अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। बंदर को भीगता देखकर वो पूछ बैठी,
1: तुम्हारी उस दिन वाली डलिया कहाँ गई? उसे सिर पर ढक लो।
0: डलिया क्या रखी रहेगी, उछल कूद में वो तो अगले दिन ही टूट गई।
1: अरे ऐसी उछल कूद क्यों की? कि डलिया ही तोड़ डाली।
0: चुप रह, टूट गई तो टूट गई।
1: जिससे नुकसान होता हो ऐसी आदत बुरी होती है। हाँ, और बुराई तो छोड़ने की ही चीज होती है। दिन भर हाथ चलाते हो, समझदार कहलाते हो, कोई आदत अगर बुरी है क्यों न छोड़ तुम पाते हो?
0: डलिया टूटी है माली की, आदत मेरी साथी है, अक्लमंद बन कर क्यों मुझसे ज्यादा जीभ चलाती है?
1: मैं तो इसलिए कह रही थी बंदर जी, कि तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। फिर मैंने तो ये भी कहा था कि दिन में कहीं से घास पात बटोर कर किसी डाल पर छोटा सा छप्पर डाल लेते, तो ये कष्ट क्यों सहन करना पड़ता?
0: मेरे आगे जीभ चलाती है, क्यों ज्यादा इतराती है? छोटा मुंह और बड़ी बात कर मुझको सीख सिखाती है। नहीं जानती मेरी ताकत, मुझसे आँख मिलाती है। मैं पानी में भीग रहा हूँ, तू बैठी इतराती है।
1: हे राम, यही तो मैं भी कहती हूँ बंदर जी, कि भगवान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकत दी है, मुझसे ज्यादा बड़ा शरीर दिया है। मुझे कोई चीज लानी होती है तो चोंच में लाती हूँ। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं, फिर भी अपने बचाव का इंतजाम नहीं करते, तो इसका मतलब तो ये है कि
0: क्या मतलब?
1: ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो?
2: अरे बच्चों, ये क्या? बया चिड़िया तो रोने लगी। क्या तुम सोच सकते हो कि बया चिड़िया क्यों रोई? सोचो सोचो, आखिर बंदर ने गुस्से में आकर क्या किया? सोचो। शाबाश, कुछ बच्चे तो बता रहे हैं। अरे भाई जरा जोर से बताओ। हाँ, बंदर ने गुस्से में आकर बया का

घोंसला ही तोड़ दिया। तभी तो बया रोने लगी। दोस्तों, बंदर ने अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो गुस्से से बया का घोंसला ही तोड़ दिया। दोस्तों, बंदर ही नहीं और भी बहुत से जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। क्या तुम ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो? सोचो सोचो। हाँ शाबाश, बताओ। हम तुम्हें ये बता देते हैं कि ये जानवर अपने लिए घर बनाते तो नहीं, पर दूसरे जानवरों के बनाए घरों में रहने लगते हैं। हाँ भाई, जरा सोच कर बताओ। हाँ बताओ बताओ। अच्छा दोस्तों, हम कुछ अता पता बता देते हैं। बता दे। अच्छा ये बताओ, चूहा कहाँ रहता है? बताओ बताओ। हाँ, बिल में। अच्छा, और कौन सा जानवर है जो अपना बिल नहीं बनाता और दूसरे जानवरों के बिल में रहता है? सोचो सोचो। याद आ गया? हाँ, सांप। दोस्तों, वो अपना घर खुद नहीं बनाता। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से जानवर हैं जो घर बनाकर रहते हैं और कई जानवर अपना घर नहीं बनाते, जैसे वो बंदर था, है ना? अच्छा दोस्तों, तुम भी सोचना और कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो अपना घर नहीं बनाते। सोचोगे ना?

0: पर मामा बोली चिड़िया नहीं मिली है छतरी बढ़िया। बना नहीं घर भीग रहे हो
1: अच्छी

0: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: तो अब अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। समीन आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 1:40 होने वाले हैं। समाप्त कीजिए चंद फिल्मी नगमे। नगमों से पहले आइए सुनते हैं ये तिजारती वक्फा।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समय 1:50 होने वाले हैं, लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी दिल्ली खबरों के लिए बस थोड़ी देर में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें।

0: बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 293 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद का इजहार किया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है। हुक्मरान डीएमके तीसरे मकाम पर चली गई है, वजीर आला एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ बाएं बाजू महाज के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाजे अक्सरियत की समत बढ़ रही है। पुदुचेरी में एनडीए फिर से इकतदार हासिल करने की जानिब गामजन है। और असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में एक एक सीट जीती है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे सबकत हासिल है। अब खबरें तफसील से। चार रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में वोटों की गिनती के इब्तदाई रुझानात सामने आ रहे हैं। ताज़ा रुझान के मुताबिक मगरबी बंगाल में बीजेपी ने शानदार सबकत हासिल कर ली है, जबकि तमिलनाडु में अदाकार सी जोसेफ विजय की सरबराही वाली नई पार्टी तमिलगा वेतरी कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि ओपोजिशन की ऑल इंडिया अन्ना डीएम के दूसरे मकाम पर है और हुक्मरान डीएम के पार्टी तीसरी ओपोजिशन पर चली गई है। केरलम में कांग्रेस की जेर कयादत यूडीएफ आगे चल रहा है, जबकि आसाम में हुक्मरान बीजेपी ने बड़ी सबकत हासिल कर ली है। मगरबी बंगाल में आज असेंबली के 293 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जा रही है और बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। नई पार्टी टीवीके ने 111 सीटों पर सबकत हासिल करके शानदार शुरुआत की है। ओपोजिशन ऑल इंडिया अन्ना डीएमके को 55 हलकों में सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान डीएमके पार्टी 49 सीटों पर सबकत के साथ तीसरे मकाम पर है। आसाम में 126 सीटों में से 7 सीटों के नतीजों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं और 73 पर उसे सबकत हासिल है, जबकि उसकी इत्तेहादी आसाम गण परिषद को एक सीट पर कामयाबी मिली है और 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 24 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि 10 सीटों पर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। केरलम में 140 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 5 सीटें जीती हैं और 57 हलकों में उसे सबकत हासिल है, जबकि हुक्मरान सीपीएम को 4 सीटों पर कामयाबी मिली है और 23 सीटों पर वो आगे चल रही है, जबकि उसकी इत्तेहादी सीपीआई को 9 सीटों पर सबकत हासिल है। केरला कांग्रेस 7 पर और बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। पुदुचेरी से भी नतीजे मिल गए हैं। अब तक 13 नतीजों का ऐलान किया गया है। हुक्मरान AINRC ने 6 सीटें जीती हैं और 4 पर उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस को 1 सीट मिली है और 6 सीटों पर वो आगे चल रही है। डीएमके पार्टी ने 1 सीट जीती है और 3 पर सबकत हासिल है। बीजेपी को 2 सीटें मिली हैं और 2 पर ही उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अब ताज़ा मालूमात के लिए हम अपने नामा निगार सुशील चंद्र तिवारी से बात करते हैं। जी सुशील, बताइए क्या ताज़ा सूरत हाल है
1: हिंदुस्तान के। देखिए कानून, जुनूबी हिंदुस्तान के इस सूबे में जो इस वक्त तक हालात नजर आ रहे हैं, ताजा हालात जिन्हें कहें, तो जो फिल्म स्टार विजय हैं उनकी पार्टी टीवीके वो जबरदस्त जीत हासिल करती नजर आ रही है और जैसा कि रुझानों से साफ नजर आ रहा है कि वो 100 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। हालांकि यहाँ जो अक्सरियत है वो 118 सीटों पर तय होती है, लेकिन अभी वो थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब कुछ शाम तक नतीजे आएंगे पूरी तरह से, तब जो है तस्वीर ज़्यादा साफ हो पाएगी। विजय की एंट्री जो है वो यहाँ के सियासी जो माहौल है उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही है, ये साफ नज़र आ रहा है कि लोगों ने बदलाव को वोट दिया है। जी,
0: इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के तर्जुमान तोहिन सिन्हा ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझानात बीजेपी के हक में हैं और पार्टी जबरदस्त फर्क के साथ आसाम और मगरबी बंगाल में कामयाबी हासिल करने की जानिब गामजन है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि मगरबी बंगाल के अवाम ने तृणमूल कांग्रेस की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के एक और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के रुझान बीजेपी के हक में सामने आ रहे हैं। जनाब त्रिवेदी ने कहा कि इनसे वजीर आजम

0: नरेंद्र मोदी के दूरंदेशी पर मबनी नजरिए और रियासत में बीजेपी कारकुनों की अनथक कोशिशों की अक्कासी होती है। बीजेपी के लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने असेंबली इंतखाबात में तारीखी मैंडेट देने पर आसाम और मगरबी बंगाल के लोगों के तई तशक्कुर का इजहार किया। मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम में असेंबली इंतखाबात के इब्तदाई रुझान के तनाजुर में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में तारीखी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पहली बार मगरबी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। जनाब पूनावाला ने यह भी कहा कि बीजेपी आसाम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मुकाबला एनडीए और टीवीके पार्टी के दरमियान है।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इधर कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने इब्तदाई रुझान पर तबसरा करते हुए कहा कि ये शुरुआती रुझान हैं और जल्द ही पूरी तस्वीर वाजे हो जाएगी और इसके बाद ही नतीजों के बारे में कुछ कहना मुनासिब होगा।
2: 2-2.5 घंटे बाद जब स्थिति और क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, तब बात करने में ज्यादा आनंद आएगा। हर राज्य के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 राउंड हुए या 3 राउंड हुए होंगे, 20 राउंड बाकी हैं हर असेंबली में, तो इतनी जल्दी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के ताज़ा रुझानात में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की कारकर्दगी से जाहिर होता है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में लोगों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। 5 रियासतों के 7 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती का सिलसिला भी जारी है। इनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2-2 असेंबली हलके और गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 असेंबली हलका शामिल है। ताज़ा नतज के मुताबिक बीजेपी ने 2 सीटें जीत ली हैं और 3 हलकों में उसे सबकत हासिल है। कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक एक सीट पर आगे चल रही हैं। त्रिपुरा के धर्मानगर हलके में बीजेपी के जहर चक्रवर्ती ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अमिताभ दत्ता को 18,290 वोटों के फर्क से हरा दिया। नागालैंड के कोरिदांग असेंबली हलके में बीजेपी के दाउचिर आई इमचेन ने आज़ाद उम्मीदवार तोशिकाबा को 3,123 वोटों से शिकस्त दी। कर्नाटक में बीजेपी के श्रीनिवास टी दास करियप्पा देवनागरी साउथ हलके में आगे चल रहे हैं, जबकि बागलकोट में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलप्पा मेती 17,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस को 164 रन का जीत का निशाना मिला था, जिसे उसने 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। एक दूसरे मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक्वामी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल में बीजेपी शानदार कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। 293 सीटों में से बीजेपी को 193 सीटों पर सबकत हासिल है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 96 सीटों पर आगे चल रही है। आसाम में राय दहिंदगान ने फिर से बीजेपी में एतमाद जाहिर किया है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले बीजेपी की पार्टी टीवीके ने शानदार शुरुआत की है। हुक्मरान डीएम के तीसरे मकाम पर चली गई है। वजीर आला एम के स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के जेर क्यादत यूडीएफ बाएं बाजू के एलडीएफ को पीछे छोड़ते हुए वाज अक्सरियत की समत बढ़ रही है। पुदुचेरी में एनडीए फिर से इक्तदार हासिल करने की जानिब गामजन है और असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने त्रिपुरा और नागालैंड में 1-1 सीट जीती है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news.

समीन फिल्मी संगीत आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, हमारा अगला ऐलान सुनिए। आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन समिंदु जुडाई बजे बली बोजो उच्छा कर तो रो पेश करन बशीर अहमद बिंदु ती हिंद से थी बली बोजो मनीष कला में अब्दुल करीम।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आज की निशस्त का प्रोग्राम लेकर मैं आपकी मेज़बान फहमीद आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी खैर वाफियत से हैं। दोस्तों, नगमों का सफ़र फिर से शुरू, और लेकर आए हैं हम आपके लिए कुछ दिलचस्प से खूबसूरत से नगमे। दोस्तों, नगमों के साथ जैसे दिल का मौसम बदलता है, तो वैसे ही आज भी मौसम के मिजाज ज़रा बदल चुके हैं। क्योंकि जैसे हम सुबह घर से निकले तो मौसम बड़ा खुश मिजाज था। वैसे भी अभी बारिश हो रही है, लेकिन मौसम के मिजाज वैसे भी खुशगवार है, क्योंकि पल पल भर में मौसम बदलना एक मिजाज

ही तरह होते हैं, कभी इंसान खुश तो कभी इंसान गमगीन। लेकिन मौसम के मिजाज भी कभी ऐसे ही होते हैं, कभी खिली हुई धूप तो कभी छलकती हुई वो बरसात। तो दोस्तों आइए इसी मौसम की खुश मिजाजी के लिए आइए सुनते हैं फिल्म लम्हे का ये नगमा सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर का गाया हुआ।

जी दोस्तों, आज हम जो फिल्मी नगमों का ये सफ़र जो है, कहते हैं लफ्ज़ों में वो जादू नहीं होता जो सुरों में होता है, और जब संगीत की लहर दिल के तारों को छूती है तो रूह झूम उठती है। दोस्तों, आज की ये शाम खुशियों के नाम, मोहब्बत के नाम और सुरों के नाम। कहते हैं महफिल रक्सो सुरूद आज सजाई जाए, हर तरफ प्यार की खुशबू बसाई जाए, गम को भुला के ज़रा मुस्कुराना सीखो, आज की ये शाम बड़ी धूम से मनाई जाए। दोस्तों, किसी भी का किस हम कोई भी काम करने से पहले अगर इब्तिदा करते हैं रब के नाम से, तो बिल्कुल बाबरकत नाम हो तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों, हर काम की शुरुआत बाकायदगी से की जाए। दोस्तों, तो इस महफिल का भी हम बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस सुरों की महफिल में, तो असल सितारे वो दो दिल होते हैं जो एक नए सफ़र का आगाज़ करते हैं, और ये जोड़ी देखकर ऐसा लगता है जिसे कुदरत ने से बड़ी फुर्सत से संवारा हो। कहते हैं चांद तारों की जिया आपके कदमों में रहे, फूल जैसी ये कबा आपके कदमों में रहे, उम्र भर साथ निभाने का जो वादा है, तुम्हारा हरदम ये वफा आपके कदमों में रहे।

जी दोस्तों, ये नगमा आपने सुना समीर का लिखा फिल्म कुर्बान से, और इस नगमे को आवाज़ें दी थी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। दोस्तों कहते हैं वो पहली बार जब दिल ने किसी के लिए धड़कना सीखा, जब एक मुस्कुराहट दिन बना देती थी और एक नज़र पूरी रात जगा देती थी। दोस्तों कभी कभी पहला एहसास ही सबसे खूबसूरत कहानी होता है। कुछ बातें कभी कही नहीं जाती और कुछ लोग बगैर कुछ कहे सब कुछ कह जाते हैं।

0: जी दोस्तों, अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया ये नगमा आपने सुना, फिल्म का नाम पापा कहते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम जारी रहेगा, हम पहले लेते हैं ये छोटा सा वक्फा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: फौजी भाइयों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम एक बार फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, आइए सुनते हैं अगला नगमा। हमने क्यों किया है फिल्म सलामी से, जिसे आवाज़ें दी है आशा भोसले, कुमार सानू ने, और नगमे को लिखा है मदन पाल ने और नदीम श्रवण का इसमें संगीत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पहले सावन या बरसात से हमने शुरुआत की थी। कहते हैं बारिश की बूंदें अजीब तो होती हैं, कभी हंसा देती है और कभी किसी की याद दिलाकर रुला देती हैं। दोस्तों, जैसे हर रात के बाद एक सुबह होती है और हर टूटे दिल के बाद एक नया ख्वाब। दोस्तों, ज़िंदगी चाहे कैसी भी हो, धुन तो सुरों की सरगम बजाती है, धड़कनों की आवाज़ बढ़ा देती है।

जी दोस्तों, ये नगमा आपने सुना कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म सलामी से। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी उदास रहे हों और कोई ऐसा नगमा अचानक या कोई ऐसा गीत छेड़ गया हो जो दिल को सुकून दे गया हो, या फिर खुशी के लम्हे में कोई तेज़ धुन आपके कदम खुद ब खुद थिरकने लगे हों। दोस्तों, यही तो है इस मौसीकी का जादू। दोस्तों, मोहब्बत, दोस्ती, उम्मीद और ज़िंदगी के रंगों से भरे कुछ यादगार फिल्मी नगमे। साथ ही हमारी बात ये शेर व शायरी और मौसीकीगारों की, जिन्होंने लफ्ज़ों और साज़ों के ज़रिए हमारे जज्बात को आवाज़ दी हो।

जी दोस्तों, ये नगमा आपने सुना सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म लकी से। दोस्तों आखिर में ये सुनते हैं फिल्म सलमा पे दिला गया से कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये आखिरी सौगात।

0: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सामिन 3:50 हुए हैं। पेश है हमारे यहाँ से खबरें।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सहपर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं तजम्मुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का तलबा एथलेट्स पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफीर बनने पर जोर। अभियान के तहत ड्रग स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। पिछले 21 दिनों के दौरान 481 FIR दर्ज, 518 स्मगलर गिरफ्तार। सिविल सेक्रेटेरिएट और दरबार मुंह से जुड़े दीगर दफातर ने श्रीनगर में किया काम शुरू। और 4 रियासतों और 1 यूटी में वोट शुमारी का काम जारी। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तलबा एथलेट्स पर जोर दिया है कि वह नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफीर बनकर जम्मू कश्मीर को इस लानत से पाक करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशो चैंपियनशिप का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जो मुख्तलिफ महकमे समाज को मनुष्यात से पाक करने के लिए अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, तहम तलबा समेत तमाम तबकों को भी इस काम में भरपूर तआवुन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वुशो चैंपियनशिप एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे के साथ साथ यकजहती नज्म व जब्त और नौजवानों की तवक्कात की अक्कासी करता है। इसी दौरान

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर हाँ और सारियां को अदब तहत ताजीम नाल अस्सलाम अलैकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जी तुसी सारे खैर खरीद नाल होसो। सामीन अस्तियां आसा पासा कई लोग ए जिओ ने जेड़े अस्ती जिंदगी वास्ते

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना सामीन ना थारा मेजबान शौकत अहमद बोकड़ा का तरफ ते तम सारा ना प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मन पसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होएगा। सामीन इकराम, जिस तरह तम जाने कि हम अपना इस प्रोग्राम में गीत संगीत के अलावा मुख्तलफ मौजू न लेके थारे नाल गल करता रहा, तो इसके अलावा एक मुलाकात सिलसिला प्रोग्राम के तहत आम मुख्तलफ शख्सियत के नाल इंटरव्यू भी करता रहा। सामीन इकराम, तमने दस्तो चलूँ कि इसे सिलसिला ना अगे बढ़ाता आज का इस प्रोग्राम में भी थारे वास्ते एक इंटरव्यू पेश कियो जाए को महामन मनशा हाकी साहब होर के नाल गलबात की है यूनस कालूखेल साहब होर ने। यो इंटरव्यू आज का प्रोग्राम में थारे वास्ते पेश करा का। प्रोग्राम का शुरू में सामीन इकराम, थारे वास्ते पेश है मोहम्मद इकबाल मलंगामी की आवाज में गजल में रस्सा बटिया या रेत का नाले मैल टाया बना बना के। यू कलाम है मरहूम इकबाल अजीम चौधरी साहब को।

जी हाँ सामीन, हम गज़ल सुन रहा था। आवाज़ थी मोहम्मद इकबाल मलनगामी की, तय कलाम था इकबाल अजीम चौधरी साहब को। ते अग्गे जी थारे वास्ते हमने सैफल मलूक ला के रखे हुए, आवाज़ है गुलाम हसन तबस्सम की।

0: हमने डिक्शनरी काम किया यूँ खाली तम इदारा में बहस के करें था कि नहीं थारो बोर्ड जो इलाका में भी चले थो फील्ड में भी चले थो कितना
1: अलबत्ता मा,
0: जी जी जी
1: मारो यो दो कि हम खास तौर पर लफ्ज जड़ा था अल्फाज जड़ा था
0: जी जी
1: मुख्तलिफ इलाका दी खास तौर पर प्योर मटीरियल जड़ा ना लैंग्वेज का जड़ा वर्ड सी लफ्ज जड़ा है
0: जी जी
1: वे ग्रायंग बिच
0: ठीक
1: सही उत जित दूजिया जबाना का असरात घट है
0: जी जी
1: उसके बिच लफ्ज जड़ा में ज्यादा हासिल में तो कोशिश करी थी हमारा बहुत
0: जी।
1: सारा लोगों के नाल रابطہ था कामी लोगों उनको तावन मारे नाल शामिल रही हुई उनके बिच खास तौर पर फोक जमा करण मा या दूजा अब्दुल गनी आरफ साहब था जनाब मुख्तारुद्दीन तबस्सम साहब था हमीद कसाना वगैरह ये लोग जड़ा है इन्होंने बड़ो कंट्रीब्यूट करे हमारे नाल और इन्होंने लफ्ज हमना जमा करके दीता और हम पर दी और उन्होंने तरतीब दे के फिर उसके बाद डिक्शनरी बोर्ड जड़ो थो उसके सामने रखियो और फिर उन्होंने इंट्रीज फाइनल करके उस जमाने में कंप्यूटर को दौर नहीं तो एक एक चीज जड़ी एक एक एंट्री जड़ी है वह कलम के नाल करनी पे थी हमारा को कातब था तरमा सईदा नईमा जड़ी थी हमारी कातबा थी उन्हें बहुत मेहनत के नाल डिक्शनरी की छह जिलद जड़ी थी वे किताबत करी
0: जी तो मच्छा जी एक वक्त हो जिस टाइम तम कल्चर एकेडमी में था ते हमारा ग्रही इलाके के बीच कितने न कितने साल में एक आध प्रोग्राम हुआ थो तो लोग जिस तरीके नाला कहे ना कि ईद आ जाएगी ईद की खुशी हुआ थी इस तरह अडिक रहती कल्चर एकेडमी वाला एक प्रोग्राम करेगा उसका कुछ मुशायरा हुआ गो म्यूजिक प्रोग्राम हुआ गो एक अपनी चीज देखने मिले थी और इसके नाल अदब ने कितना फायदा मिला था जुबान ने कितना फायदा मिला
1: देखो एक चीज जड़ी है यह है कि जिस वे तम फील्ड में तम रूरल एरिया से मान जाके खास तौर पर जिस वे प्रोग्राम करेगा अर्बन एरिया की गल ये कह के उसमें सिलेक्टेड लोग आएंगे उसमें थारा इनवाइटी शामिल है जिन्होंने तमने मेहमान का तौर पर बुलाया हुआ है वे लोग शामिल होंगे लेकिन ग्राया के बीच देहातों के बीच जो प्रोग्राम किया जाए उनमें आम आदमी शामिल पे उनके बीच बच्चा भी शामिल में उनमें बुजुर्ग भी शामिल में उनमें पढ़ाया लिखा भी लोग शामिल में उनमें अनपढ़ भी शामिल में तो उन सारा दिलचस्पी जड़ी है उस पास है पता है और उसके नाल कई नमा लिखण वाला जड़ा वे सामने आवे उनकी दिलचस्पी उस है और अपनी मां बोली वास्ते अपनी जबान वास्ते अपनी सकाफत वास्ते भी लोग जड़ा है वे कम करण वास्ते लक बदने अगे सामने आवे
0: जिस वक्त एक किताब तम छापे चाड़े था ना उसके बीच कहानी में थी गजल में थी गीत में था नावल में थी ड्रामा में था खासी चीज उसमें शामिल करे में था तो इस तम किस तरीके ना सिलेक्ट करें था या इसलाह की जरूरत हुआ थी मारा नुआ लिखा रिया ना तो यू सिलसिले किस तरह चला था
1: देखो उसमें देखियो जाए तो कोई चीज हम कोशिश करा था कि एक शराजो जड़ो मंथली नहीं तो गोजरी को जड़ो तो वो बाई मंथली तो हर दो महीना के बाद एक शुमारो जड़ो है वो हम कढ़ा था तो शराजा की खास तौर पर यह चीज रहती कि उसमें ताकि कहानी भी शामिल की जाए क्योंकि लिखने वाला ना भी सपोर्ट मिलनी चाहिए ना उन्होंने कुछ लोग जड़ा है कुछ चलो आज को दौर मुंह तो लेकिन यो है कि उस वक्त या थी कि मेरी चीज जड़ी है वह किसी किताब में छपनी चाहिए वह या कि मेरी जुबान में प्रोग्राम वेल को यह बड़ी चीज थी उस पे लोग जड़ाई वे खोल के गोजरी जड़ी है वह ग्राया मा शहरा मा बोलन दी कितना में था
0: जी जी
1: इस वास्ते कि ये लोग डिसलोकेट किया गया था किसी जमाना में इन्होंने अपना मरकजा नालू दूर की होगी तो ये अलग थलग पया लोग था इन्होंने अपनी जबान ना अपना सीना के बीच बचा के रखी तो जिसको आज हम चटकारा लिया लगा मजा लिया लगा आज हम सुना लगा उनके बीच गावा लगा उनके बीच लिखा लगा लफ्जा हुआ वे लफ्ज उन्होंने उस वक्त अपना सीना में संभाल के रखिया और नस्ल दर नस्ल मुंतकल करता रहा ता भी आज महाराज थोड़ी पूछा अगर वे इस पास दिलचस्पी ना रखता अपनी जबान ना छोड़ देता दूजी का जबान बोलता तो शायद यो जखीरो महाराज थोड़ी ना बोलता
0: جی تو شروع شروع میں جس ٹائم تم کلچر اکیڈمی آیا تھا تو یاد تھا رہا تم نے جس ٹیم کو ذکر کیا، یا ایک بڑی ٹیم تھی، عظیم ٹیم تھی، خیر عظیم صاحب تھا، نظیم صاحب تھا، سروری صاحب تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اس وقت مٹیریل بڑو کارٹ ملا تھا، یعنی ہمارا شاعر کارٹ تھا، ہمارا ادیب کارٹ تھا، خیر آہستہ آہستہ یوں کاروان جو ہے یوں آگے آگے چلتا رہی ہو، تو اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آئے ہو کہ جس وقت ہماری گوجری زبان بھی کافی امیر بن گئی، حالانکہ خاصی ساری نجی طور پر بھی اور سرکاری طور پر

0: भी किताब आन लगी। तो उसके बाद तम आज की देखेंगे, हालांकि आज काफ़ी वक्त बदल गई है, हालात बदल गई है, तो उस दौर ना आज का दौर ना तम जबान का हवाले नाल किस तरह देखने लगा।
1: एक चीज़ खास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि मेरा लिखन नवा लिखने वाला जड़ा है उन्होंने बहुत संजीदगी नाल काम करने की जरूरत।
0: ठीक,
1: अज वह जबान नहीं जड़ी हम शराजा मछा पावा था।
0: अच्छा,
1: इसी तरह जने एक चीज जड़ी है वह गोजरी की का नाम पर महफूज हो जाए, एक गोजरी जबान की बुनियाद अब बुनियाद बन गई।
0: जी जी,
1: अब आज गोजरी जबान यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाए, आज प्रसार भारती वाला जड़ा ब्रॉडकास्ट की भी करे ते टेलीकास्ट भी करे।
0: जी बिल्कुल,
1: इसका बड़ी बड़ी लेवल के ऊपर पिछली बारी गोजरी की नुमाइंदगी वास्ते हूँ दिल्ली में फेस्टिवल ऑफ राइटर्स से जुड़ो तो उसके बीच गोजरी की नुमाइंदगी भी दिल्ली में साहित्य अकेडमी की तरफ से जो प्रोग्राम हुआ तो उसमें तो ट्राइबल लैंग्वेज में पार्टिसिपेशन करने वास्ते मेरे नाल और भी कोई संगीत हो शायद जान मोहम्मद हकीम तो वगैरह, तो इस हद थोड़ी जबान जड़ी है वह अगे चलेगी। तो तुमने जरूरत है इसके पीछे और मेहनत करने की, उन लोगों ने जड़ा नवा हामी लगा उन्होंने पिछलिया चीज़ा ने लिए गया तो उनके ऊपर इसलाह करन की तो उनके ऊपर तनकीद करन की बात की गल है।
0: जी जी।
1: इस वे नमो मवाद जड़ो उन्होंने अदब के बीच जरूरत है, जिसको काटो वे देखने लगा उसने पूरा करने की लोड़ है। उन्होंने कहानियां वाले पास भी तवज्जो देनी चाहिए, उन्होंने मकालात वाले पास भी तवज्जो देनी चाहिए, उन्होंने मियारी शायरी जड़ी है उसने सामने ले आना चाहिए। यू नहीं कि आज को खास तौर पर इन लोगों की गल करूँ, जड़ा मेरा दोस्त जड़ा है भी मीडिया के नाल मुंसलिक है और भी अपनी चीज जड़ी फुसफुसी जिनमें वजन नहीं होता, जिनमें बैर नहीं होती, जिनमें लफ्जों को कोई सही बैठाक नहीं होती, उन चीज़ों ने जड़ी है वो इसके ऊपर चार चुनिया अपलोड करें
0: जी जी
1: नेट के ऊपर
0: जी,
1: तो उसके नाल एक गलत तासर एक जाए जरूरी है,
0: जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है
0: जी,
1: कि ये अपनी जुबान ना अपनी शायरी ना
0: जी
1: अपनी नसर ना मेयार बनायो जाए मेयारी। तो और जो हम असर जुबानों को जोड़ो लिटरेचर आज की है, आज आलमी सतह को लिटरेचर धारा एक मोबाइल के बीच अवेलेबल
0: जी जी
1: है कि नहीं, एक क्लिप एक क्लिक करनो
0: जी,
1: क्लिक करनो तो तुम जित मर्जी ये चले जाओ जिस जुबान में पढ़नो चाहे उसमें पढ़ो
0: जी।
1: तो ये सारी चीजें ना देखना चाहिए, अरबूज को भी थोड़ो बहुत लिहाज करना चाहिए, क्योंकि हर सिनफ का अदब की हर सिनफ का अपना लवाजमात है और उनके अंदर उसने रख के उस पर काम किया जाना चाहिए।
0: मतलब जी कड़ी सिनफ तम दिस अपनी जगह कि हाला उस पर काम करना बाकी है। शायरी तो तकरीबन मेरा लगा कि हर एक इंसान चाहे कि वो शायरी वाले पास आऊं,
1: कहानियां भी अच्छा खासो जखीरो खास तौर पर बड़ी सोनी कहानी लिखी है
0: जी,
1: और डॉक्टर रफीक अंजम ने लिखी है
0: जी,
1: यू इन्होंने कहना है
0: वकार साहब
1: के वकार साहब ने लिखी है और भी बहुत सारा
0: बारू साहब जी जी
1: बारू साहब ने लिखी है, तो बहुत सारा ही कहानियां वाला नसीम पुंछी साहब ने बहुत अच्छी कहानी
0: नावल वाले पास है, मारा लोग बड़ा काटा
1: है नावल वाले पास है, नावल मेरा ख्याल में दो या त्रै नावल तकरीबन छपे है। तो नावल एक बड़ी चीज जड़ी है नावल की, उसमें थोड़ी जी एक चीज जड़ी महसूस की भैया कि आज का जमाना में नावल पढ़ने को उतना ज्यादा नहीं रही, उतना वक्त नहीं लोगों को, लंबा अफसाना जड़े लम्मी कहानी जड़ी है उन्होंने भी कोई पढ़न वास्ते तैयार नहीं, विचाई के मुख्तसर एक बैठक बैठक माँ और वह भी मुख्तसर बैठक जड़ी है, उसके बीच जब चीज न पढ़ ली हो जाए उसका रस न निचोड़ लियो जाए।
0: जी जी जी, तो मसा जी तुमने मसा ही पहला जिक्र किया था कि एक क्लिक पर यानी सारे को दस्तियाब है, यानी आता था हम इंटरनेट और सोशल इसका जमाना आ गया, सोशल मीडिया का जमाना के बीच इस सोशल मीडिया नाल मारा अदब ना मारी जबान ना कितनों एक फायदो मिलियो
1: इसके नाल, यू है कि मारो राबतो जड़ो है वो दुनिया के नाल राबतो है, गुजर सिर्फ हिंदुस्तान या कश्मीर में इतनी तक नहीं, दूर दूर तक मुल्क बाहर का मुल्क के बीच इतका गुजर भी जाके बाहर के बच्चे और बाहर महा उत का बसन वाला गुजर जड़ा है उन्होंने भी ये हमारी जबान के नाल अपनी जबान के नाल उन्होंने दिलचस्पी है राबतो है, तो वो राबतो जड़ो वो वसी तरह है क्योंकि दुनिया सिमट के एक नुक्ता पर आई गई।

0: तो वो नुक्ता जड़ो है वो फैल के पूरी दुनिया पर छा गयो। तो ये सारी चीज ने जड़ो है मद्देनजर रखना चाहिए, इसमें देखना चाहिए, अपना हद तक महदूद किसी चीज ने नहीं रखना
1: जी। हमारे थारा जैसा जो हमारा अदीब है या इसके अलावा हमारा सियासी लीडर है, हमारा समाजी कारकुन, हमारा हालांकि नौजवान है आजकल भी चाहे लगा कि हमारी जड़ी जबान है या हिंदुस्तान का 8वां शेड्यूल में शामिल होनी चाहिए, इस वास्ते काफ़ी कोशिश हो रही है, तो क्या वो जो पैरामीटर है 8वां शेड्यूल का उस पर हमारी जबान जड़ी है इसके बीच जो मारो मवाद है वो उतरा लगो
0: तमाम लोगों को जिन शोभा नाल जो शख्स मुंसलिक है, खास तौर पर गुजरा या गोजरी को आम दर्द अपनी सफात।

0: हुआ शामिल होनी चाहिए। इस वास्ते काफ़ी कोशिश हो रही हैं। तो क्या वो जो पैरामीटर हैं 8वां शेड्यूल का, उस पर मारी जबान जी है इसके बीच जो मारो मवाद है वो उतरा लगो
1: तमाम लोगों को जिन शोबों नाल जो शख्स मुंसलिक है, खास तौर पर गुजरा या गोजरी को आम दर्द अपनी सफात और सकाफत और कल्चर ना या अपनी जबान ना अपना लफ्जा ना अपना मवाद ना बचाने वास्ते अपना फोक ना बचाने वास्ते जो काम करना चाहे उन लोगों ने इस पास दिलचस्पी रहनी चाहिए और जो जड़ा फील्ड जिसके नाल मुंसलिक है उसकी जड़ी जिम्मेदारी बने उसने निभाने की लोड़ है और ज़रूरी है। अगर सरकारी सतह पर हिंदुस्तान की लैंग्वेजों के बीच गोजरी को ना दर्ज हो जाए तो इसकी तरक्की का और रास्ता खुलेगा और यह चीज़ जड़ी है जड़ी चमके का लवाजमात की वे लवाजमात सामने रख के गोजरी में कम करना रानी उन कर्मियों ने पूरा करना चाहिए बजाय इसके कि छाल मारन के उन कमियां ना पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और संजीदगी नाल उन प्रोजेक्टों ना उन नुकतों ना उन चीज़ों ना लेनो चाहिए उनके ऊपर काम करने की लोड़ है। और खास तौर पर अगर ये ग्रुप बना के
0: ठीक
1: एक अदारा का तौर पर किसी चीज ना करेगा उसमें 10 आदमी जोड़ के काम करेगा उसमें 5 आदमी जोड़ के काम करेगा वे डिस्कस करेगा वह चीज और होगी। और अपना तौर पर एक चीज जरी एक आदमी शायरी करेगा वो 10 आदमी दूजा ना सुनावेगा फिर उसके बीच वे नुकताचीनी भी करेगा उसकी तारीफ करेगा वह चीज जड़ी है वह डिसिप्लिन दूजा के सामने आवेगी उसको मियार और होगा।
0: मकसद जी अगर हम थोड़ा लोक अदब की गल करें लोक अदब जो यो भी जबाना ना तरक्की देने वास्ते जबाना ना अरूज पहुँचाने वास्ते बहुत जरूरी है तो गोजरी जबान में कितने काम इस पर हुई हो।
1: लोक अदब किसी भी जबान को लोक अदब जो वह जबान की बुनियाद है उसके बीच मुहावरा है उसके बीच लफ्जियात है उसके बहुत सारी चीज जड़ी लोक अदब के बीच जिनके ऊपर जबान को स्ट्रक्चर जड़ो है ढांचो जड़ो वो तैयार है तो इसमें जरूरी है कि वो काम की हो जाए। इसमें लोकगीत है लोक वार है लोक कहानी है तो इन सारिया चीज़ों ना जमा करना तो जब तक एकेडमी को ताल्लुक है या रेडियो हो या दूरदर्शन को जिन्हें जब तक ये काम कर सकिया उसमें इन्होंने जड़ी चीज़ इन्होंने दस्तियाब हुई उन्होंने रिकॉर्ड भी करो और अकेडमी वाला ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जीतू जीतू में जो चीज थी उसना मंगा के उसना लिख के उसना छापन की कोशिश करिए जिसमें लोक कहानी है जिसमें लोक बार है जिसमें लोक गीत है तो इन चीज़ों ना लेकिन और कई रही चीज जुड़ी है उन्होंने भी इसके बीच शामिल किए जाना चाहिए तो काफी काम होगा लोक अदब में कोई घट काम नहीं
0: यहाँ
1: दूजिया जबाना का मुकाबला में काफी कम हो
0: यानी मारी भी जबान जड़ी है या भी इस हवाले ना बड़ी अमीर है। तो मच्छा जी थोड़ा थारा जाती तरफ आवांगा जाती थारी जिंदगी का हवाला ना ते खैर तम ने एक बड़ो अरसो कल्चर एकेडमी नहीं तो वो तो खैर थारो सरकारी काम थो तम किताब छापे चाड़े था एडिटिंग करें था लिखें सारा कुछ करें था और उसके बाद निजी तौर पर तमने जाती तौर कितनी किताब जड़ी है भी
1: एकेडमी तो बाहर आने के बाद जड़ी है मैं करीब 2 किताब जड़ी हैं वे तैयार करी हैं लिखी हैं एक कोई मेरे ख्याल कोई 400 गजल को एक मजमू एक तरतीब दी तो है
0: जी जी।
1: मेरे ख्याल में अकेडमी आई उसने छापे लगा जी जी उन्होंने मट्टे लिए कि नहीं हम छापांगा तो मजमून है खासा सारा
0: जी
1: मेरे ख्याल को ये 35 एक मजमून उसके बाद जड़ा लिखा है
0: नसर
1: जी जी नसर के बीच
0: कुल थारी कितनी किताब आ गई आज तक
1: इन्होंने जड़ी नवी छोड़ के
0: पिछले
1: 6-7 किताब है जड़ी मैं अपना जाती जड़ो मेरो अपनों काम है उतनो क्योंकि हूँ काम करना चाहूँ उस चीज ना कोशिश करनी चाहिए कि वह चीज جس کے نال اپنی زبان کی اپنی ثقافت کی بنیاد جڑی ہوئی
0: جی جی.
1: اس چیز نہ سامنے لے جائے لے آئے جائے نہ کہ نمبر نہ.
0: اس وقت بھی حالانکہ تم خیر سرکاری محکمہ تے ریٹائر ہو گیا ہے لیکن تھارے کول ادیب ہیں نوجوان نے آتا رہے ہیں تھارے کول اصلاح کرانے واسطے یا
1: تم بہت سارا لوگ جی جی. میں ریسرچ سکالر تھا میں فارن یونیورسٹی ہاں جڑا ہے گودری تو مطلب

0: जागल साहब है, इंजीनियर है भी, वे भी जितना होना दी हो सके लोग, तो इन चीज़ों ना देखने के बगैर कि जितनी जिसम जितनी सलाहियत है उस नंबर कार आन के तो अपना कंट्रीब्यूशन जो है गोजड़ी ना देना चाहिए
1: जी। चलता चलता तम हमारा लिखारियाँ ना हमारा खास तौर नौजवाना ना अपनी तरफों के पैगाम देना चाहेंगा, क्या रहनुमाई करेगा, क्या सलाह देंगे?
0: मेरे के पैगाम है या कहूँ कि अपनी जबान अपनी सकाफत
1: जी
0: अपना अदब के नाल खलूस नाल इसके वास्ते काम करना चाहिए, मुखलस होना चाहिए
1: जी।
0: और जरूरी है कि मेहनत की जाए, पढ़ियो भी जाए
1: जी,
0: पढ़ायो भी जाए,
1: ठीक,
0: और मताला की बेहद ज़रूरत है और उस मताला के ऊपर काम करने की लोड़ है, उस तो फायदो उठा के गोजरी न तरक्की देने की लोड़ है।
1: मोहम्मद मनशा खाकी साहब तब हमारा स्टूडियो में तशरीफ ले आया, तमने खासी सारी गल अपना हवाला नाल भी की, गोजरी जबान और अदब का हवाला नाल की। इंशाल्लाह जिंदगी रही, अगर किसी मुलाकात में किसी और मौजूद पर थारा गुफ्तगु करेंगा, आज वास्ते थारो बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: शुक्रिया, थारो भी शुक्रिया।
2: जी सामीन, महामन मनशा हाकी साहब और के नाल लियो गियो इंटरव्यू हम सुन रहा था, तो इनके नाल शरीके गुफ्तगु था यूनुस कालूखेल साबुर। प्रोग्राम का आखिर पर थारे वास्ते पेश है यो नगमा।

0: अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शाम के 5:50 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से गोजरी में खबरें पेश होंगी, जिसके फौरन बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन पेश होगा। पहले मकामी गोजरी खबरों का बुलेटिन।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। शाम का 5:50 ओयाई गोजरी खबरनामो लेके हूँ अल्ताफ अहमद। पहला खास खबरों की सुर्खी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तुलबा एथलीट्स पर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का सफीर बनन पर जोर। अभियान के तहत ड्रग समग्रण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी। पिछले 21 के दौरान 481 FIR दर्ज, 518 समगलर गिरफ्तार। सिविल सेक्रेटरीट और दरबार मुंह न जुड़िया, दूजा दफ्तर ने श्रीनगर में किया कामकाज शुरू। तय 4 रियासत और 1 यूटी में वोट शुमारी को काम जारी। उन पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तुलबा एथलीट्स पर जोर दिता है कि वे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का सफीर बन के जम्मू कश्मीर ना इस लानत तो पाक करन में अपनो कलीदी रोल अदा करें। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विश्व चैंपियनशिप को इफ्तिताह करने के बाद खिताब करता हुआ उनने क्यों कि इंतजामिया तमाम आला तालीमी इदारा में एक फाल स्पोर्ट्स कल्चर कायम करन और हर एक तालब इलम ना मसावी मौका फराहम करन की वादा बंद है। उनने क्यों कि यह विश्व चैंपियनशिप एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा के नाल ना यकजहती नज्म जबत और नौजवाना की तवक्कात की अकासी करे।
2: एक महज एक खेल आयोजन नहीं है, यह उन मूल्यों का जीवंत प्रमाण है जो हमें एक समाज के रूप में जोड़ता है। यह शांति समानता और मित्रता की भावना का उत्सव है जो केवल यूनिवर्सिटी के बीच नहीं बल्कि सभी लोगों और समुदायों के बीच भारतवर्ष की अद्भुत विविधता का ताना बाना बनता है। इस कंपटीशन में भाग लेते हुए आप सभी को याद रखना है कि भागीदारी और खेल भावना जीत या हार से कहीं अधिक उन अमूल्य संबंधों को सुदृढ़ करती है जो हमें एक परिवार के रूप में जोड़ती है। मैं चाहूंगा कि अपने फोन पर एक स्टूडेंट एथलीट कम से कम 20-30 सेकंड या 1 मिनट का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें और जम्मू कश्मीर तथा अपने राज्य और देश के सभी नौजवानों से नशा छोड़कर स्पोर्ट्स को अपनाने की अपील करें। और मुझे विश्वास है कि आपकी अपील भटके हुए नौजवानों को सही मार्ग पर चलने के लिए जरूर प्रेरणा देगी।
1: इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान, कश्मीर कमिश्नर सेक्रेटरी

0: पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
1: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस, वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
0: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी आईयूएमएल ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ सीपीएम को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। एआईएडीएमके को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है। पीएम के 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार एन रंगास्वामी की एआईएनआरएस पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। एआईएडीएमके और कांग्रेस 1-1 और डीएमके को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजयी हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी श्रीनगर शबजित 5 मिनट शब्द पेश प्रोग्राम गमी बयान खतरा।

रात 9:30 पर डॉक्टर सोनलाल कौल का तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा नशर होगा नाद। शब 10 बजे प्रोग्राम पेश होगा गीतों भरी कहानी। आज आप मकबूल साल की लिखी कहानी सुनेंगे शायर की मोहब्बत। प्रोग्राम पेश करेंगे रशीद निजामी।

0: मीठे में 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शाम के 7 बज चुके हैं।
1: आकाशवाणी श्रीनगर, अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
2: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट, अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: शेरबीन के सामईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, दरबार मुंह के बाद आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में बाजाबता तौर मामूर का कामकाज शुरू, वजीर आला को पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वादी में आज आसमान पर गहरे बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश, कई इलाकों में जलाबारी की भी खबरें, कल से दोबारा मौसम खुलने की पेशगोई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की खिलाड़ियों से नशा मुखालिफ मुहिम में किरदार अदा करने की अपील। किश्तवाड़ जिले के कई तिबी मराकज पर अमले की कमी, मरीज परेशान और माहौलियाती तबाही और गैर कानूनी कान कनी एक संगीन मसला बनकर उभर रहा है, मायरीन की राय। और भी मजबातें एक मुख्तसर वक्त के बाद।
4: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बना। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
5: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
6: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
7: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
8: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
7: अच्छा भाभी,
8: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
7: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें

0: जरूरी।
1: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
2: इशूड इन पब्लिक इन ट्रस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
3: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
4: पर क्या कर सकते हैं?
3: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
5: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
6: University of Kashmir invites online applications. 5-year integrated programs के लिए admissions open हैं. Applied Geology, Arabic, BA LLB, Botany, Data Science and Artificial Intelligence, Electronics, Energy Studies, Hindi, Home Science, Kashmiri, Linguistics and English Language Teaching, Mass Communication and Journalism, Persian, Physics, Sanskrit और Tourism and Travel Management जैसे courses में. साथ ही 4-year UG programs भी available हैं. Design your own degree, Music और Fine Arts में. लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है 7th मई तक, अप्लाई नाउ। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.kashmiruniversity.net। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेपिंग लीडर्स ऑफ टुमारो।
7: शेरबीन, अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन, आज दरबार मुख्य दफातर ने श्रीनगर में बाजाबता तौर अपना कामकाज शुरू किया। इस सिलसिले में आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां वजीर आला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन और अफसरान ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। वाजरे के जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह की रिवायत महाराजा के दौर से रही है और इस इंतजाम के तहत सरकारी दफातर गर्मी के 6 माह श्रीनगर जबकि सर्दी में जम्मू मुंतकिल हुआ करते हैं। अलबत्ता 5 अगस्त 2019 के बाद से इस रिवायत को खत्म किया गया था। नई सरकार तश्कील देने के बाद से इस रिवायत को दोबारा बहाल किया गया है। गोकि अब वो पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिल रही है। बजरे के 38 सरकारी दफातर ने 30 अप्रैल को जम्मू में काम बंद करके श्रीनगर का रुख किया और आज बाजाब्ता तौर इन दफातर ने श्रीनगर में अपना कामकाज शुरू किया। मजीद जानकारी सईद यासिर से।
8: दरबार मुंह के सिलसिले में आज श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरी समेत दूसरे दफातर 6 महीनों के बाद फिर से अपना कामकाज शुरू किया। इस मौके पर सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में हज़्बी रिवायत एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर वजीर आला, नायबी वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, सेहत और तबी तालीम की वजीर सकीना यतू, ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार, जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना, खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा भी मौजूद थे। वजीर आला ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सिविल सेक्रेटरी में मुख्तलिफ दफातर का दौरा किया और वहाँ पर हुए काम काज का भी जायजा लिया। इसी दौरान सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में दफातर के दोबारा खोलने के फौरन बाद वजीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के इंतजामिया सेक्शन की एक मीटिंग भी मुनक्कद की। इस मीटिंग में काबीना वजरा के अलावा वजीर आला के मुशीर और चीफ सेक्रेटरी अटल डब्ल्यू ने भी शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील, जमीनी सतह पर हदायत के मौसर नफाज और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने मुलाजमीन के लिए बेहतर रिहायशी सहूलियात और तमाम दफातर में बेहतर कामकाज बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इसी दौरान श्रीनगर की अहम सड़कों, जिनमें मौलाना आजाद रोड और रेजिडेंसी रोड भी शामिल हैं, को खूबसूरती के साथ आज सजाया गया था। वाजह रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौर इकतदार में दरबार मुंह की मुंतकली का अमल रोक दिया गया था। शाम 2025 में उमर अब्दुल्ला ने दरबार मुंह को दोबारा बहाल किया।
7: आपने सईद यासिर की रिपोर्ट सुनी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने खिलाड़ियों पर जोर दिया है कि वह नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफीर बनकर नौजवानों को मनुष्यात से दूर रखने और खेलों को अपनाने की तरगीब दें। वह कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशो चैंपियनशिप की इब्तदाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतजामिया आला तालीमी इदारों में खेलों के मजबूत कल्चर को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है, ताकि हर तालिब इल्म को सेहतमंद और फाल तर्ज जिंदगी अपनाने के मसावी मौके फराहम किए जा सके।

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि यह चैंपियनशिप महज एक खेलों का मुकाबला नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वीर की अमली अक्कासी है जो कौमी यकजहती नज्म व जब्त और बेहतरीन कारकर्दगी को फरोग देती है। मौसम ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो अपने मोबाइल फोन के जरिए मुख्तसर वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि मनुष्यात के खिलाफ बेदारी पैदा की जा सके और दूसरों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब किया जा सके। चैंपियनशिप में मुल्क भर के 150 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये इवेंट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के जेर एहतमाम मुनक्कद हो रहा है और 6 दिन तक जारी रहेगा। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन, आज सुबह से वादी कश्मीर के मौसम में बदलाव के बाईस दर्ज हरारत में काफी गिरावट दर्ज हुई है जबकि आसमान पर गहरे बादल छाए रहने के साथ साथ बाज इलाकों में हल्की बारिश जबकि बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इधर लद्दाख खिते में भी मौसम में बदलाव दर्ज किया गया और वहां हल्की बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई है। राजौरी से आरिफ कुरैशी के मुताबिक जिले के सब डिवीजन कोटरनका थाना मंडी नौशेरा कालाकोट और तहसील दरहाल में आज दोपहर जालाबारी और तेज बारिश ने किसानों की गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मौसम की इस गैर मुतवक्क तब्दीली ने जहां मामलाती जिंदगी को मुतासिर किया वहीं किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ा कर दी है। इलाके में दोपहर के वक्त गहरे बादल छा गए और फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी हुई जिसके नतीजे में खेतों में कटी हुई गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई। कई इलाकों में कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है जबकि बाज मकामात पर आज भी ये काम जारी था मगर बेवक्ती बारिश और जालाबारी ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में जगह जगह गंदम के ढेर बारिश से भीग कर खराब हो चुके हैं और इसके बाइस अब फसल जाया होने का खदशा है। मकामी किसानों ने बताया कि इस वक्त फसल को महफूज बनाने के लिए कोई मौसर इंतजाम नहीं है और इसके बाइस उन्हें मजीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मुतासर किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर मुआवजा दिया जाए और आइंदा ऐसे नुकसान से बचाने के लिए इकदाम किए जाए। इधर डीआईजी पुंछ मंजूर अहमद कोहली ने शेरबीन को बताया कि शोपियान को राजौरी और पुंछ अजला से मिलाने वाली अहम शाहरा मुगल रोड पर पीर की गली के मकाम पर बर्फबारी के बाद सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि बाला इलाकों में ताजा बर्फबारी और सड़क पर फिसलन के बाइस मुसाफिरों की हिफाजत को नजर में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि मुगल रोड पर सफर करने से गुरेज किया जाए जब तक कि सड़क को मुकम्मल तौर पर साफ करके दोबारा काबिल आमदोरफ्त बनाया जा सके। इस दौरान शोपियान से फयाज वानी ने खबर दी कि पीर की गली और इसके आसपास के पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी हुई और इसकी वजह से एहतियाती तौर आज मुगल रोड बंद रखी गई। वजरे के जिले के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में आज बाद दोपहर मूसलाधार बारिशें हुई और दर्ज हरारत में इससे गिरावट आ गई। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि जिले में आज के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इतलात के मुताबिक सरूर के बला इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई जबकि नशीबी देहात में जालाबारी और बारिश की खबरें हैं। इस दौरान जम्मू से मौसल इतलात के मुताबिक आज वहां लोगों को गर्मी से कदरी राहत मिली। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर बराए श्रीनगर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक मौसम में यह बदलाव कल तक जारी रहने का इम्कान है जबकि कल सपेर से मतला फिर से खुलेगा और 9 मई तक मौसम काफी बेहतर रहेगा। अलबत्ता 9 और 10 को मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की नतीजे में आसमान पर बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है थोड़ा क्लाउडी बना है आज, खासकर फोर्थ से हल्की बारिशें चल रही है और कमिंग डेज में भी खासकर मौसम कल से ठीक रहने के इम्कान है। तो आज हल्की बारिशें हैं और उसके साथ साथ थंडर स्टॉर्म गस्टी विंड्स के भी चांसेस हैं। यह आज खासकर शाम तक रहेगा और उसके बाद जो है फिर मौसम खुलने के चांसेस हैं। कल भी दिन में मौसम ठीक है अमूमन और टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून और उसमें थोड़ी सी हल्की बारिशें हो सकती हैं कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बाकी दिन में मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। हम 6 ऑनवर्ड मौसम जो है ठीक है लगभग 10 दोपहर तक, सिर्फ 10-11 के आसपास भी थोड़ा सा एक माइनर लाइट रेन के चांसेस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग आवर्स में। बाकी ओवरऑल 15th ऑफ मई तक फिलहाल कोई मेजर रेनफॉल का चांस नहीं है तो मौसम एक हिसाब से ठीक ही रहने के इम्कान।
2: जम्मू खिते में मौसम किस तरह का?
1: जम्मू डिवीजन में भी अब गर्मी जो है बढ़ेगा कल से तो ग्रेजुअल राइज होगा टेम्परेचर और फिलहाल कोई बारिश की पेशगोई नहीं है तो मौसम अमूमन ड्राई रह सकता है जम्मू डिवीजन के अंदर टिल 10th ऑफ मई। اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا کلاؤڈی ویدر ایکسپیکٹ ہے، لیکن اوور آل جموں ریجن میں بھی موسم عموماً ٹھیک رہنے کے امکانات.
2: لداخ کے بارے میں آپ کی کیا پیش گوئی ہے؟
1: لداخ کے اندر بھی آج ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے، پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری، لیکن اوور آل خطے لداخ کے اندر بھی فی الحال کوئی میجر ایسے رین سنو کے چانسز نہیں ہے، تو موسم تھوڑا سا ابر آلود رہ سکتا ہے کل دوپہر کے بعد بھی. اوور آل خطے لداخ کے اندر بھی جو ہے موسم لگ بھگ ٹھیک رہنے کے چانسز ہیں.

0: आएगा। क्यों? सुन के डर लगा ना, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना नाता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाय टू गुड लाइफ।
1: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण लें और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, डोडा कठवा पार्लियामानी निशस्त के लिए मरकज की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 3,566 करोड़ रूपये मुख्तस रखे गए हैं, जिनमें अभी तक 1,524 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। ये रुकूमात बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और दूर दराज इलाकों को पुख्ता सड़कों के जरिए जोड़ने के मकसद से खर्च की जा रही हैं और ये तमाम काम मरकजी वजीर मुमलिकत डॉ जितेंद्र सिंह की जाती काविशों से मंजूर कराए गए हैं। एक रिपोर्ट के साथ रमेश मरहटा।
3: 3,566 करोड़ रुपए में से 1,524 करोड़ रुपए कठुआ, उधमपुर, डोडा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के लिए तरक्याती कामों में खर्च किए जाएंगे। ये कहना था कठुआ, उधमपुर, डोडा कंस्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। 1,524 करोड़ रुपए PMGSY स्कीम के तहत खर्च किए जा रहे हैं। जिला कठुआ के लिए ये एक जबरदस्त इनकलाब होगा पहाड़ी इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम तक पहुंचाने में। PMGSY स्कीम के तहत सड़कों की तामीर का काम पहली प्रायोरिटी पे रखा गया है, जिससे बराए रास्त फायदा होगा इन ब्लॉक्स के लिए। जिला कठुआ के बनी बरनोटी, बिलावर, धार, महानपुर, दुगन, हीरानगर, लोहाई मल्हार, नगरूटा, गुजरू, महानपुर, डिंगाम सड़कों के जरिए एक इलाके को दूसरे इलाके के साथ जोड़ना तरक्याती कामों में जान फूंकने का काम करेगा। इससे आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इस वक्त कठुआ जिला में बेशतर तरक्याती काम चल रहे हैं, जिनमें ज्यादातर सड़कों की तामीर, फ्लाईओवर और पुलों का काम तेजी से चल रहा है। बनी बिलावर और बसूली के इलाकवा कठुआ के कंडी इलाकों में छोटी छोटी सड़कें भी शामिल हैं। वहीं पर बनी तहसील में MLA डॉक्टर रमेश्वर सिंह की जेर निगरानी में कुछ एक सड़कों की मरम्मत और तामीर का काम भी चल रहा है। बनी और बिलावर में सियाती मकामात को सड़कों के जरिए जोड़ा जा रहा है। एक प्रोजेक्ट के तहत चित्रगला और भद्रवा टनल पर काम अनकरीब शुरू होने की तवक्को है। इस टनल के प्रोजेक्ट को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है। सिर्फ बनी हल्के के लिए सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6,934.30 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। बनी ब्लॉक में बरमोता से किल्लोर सड़क राबिता के लिए 3,764.78 लाख रुपए, डुगन ब्लॉक में चलोग धर्मन से खजियार राबिता सड़क के लिए 1,281.58 लाख रुपए, लोहाई मल्हार ब्लॉक में मछेड़ी दरबड़ से धार रोड तक सड़क 1,020.77 लाख रुपए, डुगेन ब्लॉक में कोहग सड़क राबिता तुम्बू तक 8,607.17 लाख रुपए, इस पर तामीर का काम चल रहा है। ये भी अपनी जगह सही है, जहां जहां सड़कों की तामीर का काम या मरम्मत का काम चल रहा है वहां क्वालिटी या मैयार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जबकि इस तरह की शिकायत भी मिल रही है, बैड क्वालिटी की वजह से मुकामी बाशिंदों में रोष भी देखने को मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बिलावर मछेड़ी सड़क राबिता है। राबिता सड़कों की बदहाली से शिकार हो चुका है लगभग पूरा जिला कठुआ। पहाड़ी इलाकों में बनी बिलावर बसोली के ऐसे भी दूरदराज इलाके हैं जहां तक पहुंचने के लिए पैदल सफर तय करना पड़ता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होने की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
2: ये थे कठवा से रमेश मरहटा। शबीर भट्ट ने पांपोर से खबर दी है कि शारशाली ख्रू में आज एक दिल खराश हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। बताया जाता है कि यूनुस अहमद भट्ट नामी शख्स एक पुराने घर को मुनदिम करने के दौरान छत से गिरकर शरीर तो जख्मी हुआ। मजरूफ शख्स को सब जिला अस्पताल पांपोर मुंतकल कराया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।

0: दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
2: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
3: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: एक ही मोहल्ले के दो दोस्त जो साथ पले, एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़े, पर दोनों दोस्तों का अंतर पता है क्या है? एक ने अच्छा उज्जवल जीवन चुना, अच्छी पढ़ाई, अच्छी संगत, खेलकूद और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया,
7: जबकि वहीं दूसरा दोस्त गलत संगत में पढ़कर नशे की लत लगा बैठा। फर्क सिर्फ इतना रहा कि वो गलत संगत में फंसते चला गया, पर उसे बाहर निकालने वाला कोई दोस्त ना मिला।
6: ये दोस्त आप बन सकते हो। अगर अपने आसपास आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो नशे की तरफ जा रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो, उसे डी एडिक्शन रिहैबिलिटेशन एंड काउंसलिंग सेंटर तक ले जाके और उसके जीवन में नई रोशनी, नई आशा की किरण बन सकते हो।
7: आओ हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम अपने आसपास अपनी कम्युनिटी को ड्रग फ्री बनाएं और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
5: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
8: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। अब हमारे यहाँ से खबरें नशर होंगी, पहले कश्मीरी और उसके फौरन बाद उर्दू में।
9: آداب، یہ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 خبر نامہ ہس بہ روف احمد گوڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وطلو ترقیتی ضرورت تو ماحولیتی پوشن پایس درمیان توازن پید کرنچ ضرورت۔ جموں کشمیر نرل حیاتیتی رنگا رنگی رش کرنس پہ دتک زور۔ سول سیکرٹریٹ سرینگر سپد شی ریت پتہ دربار مو دفتر دوبارہ یل۔ وزیر اعلیٰ صاحب روایتی گارڈ آف آنر پیش کرنا۔ بھارتی حج کمیٹی ہند ذریعہ سفر محمود اس پٹ گسن والن عزمن باپت $100 تو پرائیویٹ عزمن ہند باپت $150 ہند ہرر۔ تو بی جے پی مغربی بنگالس مز سرکار بناونس واریہ نزدیک، آسامس مز تہ دتک نہ اقتدار اتھ گسنہ۔

0: तीन मेडिकल शॉपों को सरबेमहर कर दिया है। इसी तरह की कार्रवाई पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर में भी अमल में लाई गई है, जहां लाइसेंस के बगैर चलाई जाने वाली एक दवा दुकान सील कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर और बारामूला में अलग अलग कार्रवाईयों के दौरान चार स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुनशियात की कुछ मकदार बरामद की है। शुपया और कुलगाम पुलिस की जानिब से इन अजला के मुख्तलिफ इलाकों में काश्त की गई खशखाश की फसल को तबाह किया गया। यह कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सिलसिले में जारी इकदाम के तहत अमल में लाई गई। इस दौरान अवंतीपोरा और शुपया पुलिस की जानिब से बाजदही इलाकों में मुनशियात के मुजिर असरात के बारे में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। उधर श्रीनगर पुलिस ने पंपोच कॉलोनी पालपोरा नूर बाग में मोहम्मद इरफान शेख नामी एक स्मगलर के तामीरी ढांचे को मुनहदम किया है। इसी दौरान शुमाली कश्मीर रेंज के DIG डॉक्टर विनोद कुमार ने आज पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर का दौरा करके वहां सलामती मंजरनामे का तफसीली जायजा लिया। दरियासा हंदवाड़ा पुलिस ने राजपुरा जचलडारा के रहने वाले अली मोहम्मद मीर नामी स्मगलर के दो मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया है। पुलिस ने कहा कि इस असासी की कीमत 30 लाख रुपए है। PDP के सीनियर लीडर और साबिक MLA बटर मालू नूर मोहम्मद शेख ने आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत शेख हमजा सेकेंडरी स्कूल मुजगुंड की तरफ से निकाली गई एक रैली में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PDP जम्मू कश्मीर में मनुष्यात के खिलाफ कमर बस्ता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। अकलीती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि उनकी वजारत हर भारतीय मुसलमान के लिए हज के सफर को काबिल रसाई और किफायती बनाने के लिए पुरअज्म है। उन्होंने कहा कि वस्ती एशिया बहरान के दरमियान ईंधन की कीमतों में इजाफे के सबब एयरलाइंस ने $400 का मुतालबा किया। अलबत्ता वजारत की काविशों की बदौलत अब हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाने वालों को $100 जबकि प्राइवेट आजमीन के लिए $150 का इजाफा मुकर्रर किया गया।
1: ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध के बाद इतना दाम बढ़ गया है फ्यूल का, एयरलाइंस वालों ने हमको रिक्वेस्ट किया पुराने रेट में जाना मुश्किल है, $400 का इजाफा होना चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि हज यात्रा का फ्लाइट कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने नेगोशिएट किया है। इसलिए हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, सीनियर ऑफिशियल ने बैठ करके एयरलाइंस से पूरा नेगोशिएट करके $400 से $100 तक लेके आया है। तो हज कमिटी ऑफ इंडिया के थ्रू से जो भी हज यात्रा जा रहा है उसके लिए सिर्फ $100 का इजाफा हुआ है और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उनके लिए $150 का इजाफा हुआ है।
0: BJP ने आसाम में चुनाव जीत लिया है। वो वहां तीसरी मरतबा इकतदार को बरकरार रखने में कामयाब रही। BJP के साथ ही मगरबी बंगाल में भी जीत के करीब है। वाजरे की आज इन दो रियासतों के अलावा केरलम तमिलनाडु और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में भी वोट शुमारी का अमल जारी है। केरलम में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तमिलनाडु में तमिलागा वेत्री कजगम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में AINRC को सबकत मिल रही है। इधर BJP के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने आसाम में पार्टी के लगातार तीसरी मरतबा जीत और मगरबी बंगाल में जीत के करीब पहुंचने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी जमात ने अवामी बहबूद यकीनी बनाने के लिए हर मोड़ पर जबरदस्त मेहनत की है। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पटू ने खबर दी है कि डॉक्टर अंद्राबी ने वहां पार्टी वर्करों के एक जलसे से खिताब किया। इस मौके पर आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए मौसूफा ने कहा,
2: लोग आजकल बहुत जागरूक हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस विकसित भारत को हर कोने में पहुंचाया और आज जो लोटस खिल रहा है इस युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कड़ियां हर एक ने देखी और आज जो आप कामयाबी देख रहे हैं आज के रिजल्ट की, ये उनकी मेहनत को सलाम है, उन लोगों को सलाम है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात समझी और आज भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है हर जगह खिल रहा है।
0: खेलकूद और उमरी नौजवान के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि हुकूमतवादी खेलों की झीलों में आबी खेलों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के साथ साथ दीगर खेलों को भी फरोग देने के लिए इकदाम कर रही है। श्रीनगर में आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: डल में नगीन में झेलम 62 किलोमीटर में हम स्टीमर और क्रूज सर्विस शुरू कर रहे हैं। एक तो उससे कंजेशन खत्म होगी डल के किनारे और बाकी जगह और रोजगार के साधन होंगे। यहाँ कल को यूनिट लगेगा स्टीमर बनाने वाला, तो हम एक नए प्याम पर एक नए लेवल पर जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स को लेकर जाएंगे। रांची पहली बार आए, वाटर स्पोर्ट्स पहली बार हुए, डाउन हिल माउंटेन बाइकिंग पहली बार हुई, अब हम खो खो का कॉमनवेल्थ ला रहे हैं। थोड़े दिनों चार दिन का हमारा विंटर स्पोर्ट्स रहता है, उसे हम 15 दिन करने जा रहे हैं ताकि
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج جموں کشمیر ایم ایس ایم ای ہیلتھ کلینک کی کارگزاری کا ایک میٹنگ میں تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ کلینک بیماریوں کا تشخیص

0: करने की एक डिजिटल पहल है जिसके तहत यूटी भर में सेहत के सेक्टर में इंतहाई छोटी छोटी और मुतवस्सित दर्जे की इकाइयों को ताजा दम और मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि अभी तक जेकेएमएचसी ने जम्मू कश्मीर में 13,000 से जायद एमएसएमईज का जायजा लिया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने इस शोबे में तबादले ख्याल और एआई की बुनियाद वाली मुदाखलत बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। महकमे हायर एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर के तमाम कॉलेजों में तालीमी साल 2026-27 के लिए 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी प्रोग्रामों के दाखिले का ऐलान किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: इस साल हम सारे एडमिशन 10+2 मेरिट के बेस पे कर रहे हैं, तो ये सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है। 9 तारीख को ये हम लिंक लाइव कर रहे हैं, 27 तारीख तक ये खुली रहेगी, फिर 30 तारीख को हम पहला लिस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद हम 9 जून को दूसरा लिस्ट निकालेंगे, तो दूसरे लिस्ट के बाद फिर ये एक स्पॉट राउंड होगा लास्ट में, वो 18 जून से 25 जून तक चलेगा और 15 जून से कश्मीर डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई से जम्मू डिवीजन में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन एडमिशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा विंटर जोन कॉलेज के लिए भी और समर जोन कॉलेज के लिए भी।
0: सीनियर बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने महेंद्र पूंछ के दो रोजा दौरे के दौरान लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरा भी थे। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर की गई तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। रीजनल पासपोर्ट दफ्तर श्रीनगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासपोर्ट हासिल करने वालों को हर तरह की सहूलियात बहम रखता है ताकि उन्हें पासपोर्ट हासिल करने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पिछले बरस के दौरान इस दफ्तर को करीब 1 लाख दरखास्तें मौसूल हुई और इस दौरान 95,000 पासपोर्ट जारी भी किए गए। इस हवाले से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर बीएस रावत ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: पिछले एक साल में हमने कोशिश की कि पासपोर्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली स्मूथली चले, जिसमें हम काफी स्तर तक सफल हुए हैं और लास्ट ईयर करीब हमने 1 लाख एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए हैं, उसी रेशियो में पासपोर्ट भी जारी किए, मोर देन 95% हम लोगों ने इश्यू किया पासपोर्ट। जहां तक एप्लीकेंट को फैसिलिटेट की बात है, हमने मोबाइल वैन की सर्विसेज दी है। कारगिल जैसे दूर रिमोट एरियाज में मोबाइल वैन पिछले साल लगातार जून से और अक्टूबर नवंबर तक हमने कंटिन्यू लगाया है। इसी सर्विसेज को हम डिफरेंट जिलों में भी देते हैं।
0: अब रेल सर्विस से मुतालिक ये खबर, श्रीनगर और जम्मू के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सर्विस कामयाबी के साथ जारी है। ये बात काबिल जिक्र है कि सर्विस के जरिए श्रीनगर और जम्मू के दरमियान सफर महज 4 घंटे 45 मिनट में बगैर तो आम के 730 रुपए के यकतरफा किराए पर तय होता है। आम लोग इस सर्विस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। पेश रेल खिदमात से मुतालिक रेलवेज का पैगाम,
3: अब सफर होगा और भी इजी और स्मार्ट। इंडियन रेलवेज लेकर आया है रेल वन ऐप, आपकी हर ट्रेन जर्नी के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे रिजर्व या अनरिजर्व टिकट्स बुक करने हो या प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, सब कुछ एक ऐप से पॉसिबल है। रेल वन ऐप इंस्टॉल करो और अपना ट्रेवल एक्सपीरियंस अपग्रेड करो।
0: मौसम, महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:38 पर और गुरूब आफ्ताब अब शाम 7:18 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नष्ट होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
4: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। जम्मू कश्मीर की इंतजामी रिवायत दरबार मू आज एक बार फिर अपनी मुकम्मल शक्ल में सामने आ गई, जब श्रीनगर में सिविल सेक्रेटेरिएट और इससे वाबस्ता तमाम सरकारी दफातर 6 माह के वक्फे के बाद दोबारा खुल गए। सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में क्याम के बाद गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में काम का आगाज एक बाजाबता और रिवायती अंदाज में किया गया, जहाँ वजीर आला उमर अब्दुल्ला को सेक्रेटेरिएट इहाते में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये منظر ہر سال نہ صرف ایک سرکاری رسم کی ادائیگی بلکہ ایک تاریخی تسلسل کی علامت بھی ہوتا ہے۔ دربار منہ کی روایت طویل عرصے پر محیط ہے اور اس کی بنیاد اس دور میں رکھی گئی تھی جب خطے کے مختلف موسمی حالات کے پیش نظر حکمرانوں نے انتظامی ڈھانچے کو موسمی بنیادوں پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شدید سردیوں میں سری نگر میں حکومتی سرگرمیاں جاری رکھنا ممکن نہ ہونے کے باعث دفاتر کو

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़ आकाशवाणी श्रीनगर से। समीन बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साबिक वजीर अजहर इमरान खान को अब ऐसे केसेस का सामना है जो बकौल हुकूमत उसने जेल में रहते हुए गुनाह किए हैं। दरअसल मामला ये है कि बैरून मुल्क नौकरी कर रहे पाकिस्तानी शहरी अब इमरान खान की रिहाई के लिए एक एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। इस एहतजाज को तरतीब वाले सरकर्दा लोगों की मांग है कि इमरान खान को जायज अदालती सहूलियात मयसर रखी जाएं और ये कि उसे अदालत का सामना करने के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। इमरान खान पर 184 केस किए गए हैं, जिनमें से उसे कई केसेस में उसे जमानत भी मिल चुकी है, मगर एस्टैब्लिशमेंट की कारस्तानी देखिए कि यूं ही इमरान खान को किसी केस में जमानत मिल जाती है, उसे दूसरे केस में जमानत को जरूरी करार दिया जाता है। यूं उनकी कैदोबंद एक ला इम्तनाही सिलसिला बना दिया गया है। इतलात हैं कि हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को जेल में इमरान से मिलने के लिए भेज दिया गया ताकि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान गुफ्तगुशनीद हो। कहा जाता है गुफ्तगुशनीद का असल मकसद ये है कि इमरान खान बैरून मुल्क मुजवजा एहतजाज को रोका जाए या कम से कम मुअक्खर किया जाए। इमरान खान से जेल से अपने पार्टी साथियों के नाम ये पैगाम भेजा है कि उसे ये महसूस हो रहा है कि हुकूमत महज उसे गुमराह करने के लिए मुजाकरात का डोंग रचा रही है, जबकि दौरान गुफ्तगु मुजाकरात नाम की कोई शय नजर नहीं आई है। जब इमरान खान से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने मुजाकरात करने वाले लोगों के नाम पूछे तो उन्होंने फिलहाल नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो कोई काबिलियत के लोग हैं ही नहीं, बल्कि वक्त गुजारी करने वाले ऐसे शातिर अफराद हैं जो रास्ता मुजाकरात के बजाय गपशप में कुछ वक्त गुजार कर रुखसत होते हैं। इमरान खान के साथ मुजाकरात का जिक्र जेल से बाहर किया गया कि मीडिया से चंद अफराद ने मुल्क के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से तस्दीक चाही। मोहसिन नकवी ने दो टूक अल्फाज में इमरान खान के साथ किसी तरह के मुजाकरात को गलत, बेबुनियाद और महज अफवाह करार देकर दामन झटक दिया। सहाफत के साथ वाबिस्ता उन्हीं अफराद ने जब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने इस बारे में बात पूछी तो इन दोनों ने हुकूमत की इस दोगली पॉलिसी पर हैरत का इजहार करके हुकूमत बल्कि बतौर खास मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी मुजाकराती अमल की तस्दीक करके हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो ऐसा करते हुए महज वक्त जाया कर रही है। ऐसे में एक और बात जिसे हर लिहाज से मुज़क़्क़ा ख़ैज़ करार दिया जा सकता है का जिक्र करना जरूरी बनता है, और वो ये कि इमरान खान पर पिछले 184 केसेस के अलावा मजीद 60 मुकदमे दायर कर दिए गए हैं। और देखने वाली बात यह है कि मौजूदा 60 मुकदमों का ताल्लुक उस दौर से बताया जाता है जब इमरान खान सियासत से कोसों दूर शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल की तामीर में लगे हुए थे। जब ये बात बैरून मुल्क मीडिया को पता चली तो उसे खूब उछाला गया, जिस पर पाकिस्तान ने सरकारी तौर एहतजाज किया कि गैर मुल्की मीडिया पाकिस्तान के दाखिली मामलात को गलत रंग में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। मुजाकरात को गलत रंग में दुनिया के सामने पेश कर रहा है। मुजाकरात के बारे में इमरान खान ने अपने सलाहकारों की वसादत से अखबारों तक अपना ये मौकफ पहुंचाया है कि वो किसी भी मुजाकराती महफिल से पहले पीटीआई से वाबस्ता तमाम बेगुनाह अफराद की रिहाई को अवलीन शर्त करार देते हैं। इमरान खान का मजीद कहना है हुकूमत मुजाकरात के लिए दिल से तैयार नहीं और वो सिर्फ हमारे मुजवजा एहतजाज को मुअक्खर कराना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के दौरे पर आने वाले बेलारूस के सदर के पाकिस्तान में कयाम के दौरान हालात पुरामन रहें। इमरान खान का कहना है कि वो किसी भी बैरून मुल्क के सरबराह के दौरे पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं, मगर वो चाहते हैं कि खारजी मामलात से पहले दाखिली मामलात सुधार लिए जाएं। समीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप और हम समाप्त करते हैं ये प्यारी सी ग़ज़ल।

आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से। समीन, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच फिर से सरहदी जंग छिड़ गई है। अब की बार तालिबान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौजों ने कंधार सरहद पर बिला जवाज फायरिंग करके एक कमसिन बच्ची को हल्ला किया। जवाबी कार्रवाई में तालिबान फौजों ने 7 पाकिस्तानी फौजी अहलकारों को हल्ला करके एक फौजी को उठाकर अपने कब्जे में लिया। तालिबान फौजियों ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 27 पाकिस्तानी फौजियों के हथियार छीन लिए।

जिस वजह से बहुत से पाकिस्तानी फौजी भाग खड़े हुए। इस झड़प के बाद पाकिस्तानी फौजियों ने ताजा दम हमला करके एक घमासान कारण जारी किया, जिसमें इतला के मुताबिक फरकीन को काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा। तालिबान सरकार के तर्जुमान हमीद असद फितरत ने बताया कि पाकिस्तान ने कुनार में सैयद जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी पर बेशुमार रॉकेट दागे, जिसकी वजह से 7 तालिबे इल्म हलाक होने के साथ साथ 75 तालिबे इल्म और उस्ताद जख्मी हुए। हमीद असद फितरत के इल्जाम के जवाब में पाकिस्तानी फौजी तर्जुमान ने यूनिवर्सिटी पर हमले को गलत बताया, जबकि तालिबान तर्जुमान ने इस तरदीद को मुजहिका खैज करार देकर मीडिया के सामने कई नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत पेश किए। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि मार्च के महीने में पाकिस्तान ने काबुल के एक नशा मुक्त मरकज पर एक जोरदार हमला किया था, जिसमें तालिबान दावों के मुताबिक 400 के लगभग लोग हलाक हो गए थे। यहीं से दोनों मुल्कों के बीच एक जंग छिड़ गई थी, जिसमें फरकीन को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस वाकये के बाद पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत के मुताबिक कई रिहायशी इलाकों पर रॉकेटों की बारिश की, जिससे अफगानिस्तान को काफी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। जब दोनों मुल्कों के दरमियान जबरदस्त कशीदगी बढ़ गई है तो कई खलीजी ममालिक जिनमें सऊदी अरब, कतर, यूएई और तुर्की ने कशीदगी खत्म करने के लिए साजिश की। खत्ते में अमन कायम करने के लिए चीन भी आगे आया। नतीजे के तौर पर दोनों मुल्कों के बीच जंग बंदी अमल में आई। इसी बीच कंधार की सरहद पर पाकिस्तानी फौजों ने बिला इश्तियाल और बिला जवाज फायरिंग की, जिसने एक कम सिन बच्चे की जान ली और लड़ाई फिर से छिड़ गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सरहदी जंग कोई नई बात नहीं, क्योंकि 1947 में जब अंग्रेज बरसगीर छोड़कर चले गए तो उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सरहद कायम की, जिसे ड्यूरेंट लाइन के नाम से जाना जाता है। अफगान लीडरों ने इस सरहद को कभी भी तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वो सरहद के इस पार बहुत से इलाके को अफगानिस्तान का हिस्सा करार देते रहे हैं, जिस दावे को लेकर दोनों मुल्कों के बीच कभी मफाहमत न हो सकी। हालांकि 60 और 70 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान, जिसे बाद में खुद को सदर पाकिस्तान भी बनाया और अफगानिस्तान के उस वक्त के बादशाह जहीर शाह के दरमियान एक खुफिया मुहिदा तय हुआ था कि दोनों मुल्क आपस में एक फेडरेशन कायम करेंगे, लेकिन ड्यूरेंट लाइन को खत्म करना होगा। पाकिस्तान के बाज ताकतवर लीडरों ने इसकी मुखालफत की। फिर 1977 में रूस ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की। इस कम्युनिस्ट हुकूमत को खत्म करने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने हाथ मिलाया। अमेरिकी इमदाद ने पाकिस्तान के हाथों तालिबान को जन्म दिया। गोया अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की परवरदा है। अब जबकि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपनी गिरफ्त मजबूत की है, तो पाकिस्तान में भी मजहब परस्त तहरीक के तालिबान ने जन्म लिया। पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सेक्युलर हुकूमत को ला मजहब हुकूमत करार देती है और उसे बरतरफ करके अपनी हुकूमत का कयाम चाहती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को पाकिस्तान तहरीक तालिबान का पुश्त पना करार देता है। यही से फसाद शुरू माना जा सकता है। दूसरी तरफ तकरीबन 30 लाख अफगान मुहाजिर 35 साल बाद वापस अपने मुल्क भेज दिए गए हैं। इन्हीं दो वजूहात की बिना पर दोनों मुल्कों में ठन गई है। इससे बढ़कर ये मसला है कि अफगानिस्तान भारत के बहुत करीब है, जो पाकिस्तान को एक आंख नहीं पाता है। सभी दी तो थी बात पाकिस्तान की। आइए प्रोग्राम के आखिर पर आप और हम सवाल करते हैं ये फिल्मी नगमा।

0: आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे वादी की आवाज, यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार

0: को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। रात 9:30 पर डॉक्टर सोनलाल कौल का तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा नशर होगा नाद। शब 10 बजे प्रोग्राम पेश होगा गीतों भरी कहानी। आज आप मकबूल साहिल की लिखी कहानी सुनेंगे शायर की मोहब्बत। प्रोग्राम पेश करेंगे रशीद निजामी। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.8 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8:30 हो रहे हैं। समाप्त करें खेलों से मुतालिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
2: स्पोर्ट्स टाइम लेकर हम हाजिर। आगाज में अहम खेल खबरों पर एक नजर। IPL इब्तदाई 7 मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहने के बाद बिलाखिर पंजाब किंग्स को IPL 2026 में अपनी पहली हार का मजा चखना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि अगले 2 मुकाबलों में इसे मुसलसल हार हुई। 7 मुकाबलों में मुसलसल जीत हासिल करने के बाद अपने 8वें मुकाबले में इससे राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने एक मरतबा फिर उम्दा बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने 223 रनों का एक बड़ा टारगेट रखा था। तहम पंजाब किंग्स के खिलाफ इतने बड़े टारगेट को अगर कोई टीम बआसानी अबूर कर सकती थी तो वो राजस्थान रॉयल्स ही हो सकती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास ही चंद एक ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो लम्हों में किसी भी गेंदबाजी के खिलाफ सूरत हाल बदलने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इन बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल, वायबू सूर्यवंशी, ध्रुव जोरेल और रयान पराग काबिल जिक्र हैं। मौजूदा सीजन के दौरान कई एक बार नाकाबिल यकीन इनिंग्स खेल चुके ये बल्लेबाज, इस मुकाबले में भी इन्होंने टीम को आनन फान एक ऐसी शुरुआत फराहम की जिसके बाद 223 रनों का टारगेट ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा था। इब्तदाई शराकत में ही यशस्वी जायसवाल और वायबू सूर्यवंशी ने महज 20 गेंदों पर 50 रन स्कोर करके बकिया बल्लेबाजों के लिए काम आसान करके रख दिया, जबकि बकिया बल्लेबाजों में रयान पराग, डैनवन फरेरा और शिवम दुबे ने सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए बिलाखिर पंजाब किंग्स को पहली शिकस्त देने में कलीदी रोल अदा किया। पंजाब किंग्स के हारने का सिलसिला जारी रहा जब इससे कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के हाथों 4 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। 9 मुकाबले खेलने के बाद ये पहला मौका था जब पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी बहुत हद तक नाकाम दिखाई दी। इसके तमाम इनफॉर्म फ्रंटलाइन बल्लेबाज पूरी तरह से नाकाम हो गए, जिसकी वजह से इससे शुरुआत में ही एक बड़े कोलैप्स से दो चार होना पड़ा। इसने अपने इब्तदाई 5 बल्लेबाज महज 47 रन के मजमू स्कोर पर खो दिए। तहम लेट मिडल ऑर्डर में बनाई गई दो अहम पार्टनरशिप्स की बदौलत ही पंजाब किंग्स कोलैप्स से बाहर निकलने में किसी हद तक कामयाब हुई और इसके बल्लेबाज बमुश्किल 163 रनों का कद्र डिफेंडेबल स्कोर कायम कर पाए। कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और जैसन होल्डर की शानदार गेंदबाजी के बायस पंजाब किंग्स को इस सूरत हाल से 2-4 होना पड़ा। इब्तदाई 7 मुकाबले जीतने के बाद इससे मुसलसल पिछले 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ताहम इसके बावजूद पंजाब किंग्स अब भी 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरफहरिस्त है। गुजरात टाइटंस के लिए ये मुसलसल 3री जीत थी जिसके बाद अब वो प्लेऑफ्स में जगह हासिल करने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। प्लेऑफ्स में जगह हासिल करने के लिए कई एक टीमों के माबैन रस्साकशी जारी है और कई एक के लिए इस दौड़ में शामिल होने के लिए अब भी मौके मौजूद हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त 4 टीमें 12 पॉइंट्स के साथ विराजमान हैं। इन टीमों के माबैन हल्के रन रेट का फ़र्क ही नज़र आ रहा है। IPL 2026 में बेशतर मरतबा टीमें 200 से ज़ायद रन स्कोर कर रही हैं, जबकि कई एक बार बड़े स्कोर को चेज भी किया जा चुका है। अहम बात यह है कि मौजूदा सीजन के दौरान किसी भी टीम को पूरी तरह से डोमिनेट करने का मौका फराहम नहीं किया गया है। कई एक बार IPL का खिताब हासिल कर चुकी या यूं कहिए कि बड़ी टीमों को मुसलसल टक्कर दी जा रही है। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स जैसी टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया।

है और ये प्लेऑफ्स में जगह हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं। कई एक सीजन के बाद राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल अभी तक बेहतर साबित हुआ है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी फ्रेंचाइज के लिए ये सीजन बेहतर साबित नहीं हुआ है। 5 बार आईपीएल का खिताब हासिल कर चुकी मुंबई इंडियंस को मौजूदा सीजन के दौरान अभी तक 9 में से 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है। इससे 9 में से महज 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। दीगर खेल सरगर्मियों पर नजर डालने से पहले रुख करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का, जहां आज यानी

0: सात मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है। इससे नौ में से महज तीन मुकाबलों में जीत हासिल हुई है। दीगर खेल सरगर्मियों पर नजर डालने से पहले रुख करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी का, जहां आज यानी 4 मई से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहने वाले इस मेगा इवेंट में करीबन 1100 खिलाड़ियों के साथ साथ 400 ऑफिशियल्स भी शिरकत कर रहे हैं, जबकि कई एक इंटरनेशनल और साबिक खिलाड़ी इस दौरान एथलीट्स की हौसला अफजाई करने के लिए यहां मौजूद रहेंगे। इस चैंपियनशिप पर एक रिपोर्ट के साथ हमारे साथी शेख मुदस्सर।
1: सामिन, वुशु वो रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट है जिसमें जम्मू कश्मीर के कई खिलाड़ी सुर्खियों में रहे हैं। मैन के साथ साथ वुमेन प्लेयर्स ने न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स हासिल किए हैं। आज से श्रीनगर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप मुनक्कद हो रही है और इसमें मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज की गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के खिलाड़ी मुकाबला करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इश्तराक से ये चैंपियनशिप मुनक्कद करा रही है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के डॉक्टर सुरजीत सिंह बली इस चैंपियनशिप के कोऑर्डिनेटर हैं और स्पोर्ट्स टाइम को बली जी ने इंटर यूनिवर्सिटी के इस 6 रोजा बड़े इवेंट की तफसील दी।
2: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये शुरू हो गई है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप। इसकी तैयारी हमें लगभग 3-4 मंथ हो गए करते हुए, तो इसमें हमारे पास अभी तक 195 यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हो गई है, तो उसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। जो बॉयज का है वो लगभग हमारे पास 800 के करीब और लड़कियां जो है वो 350 के करीब है। इसके अलावा इनके साथ जो इनके कोच मैनेजर भी रहते हैं, पार्टिसिपेशन है जो इसका इनॉग्रेशन फंक्शन है वो हमारे LG साहब करेंगे, हमारी वाइस चांसलर मैम और अदर डिग्निटीज होंगे। हमारा मकसद यही है इस चैंपियनशिप कराने का कि जो हमारे अपने लोकल प्लेयर हैं वुशु के, उनको एक एक्सपोजर मिल जाए, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले वो भी अपने ही घर में, ताकि वो किसी भी अच्छे प्लेयरों के साथ कम्पीट करें और उनको आगे जाके इंटरनेशनल जो भी हायर लेवल के कॉम्पिटिशन है उनका मौका मिले खेलने का। ये जो टूर्नामेंट है अगर बात करें तो ये एक इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का है, और इसके बाद अगर बच्चे जो यहाँ से मेडल निकालेंगे वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, देन कंबाइंड यूनिवर्सिटीज एंड देन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट को करने के लिए हमारे पास पूरा जो कॉपरेशन थी वो वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया की है, AIU TV है, और अगर ऑफिशियल की बात करें हमने अच्छे अच्छे जो भी इंडिया के टॉप ऑफिशियल हैं उनको इन्वाइट किया है ताकि वो जो ये टूर्नामेंट है बड़ी ही ईमानदारी के साथ कनेक्ट करेंगे। यही हमारा अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपने प्लेयर्स को भी और बाकी प्लेयर्स को भी। हमारी तरफ से एक लॉन्चिंग पैड है अपने प्लेयरों के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पावर लिफ्टिंग किया था तो तकरीबन 1100-1200 प्लेयर थे, तो उस बार भी हमारा अच्छा एक मैसेज गया AIU में या हमारे जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड में है, जो चीज इम्पॉसिबल थी करना वो हम आराम से कर रहे हैं। पहले ये जो टूर्नामेंट है वो किनी चुनी यूनिवर्सिटी करती थी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, GNDU या जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बट अब ये है कि वी आर आल्सो कैपेबल फॉर होस्टिंग, फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इवन हैविंग ए गुड परफॉर्मेंस इन दीज टूर्नामेंट। मुझे तो अच्छा फ्यूचर लग रहा है कश्मीर यूनिवर्सिटी का कि जिस स्पेस में, जिस प्रोस्पेक्टिव में ये स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा है, स्पेशली कश्मीर यूनिवर्सिटी और थ्रू द वैली, फ्यूचर में हमारा एक अच्छा मुकाम रहेगा।
1: द्रोणाचार्य अवार्डी वुशु कोच जिनको इंटरनेशनल रेपुटेशन हासिल है, जम्मू कश्मीर के कुलदीप हंडू ने स्पोर्ट्स टाइम को वुशु और इस चैंपियनशिप पर बताया।
3: मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस बार वो 4 से लेकर 9 मई तक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं, जिसमें 1600 से ज्यादा खिलाड़ी 200 यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट है, चैलेंजिंग टास्क है, बट आई एम अश्योर्ड कि कश्मीर यूनिवर्सिटी इसको ग्रैंड वे में ऑर्गेनाइज करेगी। यूनिवर्सिटीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के जमाने में। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि जो लास्ट एडिशन ओलंपिक का हुआ था फ्रांस में, उसमें USA नंबर 1 रही मेडल टैली में। यूनिवर्सिटी के जो मेडल थे 65% जो मेडल थे वहाँ पर यूनिवर्सिटी से आए। तो अगर हमें इंडिया को, अगर हमें बेस्ट 10 कंट्रीज में देख जाते हैं आने वाले ओलंपिक्स में, तो हमें स्कूल्स और कॉलेज में ग्रास रूट बड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, उनको बेस्ट वे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग प्लस साइंटिफिक वे में उनको ट्रेनिंग करने हमें करानी है, तभी जाके हम एक्सेल कर पाए।

0: इशू इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स है कंट्री के लिए भी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में मेडल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है, सबसे ज्यादा मेडल वुशु दे रहा है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी जो हमारे बच्चे एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना नाम रोशन करेंगे। 2026 में जापान में हो रही है, उसमें हमारे अभी जो बेस्ट प्रोबल खिलाड़ी है 8 लड़के जम्मू कश्मीर में एशियन गेम्स के कोचिंग कैंप में है और मुझे आशा है कि 2 खिलाड़ी इस बार एशियन गेम्स में जाएंगे और इंडिया के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए वहां पर पदक जीतेंगे। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में जो इस बार पार्टिसिपेट करे उनको मैं गुड लक करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की टीम होगी वो अपना बेस्ट दे और अपनी यूनिवर्सिटी और अपना स्टेट को नाम रोशन करे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि वो इस बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ब्राजील में हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बच्चे वहां पर जाएं और वहां पर पदक जीतें और जिससे हमारा देश और हमारी रियासत का नाम रोशन हो जाए।
1: इंटरनेशनल वुशु प्लेयर अंसा हसन चश्ती हाल ही में मॉस्को में भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई है और पंजाब की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इस AIU वुशु चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगी। अंसा चश्ती ने स्पोर्ट्स टाइम को बताया।
2: मेरा नाम अंसा चश्ती है और अभी मैंने रिसेंटली मॉस्को वुशु स्टार 2026 में जो अभी जो हुआ उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरी फाइनल फाइट थी वो मैंने रशिया की प्लेयर के साथ खेला था 52 वेट कैटेगरी में और अभी हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होने जा रहा है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रही कि गोल्ड लेके आऊँ और मैं ये 56 वेट कैटेगरी में खेल रही हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं इसमें भी गोल्ड लेके आऊँ।
1: सादिया तारिक जो इंडिया के लिए कई कंट्रीज में वुशु फाइट्स लड़ चुकी हैं, वादी से बाहर पढ़ाई कर रही है और अपनी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को इस चैंपियनशिप में मेडल हासिल करने में जरूर इस्तेमाल करेंगी। सादिया तारिक,
3: मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से खेल रही हूँ और आई एम रियली थ्रिल्ड दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग इन AIU एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन सीनियर नेशनल्स। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए। हमारे सारे खिलाड़ी जो भी सीनियर प्लेयर्स है वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खास करके जो हमारे बड़े प्लेयर्स है जैसे नवीद बया है, हमारे आयरा अंसा है और हमारे कुलदीप हंडूसर भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस टूर्नामेंट के टाइम। तो आई एम रियली हैप्पी एंड ऑफ कोर्स एक स्पोर्ट्स प्लेयर का तो यही ड्रीम होता है कि हर एक नेशनल में हर एक इवेंट में अपना नाम रोशन करना। आई एम रियली एक्साइटेड और मैं चाहती हूँ मैं हर एक प्लेयर को हराऊं जो भी मेरे बाउट में हो। एंड ऑफकोर्स मैं इस दफा कश्मीर यूनिवर्सिटी से नहीं खेल रही हूँ, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग कश्मीर, आई एम रिप्रेजेंटिंग पंजाब, क्योंकि जो मेरे को ऑप्ट करना था डिग्री दैट वॉज नॉट अवेलेबल इन कश्मीर यूनिवर्सिटी, सो आई हैड टू माइग्रेट। सो आई एम रियली हैप्पी।
1: यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जिसमें 1500 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स श्रीनगर में इस हफ्ते मौजूद रहेंगे, सनीचर 9 मई को इख्तिताम पजीर होगी।
4: और अब एक नजर चंडीगढ़ खेल सरगर्मियों पर। एक रोजा सीरीज के बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के माबेन T20 सीरीज जारी है, जिसके दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को न्यूजीलैंड के हाथों 6 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। बारिश से मुतासरा इस मैच को 15 ओवरों पर मोहित रखा गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 103 रनों का मतलूबा टारगेट बआसानी 12 ओवर में ही अबूर करके सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाया। पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को बआसानी 6 विकेटों से हरा दिया था। न्यूजीलैंड के बेशतर तजुर्बेकार खिलाड़ी इन दिनों मुख्तलिफ लीग्स खेलने में मसरूफ हैं, यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड की टीम में कई नए चेहरे नजर आ रहे हैं। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान पैडलर मोहसिन अली कैनाई मैराथन वर्ल्ड कप में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ICF कैनाई वर्ल्ड कप इस महीने की 21 से 24 तारीख तक चीन के शहर बाजोंग में मुनक्किद हो रहा है। IKCA इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन ने इस चैंपियनशिप के लिए मोहसिन अली को भी स्क्वाड में शामिल किया है। मोहसिन अली पिछले चंद बरसों से कौमी सतह पर मुसलसल बेहतर कारकर्दगी दिखाते आ रहे हैं। इस दौरान इन्होंने कौमी सतह के इवेंट्स में कई एक मेडल भी हासिल किए हैं। मोहसिन अली की कोच बिल्किस मीर ने उनकी सिलेक्शन पर बेहद मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि खेलों के ताल्लुक से ये कश्मीर के लिए बेहद अहम मोमेंट है। इन्होंने कहा कि मोहसिन अली की जानिब से जील डल में मुरतब दिए गए ख्वाब अब तामील की राह पर गामजन हैं। आज की स्पोर्ट्स टाइम से हमें यहीं पे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। स्पोर्ट्स टाइम।
5: आप खेलों से मुतल्लिक प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे स्पोर्ट्स टाइम।

0: प्रोग्राम के मेज़बान थे एजाज नास्की, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 8:45 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली है। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से।

0: जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी के अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेन ज़ी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है, और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला, और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो उस चलन को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
0: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
0: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
3: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती।

0: सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
2: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन

0: पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। इसे आकाशवाणी श्रीनगर समय वाले के कौशल बोध बोझो दस्तलोक कला में निसार दिलदार सहित इबादत करन पेश किफायत फहीम।

0: मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शाम के 9:15 हो रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में जबरदस्त अक्सरियत के साथ तारीख रकम की। आसाम में भी मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल की। एनडीए ने पुदुचेरी में अपना इकतदार बरकरार रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल, आसाम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के आवाम और पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने आज की जीत को भारत की जमहूरी और आईनी अकदार से मंसूब किया। कांग्रेस की क्यादत वाले मुतहदा जमहूरी महाज ने केरलम में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु में शानदार कारकर्दगी के साथ अपना खाता खोला। असेंबली जिमनी इंतखाब बाद में बीजेपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 2, जबकि एनसीपी की सुनेत्र पवार ने रिकॉर्ड फर्क से जीत हासिल की। और इंतखाबी नतायज से घरेलू स्टॉक मार्केटों में खुशी की लहर दौड़ गई। सेंसेक्स में जबरदस्त इजाफा हुआ और निफ्टी 24,100 से तजावुज कर गया। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में 294 रुकनी रियासती असेंबली चुनाव में भारी अक्सरियत हासिल करके तारीख रकम की है। आसाम में हुक्मरान बीजेपी की क्यादत वाले एनडीए ने मुसलसल तीसरी मरतबा तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। केरलम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 99 सीटें जीतकर इकतदार में मजबूत वापसी की है। तमिलनाडु में अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी TVK अपने पहले ही चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करती दिखाई दे रही है। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी की ऑल इंडिया NR कांग्रेस की क्यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की हुकूमत में वापसी मुतवक्के है। जिमनी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड और महाराष्ट्र में 1-1 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें हासिल की हैं। एनसीपी ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड वोटों से 1 सीट हासिल की है। बीजेपी मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बड़ी कामयाबी की तरफ गामजन है। उसने 294 रुकनी असेंबली में 148 की अक्सरियत का निशाना उबूर कर लिया है। रियासत में आजादी के बाद पहली मरतबा बीजेपी हुकूमत बनती दिखाई दे रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस TMC को 15 बरस इकतदार में रहने के बाद शिकस्त का सामना है। ये चुनाव वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR के बाद होने वाला पहला इंतखाब है। कुल 293 असेंबली हलकों में से अब तक 213 हलकों के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने 154 सीटें जीत ली हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 54 सीटें हासिल की हैं। इलाकाई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 1 सीट हासिल करने में कामयाब हुई है। अब तक 80 सीटों के रुझानात के मुताबिक बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 25 सीटों पर सबकत बनाए हुए है और दीगर 1 सीट पर आगे है। मगरबी बंगाल की वजीर आला और TMC की सरबराह ममता बनर्जी भवानीपुर हलके में बीजेपी के अपने हरीफ सुवेंदु अधिकारी से पीछे हैं, जबकि सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट पर भी सबकत हासिल बनाए हुए हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत मैत्रा ने ब्रह्मपुर हलके में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है।

असम में अब तक 119 हलकों के नतायज का ऐलान हो चुका है, जिनमें बीजेपी ने 81 सीटें जीत ली हैं, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टी असम गण परिषद AGP ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF ने 10 सीटें हासिल की हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने 14 हलकों में जीत हासिल की है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF और रायजोर दल ने 2-2 सीटें हासिल की हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस TMC ने 1 सीट जीती है। बाकी 7 सीटों के रुझानात के मुताबिक बीजेपी 1 सीट पर आगे है, कांग्रेस 6 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। बीजेपी के रहनुमा और मौजूदा वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने जालुकबारी हलके से जीत हासिल की है। केरलम में कांग्रेस 63 सीटों के साथ सबकत बनाए हुए है, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें हासिल करके UDF को रियासत भर में मजबूत बढ़तरी दिलाई है। UDF के दीगर इत्तेहादियों, जिनमें केरला कांग्रेस के मुख्तलिफ धड़े और छोटे इत्तेहादी शामिल हैं, ने भी कामयाबी हासिल की, जिससे इत्तेहाद के हक में बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत का इजहार होता है। ताजा नतीजों के मुताबिक वजीर आला और CPIM रहनुमा पिनराई विजयन और धर्मादम हलके में कांग्रेस के VP अब्दुल रशीद को 19,000 से ज्यादा वोटों के फर्क से हराया। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर ने नेमम हलके में CPIM के सीनियर रहनुमा V. Sivankutty को 4,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की कयादत वाली TVK तमिलागा वेत्रा कशगम TVK तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में तारीख रकम करने के लिए तैयार नजर आ रही है। TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। TVK ने रियासत की 234 सीटों में से 85 सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 22 सीट पर आगे चल रही है। रियासत में सख्त सहरुखी मुकाबले के दौरान 172 सीटों के नतायज का ऐलान हो चुका है, जबकि मजीद 62 सीटों के रुझान दस्तियाब हैं। चुनाव कमीशन के मुताबिक वजीर आला MK स्टालिन की क्यादत वाली हुक्मरान द्रविड़ मुनेत्र कशगम DMK ने 41 सीटें जीत ली हैं और 18 सीटों पर आगे है, जबकि उसकी हरीफ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम AIADMK 15 सीटों पर आगे है और वो 32 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। PMK 2 सीट जीत चुकी है और 2 सीटों पर सबकत बनाए हुए है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 2 सीटों पर आगे है, जबकि 3 सीट हासिल कर चुकी है। बीजेपी DMDK CPI और AMMKMNKZ ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। CPIM और IUML ने 2-2 सीटें जीती हैं। VCK ने 1 सीट हासिल की है और 1 सीट पर आगे है। अहम उम्मीदवारों में मौजूदा वजीर आला MK स्टालिन, जो चेन्नई में वाके अपने आबाई सियासी गढ़ कोलाथुर हलके से चुनाव लड़ रहे थे। TVK के उम्मीदवार VS बाबू से तकरीबन 8,700 वोटों के फर्क से हार गए। नायब वजीर आला उदयानिधि स्टालिन चेन्नई के चेपॉक थिरुवालिकेनी हलके में TVK उम्मीदवार सेलम DK के खिलाफ तकरीबन 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। TVK के सरबरा विजय पेरम्बूर और तिरुचि ईस्ट दोनों हलकों में 17 मरहलों के वोटों की गिनती के बाद आसानी से सबकत बनाए हुए हैं। साबिक वजीर आला ओ पनीर सिल्वम, जो हाल ही में DMK में शामिल हुए थे, 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी की ऑल इंडिया NR कांग्रेस की क्यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की हुकूमत की वापसी मुतवक्के है। उसने 30 रुकनी असेंबली में सीटें हासिल करके वाजे अक्सरियत हासिल कर ली है। AINRC ने 12 सीटें जीत ली हैं और बीजेपी 4 सीटें जीत चुकी है और 2 पर बढ़तरी कायम रखे हुए है। AIADMK और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1-1 सीट हासिल की है। DMK ने 2 सीटें जीती हैं और 3 पर आगे है। TVK ने 2 सीटें हासिल की हैं और 1 सीट पर सबकत बनाए हुए है, जबकि NMK और LJK ने 1-1 सीट जीती है। आजाद उम्मीदवारों ने 3 सीटें हासिल की हैं। वजीर आला एन रंगास्वामी थट्टा चन्नावाडी हलके से दोबारा मुंतखब हो गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार और रियासती वजीर दाखला A. Namasivayam ने भी अपनी सीट जीत ली है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन एक तारीख साज और अदीमुल मिसाल दिन है। उन्होंने मगरबी बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के पार्टी

0: कारकुनान और आवाम का शुक्रिया अदा किया। आज शाम नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज मुल्क के लिए एक नई सुबह का ऐलान है। नीज आवाम ने भारत के अजीम जमहूरियत में अपने यकीन का इजहार किया है और कारकर्दगी पर मबनी सियासत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे में अपना भरोसा जताया है।
1: आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूँ।
0: वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार किया कि लोगों के यकीन के सबब कमल दोबारा खिला है। उन्होंने बीजेपी के सदर नितिन नबीन की पार्टी कारकुनों की रहनुमाई करने के लिए सताइश की। उन्होंने कहा कि हार और जीत जमहूरियत और सियासत का हिस्सा है और इस मर्तबा दुनिया ने देखा कि भारत क्यों मादरे जमहूरियत के तौर पर जाना जाता है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी एनडीए की सरकारें मुल्क की 20 से ज्यादा रियासतों में इख्तदार में हैं और बीजेपी का मंत्र है शहरी भगवान है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी में अपना एतमाद जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोग वाजह तौर पर ये देख रहे हैं कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां उम्दा हुक्मरानी है और तरक्की हुई है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि आसाम के लोगों ने मुसलसल तीसरी मर्तबा बीजेपी एनडीए में अपना एतमाद जाहिर किया है और ये एक हैट्रिक है। उन्होंने इस जीत को असम की तारीख में एक अजीम कारनामा करार दिया।
1: असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकर देव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा।
0: जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल के हर एक बाशिंदे को यकीन दिलाया कि बीजेपी रियासत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल काम करेगी। उन्होंने कहा कि अब रियासत में खवातीन महफूज होंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, माइग्रेशन खत्म होगा और दरअंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पहली काबीना मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी जाएगी। 5 रियासतों के 7 असेंबली हल्कों में हुए असेंबली जिमली इंतखाबात में बीजेपी ने गुजरात, त्रिपुरा, नागालैंड में 1-1 सीट जीती है और महाराष्ट्र में भी 1 सीट जीती है, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक में 2 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की इत्तेहादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने भी 1 सीट जीती है। महाराष्ट्र में सुनेत्र पवार ने बारामती जिमनी इंतखाबात में 2,18,930 वोट हासिल करके तारीख रकम की है और मुल्क में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से जीत कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में साहिबाबाद सीट से जीतकर 2,14,835 वोट हासिल किए थे। घरेलू शेयर बाजार में आज तकरीबन 0.5% का इजाफा दर्ज किया गया। सेंसेक्स 356 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 77,269 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 122 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये 24,119 पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर शेयर बाजार में इंतखाबी नतायज से घरेलू स्टॉक मार्केटों में खुशी की लहर दौड़ गई और मुस्बत रुझान देखने को मिला। आखिर में खास खास

0: खबरें एक बार फिर। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में जबरदस्त अक्सरियत के साथ तारीख रकम की। आसाम में भी मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी हासिल की। एनडीए ने पुदुचेरी में अपना इख्तदार बरकरार रखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के अवाम और पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आज की जीत को भारत की जमहूरी और आईनी अकदार से मनसूब किया। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहिदा जमहूरी महाज ने केरलम में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में शानदार कारकर्दगी के साथ अपना खाता खोला। असेंबली जिमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 2, जबकि एनसीपी की सुनेत्र पवार ने रिकॉर्ड फर्क से जीत हासिल की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: इसे आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम ज्यादातर 8.8 मीटर तो एफएम आखा तो 3.5 मेगाहर्ट्ज़ पे रात साढ़े 9 बजे। समीन पे डॉक्टर सोनलाल कोल सुन लिखमुत कशुर ड्रामा नाद बुझू। ये कशुर ड्रामा नाद

0: इसलिए मांग पन्ने खतरे पन्नन शिरन हिंद खतरे
1: मतलब चौन मतलब क्या चु
0: मतलब चु ये सरकार पन्ने एक्सटेंशन इश्कात साहब जी ने नौकरी हिंसकात बंटी खतरे मांगो मेडिकल सीट असल क्या इस्त्रोत
1: असुन आम आत कहते पेट जी ये तीस बड़ीस दरबारस मांचु में पाने न मसले हैं आजुन तिमन खतर मांग करें
0: अद आत्मस क्या नाकार की चे
1: मेजिन तत्त्वम पागल करार ये तीस बड़ीस इंसाफ किस मरकजस मांचा में पानुन एक्सटेंशन मांगो निचिसीद खतर नौकरी तो कोरी खतर मेडिकल सीट मांगे ये गाव दोख लोकन हिंदीस भरोसा से दोख नना यह कर बकरियत
0: ओहो चोन अयाल तुच लोक तो तिमन खतर इंसाफ मांगन छुन गलत
1: पजे आज गलत मगर एम सीट लगी मेनिस वजूदस लोचर।

0: क्या ये करा
1: ती वटन ये चे त्रोम छु
0: हता यार इना छुनु मैं त्रोम
1: तेली
0: ये चे एमी नफरन त्रोम
1: ते बाल तो छु छोटी बयोमुत
0: ये चे जिंदा है ये छु नु मुनि छो
1: तेली करियाना हरकत
0: शहरक छस वथान मुनि छे मिस बे प्यार लिहाजा बन्यो नु युनि छो
1: हे हे लाला हे चासवन मई बस छुस खास रो सड़क डुबन वोल
2: हाँ वन लगे ठ पानस मे वक लिहाजा प्रार
1: कोत वक लगे
2: तेल पाय तेल क्या गया ये क्या ये मिस छे पाई
1: ये मिस
2: ये छुई वादियत हे चाह सवन मैं मैं कर सवाद नाद
1: ये ले ते पाय आसे हम ते ले क्या गयो
2: मैं जनाब छु बासन जे असली छन कंसे क्या पता अंदाज लगावान यतांबो बढ़ियोस तो लोसवन आपता बन्योस
1: ये चो गसान सायने चुचुकन का स्पेशल केस
2: तो अशा याद आस ब्रो त्रुवा वरी गयोस पर ये थे गेट स्पेट जाहिर
1: मैं चे प्रात कट कट याद
2: तेल हाशो ये थे याद त्रुवान वरियन हिंस साधना त्रुवान वरियन हिन बन बास
1: यदवाई आज चाने अर्जी अफसर बोजन तो पत तथ मंजूरी दिन अंदाज कर चोन नाव कोता थजर लब गक अमर तैयार बनक दाइन चीन थोरी कॉलेज तो यूनिवर्सिटी मज
2: पर्नवल मसल
1: कम सना
2: सो कस वत वक्त तस्वुर मोकल इंसान बढ़ नई रोज
1: अम सल निश सोर निजाम गरहम बरहम
2: तीति बचान ये निजाम मकलावन तो नव पैद कर
1: बहरहाल करो तुम पनी तो बि कर पनी
2: मे प्रार्न बगैर कम दिए वार वार मे दिए जिसम जवाब तिकाजे वोस नोलस पे बिहत हकान हे भाया तल सा मिनट ये तो योत न
3: बह जाय त्रवित मे हुकुम ये पहर दिन दे माफी
2: चलो चलो बम ऐ निश वाति त्रुवा
3: बिल्कुल
2: मगर चुक दुत तो बह बस
3: अन् वक् असर करान
2: हाँ मगर नाद ती जरूर
3: तमुक मैं पाई तुह वो थर थर
2: मे जन बसान सारे हमत मोकल अम ब्रो मे गमस रोज तरस बस बस अख सवाल पृचुन ये वोन मे मे बस

गीतों भरी कहानी। आज आप मकबूल साहिल की लिखी कहानी सुनेंगे, शायर की मोहब्बत। शायर को कुदरत ने एक बेमिसाल और लामहदूद तखय्युल अता किया था। उसके जहन के पर्दे पर उतरने वाली हर गजल अदब का एक बेहतरीन नमूना होती। उसका हर शेर जैसे कागज पर जिंदा जावेद चलता फिरता नजर आता। उसकी हर रुबाई रूमानवियत का एक गहरा बहरे सहबा और तखय्युल का कोहे अलवंद कहलाती। वो बस सोचना शुरू करता। उसके हाथ में मौजूद कलम को जैसे कोई गैबी कुवत थाम लेती और वो लिखता रहता। खूबसूरत हरूफ की एक बितरतीब क्यारी की तरह सफाहे किरदास पर अशार बिखरने लगते। कुदरत ने उस पर एक और मेहरबानी भी की थी। वो दिल में किसी चीज की ख्वाहिश करता तो अगले ही लम्हे वो चीज उसके रूबरू हाजिर हो जाती। वो आंखें बंद करता तो पलक झपकने से पहले किसी हसीन गुलशन में पहुंच जाता। किसी रूह परवर मरखजार बरपोश कोहसार समरदार बाखात और गुनगुनाते झरनों या नदियों की सैर करना उसके लिए कोई मसला ही नहीं था। जन्नत के घने और ठंडे बाखात, दूध और शहद की नहरें, नहरों के किनारों पर कतार दर कतार सुरीले नगमे और रक्स पेश करती दिल नशीं हूरें। बड़ी बड़ी आंखों वाली आईना दिन में कई बार उसकी बाहों में आकर उसे मसहूर और मसरूर कर जाती और उसके सफेद कुर्ते के कॉलरों पर अपने लबों के निशान छोड़कर रुखसत हो जाती। कोई काफ की हसीन परियों से वो अक्सर रात के खामोश और पुरसकून लम्हात में मिलता था। दिन के शोरगुल में वो उधर का रुख नहीं करता था। उसे शुबा था कि दिन के उजालों में न जाने कितने ही मुसाफिर और आशिक शहजादे सैफुल मुलुक की तरह अपनी बदियु जमाल की तलाश में इन बर्फानी रेगिस्तानों में अपनी मंजिल का रास्ता तलाश करते फिर रहे होंगे। और हो सकता है शायर के नक्शे कदम पर चलते हुए उस पुरमन मकाम की तरफ चले आए, क्योंकि इंसान की फितरत में फितनों फसाद मौजूद है और वो उसके बगैर न तो जिंदा रह सकता है और न ही सुकून से बैठ सकता है। उसे चांद तारों से भी आगे की दुनियाओं और कहकशानों से परे तमाम जहानों पर दस्तरस हासिल थी। वो जब चाहता चांद के काले खारों की सैर करता, जब चाहता आसमानों की वसतों में घूमने निकल जाता और जब चाहता पाताल की गहराइयों में पोशीदा राजों पर से पर्दा हटा देता। ये सारे काम शायर के लिए बहुत मामूली थे। उसने जब भी इरादे की लगाम थामी और तखय्युल के मस्त झोंके पर सवार हो

आप मकबूल साहिल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं शायर की मोहब्बत। वो देखने में एक आम सा इंसान था, हार्ड मांस का पुतला, पुतले में जान और सीने में एक बहुत नर्म और खूबसूरत दिल, दिल में फितरत की नजाकत और नफासत की तर्जुमानी करता एक एक कतरे खून और उस खून की उछल कूद में शोरे माशर, और यही शोर उसे हर लम्हा बेकरार रखता था। मोहब्बत का मुबल्लिग और नफरत का दुश्मन, मेरा दोस्त शायर, अजीब गरीब फितरत का मालिक था। वो जो कुछ लिखता जरबुल मिसल बन जाता, वो जो कुछ कहता हकीकत बन जाता, और जो कुछ सोचता वाकयात में बदल जाता। उसके कारी उसके दीवाने थे, लेकिन वो किसका दीवाना था, इस बात पर उसने कई बार बहुत संजीदगी से सोचा। उसे कभी अपनी गजलों में रक्स करती हूरों का ख्याल आता, कभी अपनी रुबाइयों में अंगड़ाइयां लेती कोहे काफ की तितलियों जैसी हसीन परियों का ध्यान आता, और कभी अपनी नज्मों में मुस्कुराती उछल कूद करती और मस्त निगाहों से फिजा में जादू बिखेरती हिरनियों से भी मस्त तिलिस्मी मखलूकात याद आती, जो उसने आसमानों और कहकशानों की सैर के दौरान एक नहीं कई बार देखी थी, उनसे नजरें मिलाई थी, उनका बोसा लिया था और उन्हें अपने धड़कते दिल से लगाया था। लेकिन वो जानता था कि इन सभी मखलूकात में दीवानगी तारी करने वाली कोई बात नहीं थी। शायर को सबसे ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत थी। वो अपने वतन की जुल्फों की मस्त खुशबू में खो जाता और उसे ये सारी सरजमीन लैलाए कोहसार नजर आती, जिसके हिजर में वो अपना हुलिया बिगाड़कर कोहो बियाबा में दीवानावार उसे तलाश करता। कभी उसकी परेशान जुल्फें सुलझाता, कभी उसके रेजा रेजा लिबास में पैबंद लगाता, और कभी उसके ताजा जख्मों पर अपने लुआब की मरहम लगाता, या कभी उसके मैले बदन को अपने अशकों के झरने के नीचे मल मल कर धोता।

0: आप मकबूल साहिल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं शायर की मोहब्बत। मैंने अपने फर्ज में कभी कोताही नहीं बरती, उसे कई बार बताया बल्कि बहुत जोर देकर समझाया कि मेरे हसीन और जमील और नाजुक मिजाज दोस्त, दुनिया बदल चुकी है। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और इंसानियत जैसे मासूम जज्बात और प्यार जैसे रिश्तों ने एक अरसा कबल शहर खमोशा में अपना मुस्तकिल मस्कन तामीर कर लिया है। अब दौरे रफ्ता की यादगार मोहब्बत ताजमहल से भी खूबसूरत इमारत बनकर किसी खूबसूरत बाग में खड़े हो जाएंगे तो आपकी दीवारों पर सिनेमा के पोस्टर चश्मा कर दिए जाएंगे, आपके गुम्बदों को चिड़िया और कबूतर गंदा करके उड़ जाएंगे, आपके हक वरासत को लेकर हंगामे खड़े हो जाएंगे और फिर कत्ल, फितना, फसाद और अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। मैंने उसे यह भी बताया था कि अगरचे अभी हम लोग अरसे महशर में नहीं हैं, लेकिन अल नफसी के नारे हर तरफ बावाज़े बुलंद उठ रहे हैं। खुद गर्जियों ने दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना का उसूल अपना लिया है और यही उसूल कामयाब भी है। फिर मैंने उसे बता दिया कि इस दौर में किसी भटके को सीधी राह दिखाना एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन वो ठहरा उसूलों का पाबंद और अपने जमीर का कैदी। उसे मेरी बातों में फितनो शर ही नजर आया। वो मुझसे रूठ जाता और अपने उसी छोटे से कमरे में मुकैद हो जाता, लेकिन उसका गुस्सा कभी दायमी नहीं होता था। वो थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलता और मुझे तलाश करने लगता, कभी किसी झाड़ी के पीछे, कभी किसी चट्टान के साये में, कभी किसी झरने के नीचे या फिर किसी बर्फपोश चोटी पर मुझे तलाश करता है। अपनी नन्ही, मासूम और बचगाना मुस्कुराहटों और गिलकारियों से मुझे बहलाता और मैं हार कर उसे गले लगा लेता। इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसका बचपन है कि जाने का नाम नहीं लेता। अकेला और तन्हा, उदास और परेशान, अपनी धुन में मस्त, किसी और सैयारे की मखलूक, जैसे अजनबियों की महफिल में आ गया हो। शायर मेरा दोस्त, दुनिया का आठवां अजूबा।
1: सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। सात अजूबे

अब साहिल मकबूल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं अपने मेजबान रशीद निजामी के साथ शायर की मोहब्बत। शायर की सारी परेशानियों का वाहिद इलाज था कि उसके उदास और दर्दमंद दिल को किसी हसीना के हवाले कर दिया जाए। उसकी तन्हाइयों, उदासियों और आंसुओं का मदावा सिर्फ और सिर्फ किसी शोख माशूका की गहरी निगाहों के जाम जमशीद में ही मिल सकता था। मैंने एक दिन उसको ये बात भी बता दी। वो पहले घबरा सा गया, फिर उसकी नजर शर्मा कर झुक गई और वो खामोश रहा। फिर थोड़ी देर बाद नजरें उठाई और कहने लगा, तुम्हारी बात मैं समझता हूं, लेकिन मैं अपनी जन्नत की हूरों और कोहे काफ की परियों को छोड़कर किसी दुनियावी हसीना से मोहब्बत कैसे करूंगा। वो मुझसे रूठ जाएंगी, नाराज हो जाएंगी और मैं उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। शायर ने पहली बार खामोशी तोड़ी। वो मासूम था और मैं शातिर, वो सीधा था और मैं टेढ़ा, वो शरीफ था और मैं चालाक। मैं अपनी ताबीलात के फंदे में फंसा कर उसे राहे मोहब्बत पर गामजन करने में कामयाब हो गया और देखते ही देखते उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन वो अपने उसी कैदनुमा कमरे में कागज खोर कीड़े की तरह उलझा हुआ था कि मैंने एक प्यारी सी हसीना को उसके कमरे में चुपके से भेज दिया। शायर ने सर उठाकर देखा तो उसे बाबा आदम के पहलू में बाकी आदम की अम्मा हवा वाला मंजर याद आया। उसे लगा कि उसके तखयल से कोई हूर या परी छम से उछलकर बाहर निकल आई है और हकीकत का लिबादा ओढ़कर उसके रूबरू बैठी है। उसको महसूस हुआ कि यह उसके तखयल की कुव्वत और तवज्जो की इंतहा है कि उसे इस कैदनुमा कमरे में अपने अशार में बसे किरदार हकीकत बनकर सामने नजर आ रहे हैं। उसने आंखें झपकाकर अपने सर को झटक कर और अपनी चुटकी काट कर इस ख्वाब से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा क्योंकि वो कोई तखयल नहीं हकीकत थी। इसलिए अपनी तमाम तर कोशिशों के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, ए हसीन दोशीजा, कौन है आप? यहां क्यों तशरीफ लाई हैं? मैं एक औरत हूं, हवा की बेटी, आदम की पसली से तैयार की गई खूबसूरत मखलूक जिसने आदम की उदासियों, तन्हाइयों और परेशानियों में रंग नूर की मस्ती भरती थी और फिर उसे जन्नत से भी आप ही ने निकलवाया था। शायर ने पूछा, यह महज इल्जाम है, ये मनशाए रब थी और ऐसा होना अजल से तय था, वरना सच तो यह है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आपको शेर व शायरी से भी शगफ है, ये जानकर खुशी हुई, लेकिन यहां तशरीफ आवरी की वजह अभी तक आपने बयान नहीं फरमाई। आपकी तन्हाइयों, उदासियों, परेशानियों और उलझनों को दूर करना चाहती हूँ। एक दोस्त बनकर आपके दुख बांटूंगी, माशूका बनकर आपके दिल पर राज करूंगी, बीवी बनकर आपकी जिंदगी में बहारें लाऊंगी और सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी। हसीना ने जवाब दिया और करीब आकर शायर के पहलू में बैठ गई। धीरे से उसके हाथ पर अपना नर्म और गर्म हाथ

हाथ रखा तो ये गर्मी शायर की रूह तक उतर गई। उसे एक नए एहसास से साबिका पड़ रहा था। हसीना और करीब आई और शायर की आंखों में आंखें डालकर कुछ इस अंदाज से देखा कि शायर को अपना वजूद किसी गहरी झील में डूबता नजर आया। दोशीजा बहुत खूबसूरत और नाजुक अंदाम थी, उसके तखयल और तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन। आंखों के रास्ते दिल में उतरकर कभी बाहर न निकलने वाली किसी मुसव्विर की जीती जागती तस्वीर। उसकी दुआओं का मनचाहा जवाब और उसकी आरजुओं का अमली रूप। उसने हर मरहले को धीरे धीरे तय करने का फैसला किया, पहले दोस्त, फिर माशूका और फिर शरीक हयात। और ये सब कुछ हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता।

दिन गुजरते गए, दोशीजा और शायर की दोस्ती हो गई। सबसे पहले शायर ने कलम कागज लेकर उस दोशीजा का कोई अच्छा सा नाम तजवीज करने का फैसला किया। रिहाना, रुखसाना या फरजाना, नहीं, सब सुने सुनाए नाम हैं। नसरीन, महरीन,

गुजरते गए। दोशीजा और शायर की दोस्ती हो गई। सबसे पहले शायर ने कलम कागज लेकर उस दोशीजा का कोई अच्छा सा नाम तजवीज करने का फैसला किया। रिहाना, रुखसाना या फरजाना? नहीं, सब सुने सुनाए नाम हैं। नसरीन, महरीन या फिर परवीन? नहीं, ये भी कुछ जाने पहचाने नाम हैं। वो सोचता रहा और जहन में हजारों एक से एक नाम घूमते रहे जिन्हें वो मुस्तरद करता रहा, क्योंकि उसकी ये दोस्त उन सबसे मुख्तलिफ थी। चंचल, शोख, मोटी और बड़ी बड़ी आंखों वाली, चाल में मस्ती और जबान में मिठास, हाथों में नरमी और लबों पर गर्मी, वो किसी अच्छे और मुनासिब नाम की तलाश में था। हिरनी, उसके जहन में आया, मेरी दोस्त एक हिरनी की तरह है, उसने सोचा और उसका नाम इसी मुनासिबत गजाला रख दिया। और ये नाम दोशीजा को भी बहुत पसंद आया। वो थी ही इतनी प्यारी कि कोई हसास शायर ही उसको इतना खूबसूरत नाम दे सकता है। अब शायर होता और उसके हमरा गजाला होती। मुस्कुराहटें कहकहों में बदल गईं, खामोशियां महफिलों में और उदासियां मजलिसों में। उधर वो गजाला की खूबसूरती के समंदर में डूबता गया और इधर मैं एक दोस्त से महरूम होता गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा दोस्त खुश है, जिंदा है, खशाश बशाश और चाको चौबंद है। वो नहाने धोने लगा, नए और रंगीन मलबूसात जेबतन करने लगा और खुशबू और अत्रियात की खरीदो फरोख्त होने लगी। शायर बदले माहौल में जिधर से भी गुजरता लोगों की नजरों में समाया रहता। वो महफिलों की जान बन चुका था और रिश्तों के मरहले तय करता हुआ एक फातेह की तरह आगे बढ़ रहा था। जबकि गजाला की कुर्बत के बाद उसने न तो कभी बेहिश्त की हूरों की सुध ली, न कोहे काफ की परियों का हाल पूछा, न कहकशानों की सैर की और न ही सितारों से आगे के दूसरे जहानों को मुसख्खर करने की कोशिश की। अब तो वो सिर्फ इस फलसफे का कायल था कि मुकालिमात फलातून न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। और वो हर किसी से यही कहता कि खुलते जाते हैं इसी आग से असरारे हयात, गर्म इसी आग से है मारिकए बूद नबूद।

अब साहिल मकबूल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं अपने मेजबान रशीद निजामी के साथ शायर की मोहब्बत। रिश्तों के मारे के सर करने की उसने कई कोशिशें की, लेकिन गजाला हर बार उसकी तवज्जो मोड़ देती। और अब तो शायर की कुव्वत तखयुल भी उसी के हाथ में थी। उसने गजाला को बहुत से बाग बहार की सैर कराई, लेकिन गजाला को कोई जगह पसंद नहीं आई। वो तिलिस्मी दुनिया और मखलूकात से दिलचस्पी नहीं रखती थी। और फिर फैसला हुआ कि वो उसे अपने वतन के किसी खूबसूरत मरकजार की सैर कराएगा, जहां खामोशी होगी, तन्हाई होगी और खूबसूरत नजारों के दरमियान सिर्फ दो दिल मौजूद होंगे। और फिर शायर गजाला का हाथ पकड़कर निहायत खूबसूरत और हसीन अल्फाज का इंतखाब करके उसे यूं मुखातिब करेगा, गजाला जाने मन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें दोस्त से महबूबा बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे खूबसूरत लबों को चूम कर तुम्हारे दिल में उतर जाना चाहता हूं, तुम्हारे सीने की धड़कनों की ताल पर मोहब्बत का मीठा गीत गाना चाहता हूं और तुम्हारी आंखों में छलकती शराब से अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं और अपनी कायनात के फीके खाकों में तुम्हारे खूबसूरत रंग भर के उन्हें एक मुकम्मल तस्वीर बनाना चाहता हूं।

ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। गजाला साथ चलने के लिए तैयार थी और शायर इजहार मोहब्बत के लिए बेकरार। बहरहाल तय पाया कि सोनामर्ग के खूबसूरत मरगजार की तरफ। गजाला को ले जाकर तनहाई के आलम में किसी बुलंद चोटी की साफ और शफाफ बर्फ को गवाह रखकर ये सभी नाजुक बातें सुनने पर मजबूर कर दिया जाए। सोनामर्ग की हसीन वादी से ऊपर लद्दाख और कश्मीर को तकसीम करने वाली दुनिया की बुलंद तरीन शाहरा जोजिला की बर्फपोश चोटियों की तरफ गजाला मेरे शायर दोस्त के साथ एक अजनबी शख्स की गाड़ी में रवाना हो गई। रास्ता तय होता गया और अजनबी उनके साथ घुल मिल गया। चर्ब जबान, अल्फाज का जादूगर या अजनबी। जोजिला की चोटियों पर आते आते दोनों पर जैसे छा गया। पहाड़ों में आगे चलकर यूं ही पल भर के लिए शायर का रास्ता खो गया और वो एक गहरे नाले में उतर गया। फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता हुआ कैप्टन मोड़ से नीचे उन दोनों का इंतजार करने लगा। सूरज मगरिब की काली घरों में डूबने लगा तो अजनबी की गाड़ी दिखाई दी। वो सड़क पर इंतजार करने लगा। गाड़ी पहुंची, सामने रुकी, दरवाजा खुला और शायर पिछली सीट पर बैठ गया। इस छोटे से वक्त में हालात बदल चुके थे। गजाला अजनबी के साथ फ्रंट सीट पर हंसती खेलती वापस आ रही थी और शायर पिछली सीट पर रकाबत की आग में जल रहा था, क्योंकि जिन जज्बात का इजहार करने के लिए वो एक अरसे से अल्फाज और जुमले तरतीब दे रहा था वो अजनबी ने सोचे समझे बगैर कुछ लम्हों में कह डाले थे और गजाला ने उन्हें अनमोल मोतियों की तरह अपने गले के हार में महफूज कर लिया था।

आप साहिल मकबूल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं अपने मेजबान रशीद निजामी के साथ शायर की मोहब्बत। शायर ने उनके साथ मजीद सफर करना मौजू नहीं समझा, किसी बहाने गाड़ी रुकवाई, बाहर निकला और बालतल के करीब सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों पर एक हसरत भरी निगाह डाली। शायद वो इन सुनहरे नजारों को आखिरी बार देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी मोहब्बत भी बेसुध साबित हुई थी। वो मोहब्बत के जाल और आंखों के फरेब से आजाद हो चुका था। उसकी तमाम गैबी कुवतें उसे वापस मिल चुकी थीं। वो बहुत दुखी होने के बावजूद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे किसी बड़ी चट्टान के नीचे से बाहर आ रहा हो, जैसे जन्नत की किसी नहर से नहा कर निकला हो, जैसे उसका कोई कर्ज अदा हो गया हो, या फिर कोई कैदी बरसों बाद रिहा होकर घर लौट रहा हो। अब उसके तखय्युल और तसव्वुर पर उसका पूरा इख्तियार था। उसने मन ही मन में ख्वाहिश की कि एक सफेद बुराक और सजा सजा घोड़ा हासिल हो जाए और वो इन दोनों से भी पहले अपने घर वापस आ जाए। सोचने और चाहने की देर थी। अगले ही लम्हे ये मौजूजा हुआ और वो वापस अपने कैदनुमा कमरे में पहुंच चुका था। उसकी नींद खुल चुकी थी। चाय की एक गर्मा गर्म प्याली उसके मेज पर रख दी गई थी। सामने कागज

और कलम मौजूद था और वो फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया था। कोहे काफ की परियों के साथ बहिश्त की हुरों के हमरा कहकशानों और सितारों से आगे के जहानों में तस्खीर कायनात के मरहले तय करता हुआ अपने सफर पर रवान था। शायर मेरा दोस्त एक मुद्दत के बाद मुझे वापस मिला।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, शायर की मोहब्बत, तहरीर मकबूल साहिल। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अब अपने मेजबान रशीद निजामी को दीजिए इजाजत, जब तक के लिए खुदा हाफिज।

0: आप प्रोग्राम सुन रहे थे गीतों भरी कहानी। आज आपने मकबूल सैल की कहानी सुनी, शायर की मोहब्बत। प्रोग्राम के मेज़बान थे रशीद निज़ामी। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज़ जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 197 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 21 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 103 सीटें जीत ली हैं और वो 4 सीटों पर आगे है। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके के 56 सीट जीत चुकी है। एआईएडीएमके 45 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के बीएस बाबू ने 8,795 मतों के अंतर से हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हर्षद भाई गोविंद भाई परमार चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट पर भाजपा के अक्षय शिवाजी राव करदिले को जीत मिली है। नागालैंड में कोरिडांग सीट पर भाजपा के दाओचियर इमचेन विजयी रहे हैं। त्रिपुरा में धर्मनगर सीट से भाजपा के जाहर चक्रवर्ती को जीत मिली है। कर्नाटक में बागलकोट सीट से कांग्रेस के उमेश हुलप्पा मेदी को जीत मिली है। कर्नाटक में ही दावणगेरे दक्षिण सीट से कांग्रेस के समर्थ सामनूर मल्लिकार्जुन चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। IPL क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज़ रेड बाय रेणुका।

0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। शब के 11:10 हुए हैं। आज के मौजूद बर्खास्त करने से पहले एक नज़र कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों पर।

रात 9:30 पर कश्मीरी अरबी मैगजीन से बात करें संगरमाल। मौजू कौशर अपसंत मौजूद दौर। शब 10 बजे फिल्मी नगुन का फरमाइशी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। हेलो आपकी फरमाइश। प्रोग्राम सुबह का ही पेश खिदमत होगा सुबह 6:35 पर।

सुबह 7:10 पर मॉर्निंग लाइव शो समाप्त करें पयामे सुबह हम सफर ये सुपानसर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। मौजू है नजर पूरा करने के अहकाम। कल आप इस मौजू का तीसरा शुमारा सुनेंगे। इस मौजू पर बात करेंगे प्रोग्राम के रूही रवां मौलाना फयाज अहमद जरूर साहब, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा।

सुबह 9 बजे मक्का में रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी। सूफी सदा, ये प्रोग्राम पेश होता है सुबह 10 बजे। कल का प्रोग्राम मारूफ सूफी शायर समद मीर से मुतलिक है।

शेख अब्दुल अजीज और साथी सोफियाना मौसीकी पेश करेंगे दिन के 11:30 पर और फिर 2:30। इनसे आप बेतरतीब मकामी हुसैनी और मकामी आशरन सुनेंगे। ख्वातीन की महफिल बज़्मे निस्वार आस्ता होगी 12:40 पर। दिन के 1:10 पर NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा उमंग। 3:00 प्रोग्राम पेश होगा फौजी भाइयों के लिए।

पार्टी प्रोग्राम सपहर 4 बजे नष्ट होता है। पंजाबी अरबी मैगजीन समाप्त करें सपहर 4:30 पर। गोजरी प्रोग्राम शाम 5 बजे पेश होगा। देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात तो वाकात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शहर बीन के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज़ का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। समीन यही कल हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्राम।

11:15 हुए हैं। हमारी आज की इमरजेंसी पर बर्खास्त होती है। कल सुबह 6:28 पर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, जय हिंद।

यही होता है अक्सर जिंदगी में, यही होता है अक्सर जिंदगी में कि थोड़ा गम भी शामिल हो खुशी में। प्रियदर्शी ठाकुर ख्याल ने इन कुछ शब्दों में जीवन की जैसे पूरी सच्चाई ही लिख दी। वैसे इस गीत में शब्द रचना थी गुलजार की, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज, फिल्म का नाम सीमा। अगला गीत बॉबी फिल्म से, शैलेन्द्र सिंह और मन्ना डे का गाया हुआ, विट्ठल भाई पटेल के बोल, लक्ष्मीकांत्यारे लाल का संगीत।

ये गीत आपने सुना फिल्म गुमराह से महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, रवि ने इसे सुरों में पिरोया। इसे और हमारे अगले गीत को जोड़ती है सैयद सरोश आसिफ की कलम से निकले ये शब्द कि चांद को देख के जुगनू ने फरमाया है, चांद को देख के जुगनू ने फरमाया है, सुबह का भूला शाम को लौट के आया है। तो चलिए, अब जब चांद की बात चली ही है तो सुन लेते हैं फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे से मुकेश की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत सरदार मलिक का।

बिजली के डोले हवो इंदर धनुष उसकी अंगड़ाई है, चंदा भी उसकी ही परछाई है।

इस मजेदार गीत के बारे में तो वैसे आप सब जानते ही होंगे, लेकिन चलिए बता ही देते हैं कि मन्ना डे का गाया ये गीत था फिल्म 1968 में आई पड़ोसन से, राजेंद्र कृष्णा का लिखा हुआ, आरडी बर्मन ने दिया। अब कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में हम आपको जब हर तरह के गाने सुना ही रहे हैं और जब जाने का समय भी होने को आया, तो किशोर कुमार की बात का जवाब दीजिए। फिल्म का नाम दाग, गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हमारा भी कि अपने दिल की बात आपको बताते रहें और आपकी बातें सुनते रहें, लेकिन क्या करें, हमारी मुलाकात आज का दिन और तारीख बदलने से ठीक पहले पहुंच चुकी है अपनी मंजिल तक। तो गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम को देना होगा विराम। इसके साथ ही मुझे यानी कि अवनीत शुक्ला को आज्ञा दीजिए, हम मिलेंगे अगले सोमवार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आगे सुनिए समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 203 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 72 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है, अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही

0: है। टीवीके ने 105 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके ने 46 सीट जीते हैं। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मुंबई ने 19वें ओवर में 229 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Bharatiya Janata Party BJP has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance NDA government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
2: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhavanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
1: BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member House, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress, TMC, in the first election after Special Intensive Revision, SIR, of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 281 constituencies so far. BJP has bagged 203 seats,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आगाज करते हैं निशिगंधा का। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, मेरे होने में किसी तौर से शामिल हो जाओ, तुम मसीहा नहीं होते हो तो कातिल हो जाओ, दश्त से दूर भी क्या रंग दिखाता है जुनू, देखना है तो किसी शहर में दाखिल हो जाओ।

खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, कूचे से तेरे बाद सबा ले गई हमको। फिर छोड़ दिया रेग सरे राह समझकर, कुछ दूर तो मौसम की हवा ले गई हमको, खुशबू की तरह साथ लगा ले गई हमको, कूचे से तेरे बाद सबा ले गई हमको।

0: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है, यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूँगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।

क्या है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही खूबसूरत बात आपकी नजर करते हैं कि रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, रात के ख्वाब सुनाए किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। जिद्दी वहशी अलहड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग, जिद्दी वहशी चंचल अलहड़ मीठे लोग रसीले लोग, होंठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे। हमको सारी रात जगाया जलते बुझते तारों ने, हमको सारी रात जगाया जलते बुझते तारों ने, हम क्यों उनके दर पर उतरे कितने और ठिकाने थे। जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग, होंठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे, धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे।

सुरभि के साथ प्रोग्राम निशिगंधा आप सुन रहे हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और चलते चलते एक और खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए, आप भी मेरी तरह हर गम में मुस्कुराइए, इस तरह हर हाल में जीने का लुत्फ

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस

0: 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों परम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वैत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 17 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजीत पवार विजयी रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। रयान रिकल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance, NDA government, led by N. Rangaswamy's All India NR Congress, AINRC. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes.
3: Trinamool Congress Chief Mamata Banerjee has been defeated by BJP Shubhendu Adhikari by more than 15,000 votes in the Bhabanipur Assembly. Shubhendu Adhikari also won the Nandigram seat. This is regarded as a significant victory for the BJP, which is going to form the government in West Bengal. Kolnan Laha reporting from Kolkata.
2: BJP has crossed the majority mark of 100.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। गीत सुहाने लेकर हाजिर हूं मैं सुरभि आपके बीच। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, लेकिन उससे पहले बहुत खूब कहा किसी ने कि ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है

वही हम बात करेंगे। तुम सोच के रखना, दोगी जवाब क्या जब हम सवालात की बरसात करेंगे। ऐ जिंदगी, हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही बात करेंगे। सुनकर रो पड़ोगे तुम खून के आंसू, जब पेश अपने दिल के जज्बात करेंगे। जो बात दिल में है हम वही बात करेंगे।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूबसूरत बात कही है किसी ने कि दिल से अपने गम जमाने का लगाए बैठे हैं, दिल से अपने गम जमाने का लगाए बैठे हैं, एक अलग ही अपनी दुनिया हम सजाए बैठे हैं। हम नहीं कहते किसी को हाल दिल अपना, मगर लोग कहते हैं कि हम क्या क्या छुपाए बैठे हैं। मैं ना पूछूंगा सबब उनसे खफा होने का अब, मैं ना पूछूंगा सबब उनसे खफा होने का अब, खुद ही जब वो गैर को अपना बनाए बैठे हैं, एक अलग ही दुनिया हम सजाए बैठे हैं।

रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। अपनों के

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अपना दीवाना बनाकर ले जाए, अपना दीवाना बनाकर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए। हुस्न वालों में कोई ऐसा हो जो मुझको मुझसे चुरा कर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए। रंग रुखसार पे इतना इतराओ नहीं, जाने कब वक्त उड़ा कर ले जाए। हुस्न वालों में कोई ऐसा हो जो मुझको मुझसे चुरा कर ले जाए, कभी वो आए और आकर ले जाए।

कि अब तो हमें रोशनी सी लगती है, जिंदगी आज हमें जिंदगी सी लगती है। कैसे कह दूं कि फरिश्ता है वो देखो उसको, कैसे कह दूं कि फरिश्ता है वो देखो उसको, उसकी फितरत तो हमें आदमी सी लगती है। बन के साया जो हमेशा ही मेरे साथ रहा, बन के साया जो हमेशा ही मेरे साथ रहा, उसकी सूरत क्यों मुझे अजनबी सी लगती है। तीरगी अब तो हमें रोशनी सी लगती है, जिंदगी आज हमें जिंदगी सी लगती है। और इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। 2:10 पर आज सुरमई में होगी सुरभि और आपकी मुलाकात एक बार फिर। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 106 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके

0: स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 29 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1-1 सीट मिली है। डीएमके ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों को बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि वे प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित चिकित्सा देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic 3rd consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhabanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सुरभि और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। उससे पहले अब जाके जिंदगी को समझने लगा हूं मैं, अब जाके जिंदगी को समझने लगा हूं मैं, जब पेचोखम में इसके उलझने लगा हूं मैं, एहसास मेरा आज भी जिंदा है देखिए, तुम धूप में जले तो पिघलने लगा हूं मैं, तेरी वजह से दुनिया में मेरा भी है वजूद, किरदार से ही अपने निखरने लगा हूं मैं।

जब किसी की याद आती है और ऐसे में अगर ये चंचल हवा छेड़ दे और उलझे हुए बालों को, चेहरे को सुलझाती हुई, सहलाती हुई और अपने आप में एक हल्की सी खुशी लबों पर आ जाए, तो उस पल में सब कुछ थम जाता है। मन केवल उस स्पर्श को महसूस करता है जिसे शायद पहले भी महसूस किया जा चुका है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, इल्जाम हम भी उस पे कोई लगा देते, उसका अभी बुलावा आता नहीं मगर जीते हैं किस तरह से तुमको बता देते, तोड़ा है दिल किसने तुम्हारा बता देते, इल्जाम हम भी उस पे कोई लगा देते।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुर अभी को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम

0: घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस AINRC के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी 30 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनाराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई। ये बढ़ोतरी ईरान द्वारा पिछले 24 घंटों में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमले तेज करने के बाद हुई है। इसे अप्रैल की शुरुआत में अमरीका और ईरान के बीच लागू हुए युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर स्थिति माना जा रहा है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम, डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बिजली गिरने के साथ तूफान आने की भी प्रबल संभावना है, जिसमें हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive term in Assam. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. With the win, the state will be witnessing its first BJP government since independence. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and Regional Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPM clinched one seat. In Assam, out of the results declared for 101 constituencies, BJP has bagged 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win, while the Congress

100.1 पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

कट ही जाएगी जिंदगी कुछ बेचैनियों के साथ भी, कट ही जाएगी जिंदगी कुछ बेचैनियों के साथ भी, अब सुकून की तलाश में कहां तक और बेचैन हुआ जाए। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमराही, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

0: अब तो मुस्कुराने से पहले भी हजार बार सोचना पड़ता है, अब तो मुस्कुराने से पहले भी हजार बार सोचना पड़ता है, आजकल लोग मुस्कुराने की भी वजह पूछने लगे हैं। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनूं।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे नहीं,

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके बोल है, मैंने एक ख्वाब सा देखा। मिलेंगे जब भी तुमसे तो सिर्फ तुम्हारे होकर, मिलेंगे जब भी तुमसे तो सिर्फ तुम्हारे होकर, अगर ना मिले तो समझ जाना हम तुम्हारे थे ही नहीं। 3:24 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अपने दोस्त अर्चित के साथ।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, 3:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपने दोस्त अर्चित को 100.1 FM गोल्ड पर।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। रिश्ते हैं तो कुछ शिकायतें भी बनी ही रहेंगी, रिश्ते हैं तो कुछ शिकायतें भी बनी ही रहेंगी, ना रहे अगर कोई शिकायत तो समझ लेना अब वो रिश्ता भी नहीं रहा। 3:36 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कुछ मासूमियत बना कर रखिए अपने चेहरे पर भी, कुछ मासूमियत बना कर रखिए अपने चेहरे पर भी, क्योंकि गुस्से में सिर्फ शैतान अच्छे लगते हैं, इंसान नहीं। 3:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

जाने किस गुरूर में, होकर मगरूर जाने किस फितूर में, मिले जो फुर्सत तो आओ दो पल बैठे कहीं, मिले जो फुर्सत तो आओ दो पल बैठे कहीं, कब तक भटकते रहोगे यूं ही फिजूल में। 3:53 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मैं आज बोलता हूँ, एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। रहते हो तुम ना जाने किस गुरूर में, रहते हो तुम

काश किसी दीवाने को। 3:59 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर में ठीक 4 बजे आप सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवी के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री करगम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एआईएनआरसी के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की

0: सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। DMK ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राज्यपाल ने पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार के शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने सत्तारूढ़ LDF सरकार को हराकर जीत हासिल की है। दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 28 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. The Bharatiya Janata Party, BJP, has scripted history in West Bengal by securing an overwhelming mandate in the 294-member state assembly. The ruling BJP-led NDA has secured a historic third consecutive. In Keralam, the United Democratic Front has swept the polls with 99 seats, signalling a decisive return to power. Puducherry is expected to witness the return of a National Democratic Alliance government led by N. Rangaswamy's All India NR Congress. In West Bengal, BJP candidate Suvendu Adhikari defeated West Bengal Chief Minister and TMC leader Mamata Banerjee in the Bhavanipur Assembly constituency by more than 15,000 votes. BJP has crossed the majority mark of 148 in the 294-member house, ending the 15-year rule of Mamata Banerjee-led Trinamool Congress in the first election after special intensive revision of electoral roll. Out of a total of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies so far. BJP has bagged 206 seats, while Trinamool Congress has won 80 seats and is leading on one seat. Congress and regional Aam Janata Unayan Party secured 2 seats each. CPM clinched 1 seat. In Assam, out of the results declared for 401 constituencies, BJP has backed 73 seats, while its allies Assam Gana Parishad has won 6 seats and Bodoland People's Front has secured 8 seats. On the other hand, Congress has gained 10 seats, All India United Democratic Front clinched 2 seats, while Raijor Dal and TMC have secured 1 seat each. In Keralam, the Congress-led UDF has clinched a decisive win. While the Congress won 63 seats, its ally IUML added 22, giving the alliance a dominant edge across the state. In Puducherry, the National Democratic Alliance is set to form the next government, securing a comfortable majority of 18 in the 30-member house. Actor-turned-politician Vijay's led Tamila Vetri Kadagam is all set to create history in Tamil Nadu Assembly election by emerging as the single largest party. TVK has won 108 seats out of 234 constituencies across the state. According to the Election Commission, the ruling Dravida Munetra Kadagam, led by Chief Minister M.K. Stalin, has won 59 seats, while its rival All India Anna Dravida Munetra Kadagam has won 47 seats. PMK has won 4 seats. Indian National Congress has won 5 seats. BJP, DMDK and AMMKMNKZ bagged 1 seat

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चेत। करनी है हमसे बातें तो बड़े इत्मीनान से कीजिए, करनी है हमसे बातें तो बड़े इत्मीनान से कीजिए, जल्दी नहीं है हमें कहीं जाने की। करते हैं वो लोग हर बात हड़बड़ी में, करते हैं वो लोग हर बात हड़बड़ी में, जिन्हें हमेशा ललक रहती है कुछ न कुछ पाने की। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मेरा साया साथ होगा। सुकून से बिता लें कुछ पल, अब वो वक्त ही चला गया।

सुकून से बिताने कुछ पल अब वो वक्त ही चला गया, मिलने मिलाने का वो दौर अब गुजरे वक्त में बदल गया। होगी ना बात अब उस बेफिक्री के साथ, होगी ना बात अब उस बेफिक्री के साथ, लगता है हर कोई वक्त से पहले ही संभल गया। 4:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।

बनाए रखिए कुछ रिश्ते बिना मतलब के भी, बनाए रखिए कुछ रिश्ते बिना मतलब के भी, जरूरत के हिसाब से बनाए गए रिश्ते अक्सर जरूरत पूरी होने के बाद खत्म हो जाते हैं। 4:24 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में मुझे तुम मिल गए हमदम। हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना ही होगा, हम जब भी मिलेंगे अंदाज वही पुराना ही होगा, जमाने के हिसाब से बदलना हमने अभी तक सीखा ही नहीं। 4:34 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

वाकिफ होना पड़ेगा दुनिया के तौर तरीकों से अब, वाकिफ होना पड़ेगा दुनिया के तौर तरीकों से अब, नादानियां करने की उम्र शायद अब निकल गई। 3:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

शिकायतें तो बहुत हैं हम सभी के पास, शिकायतें तो बहुत हैं हम सभी के पास, अपनी शिकायतें लेकर जाऊं अब किसके पास। शिकायतें सुनने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, शिकायतें सुनने को तो बहुत लोग मिल जाएंगे, तलाश है मुझे ऐसे इंसान की जिसके पास हो समाधान भी कुछ खास। 4:45 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कभी रात दिन हम दूर थे। करनी है बात तो करो किसी भी अंदाज में, करनी है बात तो करो किसी भी अंदाज में, पर कुछ नरमी भी रखो अपने मिजाज में। अदब और तहजीब से पता चलते हैं संस्कार हमारे, अदब और तहजीब से पता चलते हैं संस्कार हमारे, हमेशा क्यों रहते हो इतने अहंकार में। 4:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 80 सीटों पर जीत दर्ज की, वाम दलों को एक सीट मिली। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जाकुलबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीत ली हैं। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की। एआईएडीएमके 47 सीट जीत चुकी है और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरल में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उनकी निर्णायक वापसी का संकेत है, जबकि कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। एआईएडीएमके कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि डीएमके ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। पीटते हो ढोल सारा दिन अपने काम और काम की व्यस्तताओं का, पीटते हो सारा दिन ढोल अपने काम और अपने काम की व्यस्तताओं का, फिर करते हो गुमान अपने रोजमर्रा के काम का। कमा तो रहे हो तुम अपने और सिर्फ अपने ही लिए, कमा तो रहे हो तुम अपने और सिर्फ अपने ही लिए, फिर रोना क्यों रोते हो समय के अभाव का। 5:12 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में क्या मिलिए ऐसे लोगों से। जरा संभल कर चलिए आज के इस माहौल में, जरा संभल कर चलिए आज के इस माहौल में, गिरेंगे तो खुद ही उठना पड़ेगा चाहे हो किसी भी हाल में। गिराने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, गिराने वाले तो आपको हजारों मिल जाएंगे, पर संभालने वाला कोई भी ना होगा जब आप फंसेंगे किसी बवाल में। 5:17 हो चुके हैं। वैसे तो आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर अगर आप चाहें तो YouTube पर भी मुझे RJ अर्चित के नाम से सर्च करके सुन सकते हैं।

कुछ तो खास होगा सूरज की पहली किरण में, कुछ तो खास होगा सूरज की पहली किरण में, बड़े से बड़ा अंधेरा भी इसे देखकर भाग जाता है। यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ, यकीन ना हो तो कभी उठकर देख लो पहली किरण के साथ, जीवन में गजब का आत्मविश्वास आता है। 5:00 है, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।